नमस्कार, सुप्रभात प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी सुबह की पहली किरण, जहां हर शब्द में शांति है, हर भाव में विश्वास है। आज की पहली किरण समर्पित है उस प्रकाश को जो युगों से अंधकार को दूर करता आया है, मर्यादा, त्याग, सत्य और धर्म का जीवंत स्वरूप, प्रभु श्री राम। राम केवल एक राजा नहीं थे, राम एक विचार थे, राम एक मार्ग थे और वो आज भी हैं, हम सभी के मन में, हम सभी के आदर्श के रूप

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। आज हम बात करेंगे श्री राम प्रभु को सबसे ज्यादा जिसके लिए लोकप्रियता मिली, जी हाँ, और उनको एक और उपाधि मिली, वो थी मर्यादित होने की, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसका अर्थ है वह पुरुष जो पुरुषों में आदर्श स्वरूप हो, जिन्हें धर्म, सत्य, सदाचार और मर्यादा के लिए उच्चतम मानदंडों का पालन करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का अर्थ है वो आदर्श पुरुष जिन्होंने धर्म, सत्य, सदाचार और मर्यादा के उच्चतम मानदंडों का पालन करते हुए जीवन जिया और एक श्रेष्ठ शासक, पुत्र, भाई, पति और मनुष्य के रूप में हर किसी के लिए एक आदर्श स्थापित किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब है मर्यादाओं के पालन में सर्वश्रेष्ठ। मर्यादा का अर्थ है सीमा, नियम, कर्तव्य, धर्म और गौरव के साथ सदाचार। पुरुषोत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ पुरुष या पुरुषों में उत्तम। अब आइए जानते हैं कि आखिर में इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा क्यों गया, क्योंकि इन्होंने वचन निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास काटा, राजपाट, परिवार और सुख का त्याग किया। इन्होंने सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए शासन किया, जिससे रामराज का उदाहरण आज भी दिया जाता है। इन्होंने एक आदर्श पति, पुत्र और भाई के रूप में सभी रिश्तों को निभाया, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना। इन्होंने अपनी इंद्रियों और क्रोध पर विजय प्राप्त करके सभी सद्गुणों से युक्त अपना जीवन यापन किया। संक्षेप में कहूं तो श्री राम ने अपने आचरण और जीवन शैली से मानवता के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और आदर्श बना सकता है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो हम सभी के हृदय में वास करते हैं, श्री राम प्रभु।

मर्यादित होने के कई सारे गुण हैं, जिसमें एक गुण ये भी है कि प्रभु श्री राम के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आने के उपरांत भी उन्होंने एकमात्र धर्म पत्नी यानी माता सीता का सदैव अनुसरण किया, जिनसे विवाह उन्होंने स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर किया था। हालांकि कुछ कम प्रचलित कथाओं जैसे जैन रामायण में उनका उल्लेख अन्य पत्नियों के साथ भी मिलता है, पर मूल वाल्मीकि रामायण और धार्मिक मान्यता के अनुसार वे सीता के प्रति निष्ठावान रहे और उनका जीवन एक पत्नी व्रता का प्रतीक है जिसमें अन्य रानियों का कोई उल्लेख नहीं है। भगवान श्री राम की एकमात्र पत्नी देवी सीता थी जो राजा जनक की पुत्री थी, जो की आदर्श पत्नी और धर्म पत्नी का प्रतीक मानी जाती है। कुछ लोक कथाओं और जैन रामायण जैसे ग्रंथ में राम के कई विवाह जैसे उत्तरा, वरुणी और लक्ष्मी के साथ बताए गए हैं, लेकिन ये मुख्य धारा की धार्मिक मान्यताओं और वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। राम ने सीता के प्रति अपनी निष्ठा यानी एका पत्नी व्रता का पालन किया और उनके जीवन को आदर्श के रूप में देखा जाता है, जहाँ वे केवल सीता के प्रति समर्पित थे। तो आइए हम भी अनुसरण करते हैं सियावर रामचंद्र का।

यूं तो श्री राम के बहुत सारे गुण हैं, पर श्री रामचंद्र की खासियत उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, आदर्शवादी व्यवहार, विनम्रता, धैर्य, न्यायप्रियता और प्रजावात्सल्यता में निहित है, जिन्होंने एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा के रूप में हर रिश्ते में अनुकरणीय व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही अपने शांत, सौम्य और तेजस्वी चरित्र के कारण चंद्र कहलाए, जो शीतलता और प्रकाश का प्रतीक है।

अब मैं चर्चा करना चाहूंगी श्री राम प्रभु के उन गुणों के बारे में जो आज भी अनुसरण किए जाते हैं। सबसे पहला, सबसे प्रचलित गुण मर्यादा पुरुषोत्तम होने का। वे हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन करते थे, जिससे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा, उन्होंने हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्थापित किए, जैसे पिता की आज्ञा का पालन यानी वनवास, भाइयों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से प्रेम और एक निष्ठावान मित्र यानी सुग्रीव और निषादराज की मित्रता, धैर्य और सहनशीलता, कठिन से कठिन परिस्थितियों जैसे वनवास और सीता के हरण में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, विनम्रता और सौम्यता। राजा होकर भी वे अत्यंत विनम्र और मिलनसार थे। उनका स्वभाव शीतलता प्रदान करने वाला था, इसलिए उन्हें चंद्र यानी चंद्रमा कहा गया। न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक, वे एक न्यायपूर्ण और प्रजा के हित चाहने वाले राजा थे। सत्य निष्ठा और वचन के धनी, वे अपने वचनों का पालन करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह पिता के वचन का पालन हो या फिर मित्र के साथ किया गया वादा। परोपकारी, वे दूसरों का भला करने वाले संत हितैषी थे। तेजस्वी और शक्तिशाली, वे सूर्य के समान तेजस्वी थे और दानवों का नाश करने वाले थे, लेकिन उनका तेज सौम्यता से युक्त था। कुशल संचारक और अनुशील, वे स्पष्ट बोलते थे और हर परिस्थिति के साथ खुद को ढाल लिया करते थे। तो इतने सारे गुणों से युक्त रहा जीवन हमारे प्रभु श्री राम का। उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इन आदर्शों से कुछ तो चुरा लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं श्री राम प्रभु के एक और गुणगान यानी भजन की ओर।

श्रोताओं, आपने श्री राम प्रभु का एक नाम बहुत ज्यादा प्रचलन में सुना होगा, रामचंद्र। आखिर इसका मतलब क्या है? रामचंद्र का मतलब है राम जैसा चंद्रमा, जो भगवान राम यानी विष्णु के अवतार और रामायण के नायक, और चंद्रमा यानी चंद्रमा शब्द को मिलाकर बना है। ये नाम दिव्य, शांत, आकर्षक और पवित्र गुणों का प्रतीक है, जो भारत में एक लोकप्रिय नाम और उपनाम है। राम दो शब्दों से मिलकर बना है, रमना यानी आनंद देना, और दूसरा रम यानी समा जाना, जिसका अर्थ है परमात्मा या सर्वव्यापक। चंद्र, जिसका अर्थ है चंद्रमा यानी शीतलता, सौंदर्य और चमक। जिस नाम का अर्थ ही इतना सुंदर हो, सोचिए वो स्वरूप कितना प्यारा होगा।

श्रोताओं, ये नाम यानी रामचंद्र भगवान राम की शांति, सुंदरता और दिव्य गुणों को चंद्रमा के साथ जोड़ता है, जो उन्हें सुखदायक और आकर्षक बनाता है। ये नाम धार्मिकता, वीरता और पवित्रता का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। ये दक्षिण भारत में एक आम नाम है, एक उपनाम है, खासकर तमिलनाडु और केरल में, और पूरे भारत में लोकप्रिय भी है। ये भगवान राम के प्रति भक्ति और सम्मान को दर्शाता है।

वैसे तो श्री राम एक पूरा युग अपने अंदर समेट के चलते हैं। त्रेता युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता माने गए हैं प्रभु श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का प्रतीक बनकर सीता के साथ 14 साल का वनवास किया और रावण का वध किया, जिससे वे आदर्श पुत्र, पति और राजा के रूप में पूजे जाते हैं।

राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी करुण छाती देखिए।

इनके कुछ और उपनाम भी हैं, जैसे राघव, दशरथी और रामलला, जिनमें सबसे प्यार से अगर हम किसी नाम से बुलाते इन्हें तो वो है रामलला, क्योंकि आज भी हम उन्हें एक तन्हे से, सौम्य प्यारे से कोमल बालक के रूप में देखना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का अवतार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर धन की स्थापना की और दुष्ट रावण का संहार किया। संक्षेप में कहें तो भगवान राम हिंदू धर्म के एक केंद्रीय चरित्र हैं, जो नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं, जिनकी कहानी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार है।

राम यानी अयोध्या की पावन भूमि पर जन्मा एक बालक जिसके चेहरे पर करुणा, हृदय में धैर्य और आचरण में धर्म था। वनवास मिला पर राम ने प्रश्न नहीं किया, सिंहासन छूटा पर सत्य नहीं छोड़ा, राज्य गया पर मर्यादा नहीं गई। वन में रहकर भी राम राजा थे क्योंकि उनका राज मन पर था, किसी अन्य पर नहीं। श्रोताओं, अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आज का राम। आज के युग में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था रामू। पिता ने वादा किया था मेले ले जाएंगे पर अचानक काम आ गया। रामू उदास हुआ पर बोला, पापा आप काम कीजिए, देश और घर पहले है। माँ ने पूछा, बेटा गुस्सा नहीं आया? रामू बोला, राम जी ने भी तो वनवास स्वीकार किया था। यही है आधुनिक युग का राम, कर्तव्य पहले, भावना बाद में।

श्रोताओं, श्री राम के जीवन से जो सीख मिलती है वो कुछ यूं है, माता पिता का सम्मान करें। आज के बच्चे सवाल करते हैं, राम ने स्वीकार किया था, सत्य का साथ दें। आज लोग सुविधा देखते हैं, राम ने धर्म देखा था, त्याग की भावना। आज मेरा अधिकार चलता है, राम ने मेरा कर्तव्य सिखाया। नारी सम्मान, सीता के लिए समुद्र पार किया, आज समाज को वही सम्मान चाहिए। तो अगर अपने जीवन को किसी काबिल बनाना है तो थोड़े से आदर्श हमें श्री राम के जीवन से अपने जीवन में उतारने चाहिए।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

तुम हो तो ये दिन की शुरुआत है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। नया दिन, नई तारीख, नई जिंदगी, नई शुरुआत। सो आइए आज के फ्राइडे को वेलकम करते हैं वार्म वेलकम के साथ में। आप भी मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं, यानी हम और आप दोनों ही गवाह हैं इस खूबसूरत सी सुबह का। तो चलिए इस गाने को मुकम्मल सुनते हैं। वापस से आते आने के बाद बता रहे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है।

0: हाँ जी, तुम हो तो अच्छा लगता है और तुम हो तो कुछ नया मिल जाता है। सो फिलहाल आज क्या नया मिलने वाला है, क्योंकि आज तो फ्राइडे है। सो यानी आज कुछ सच में होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई फ्राइडे आया है और अपने साथ आपके लिए कुछ लाया है। समथिंग इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू। सो क्या है आज की ये स्पेशल बात जो आज का थॉट ऑफ द डे बन करके आया है आप तक? चलिए पहुंचा देते हैं और ज़रूर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन एक ख़ास बात जो आज का थॉट आपसे कहने वाला, वो ज़रा अपने साथ में ही रखिएगा उस बात को, यकीनन आपको स्पेशल फील होगा।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

वक्त जज्बात सब कुछ एक से हैं, और वक्त है फिलहाल आपको बताने का, यानी आज के पैगाम को पहुंचाने का, यानी कि फ्राइडे का जो तोहफा है वो किस तरह से आप तक दे दिया जाए, इस बात को मैं सोच रहा था। तो चलिए अब बताते हैं कि फाइनली क्या तोहफा लेकर आया है फ्राइडे आपके लिए। सो आज का फ्राइडे कहता है कि अगर वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ हैं और अच्छी तरह से आपके साथ में बिहेव करते हैं तो प्लीज इसे खराब ना करें। सच्चे लोग अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। जी हाँ, ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। यानी अगर कोई आपसे प्यार करे, आपके साथ अच्छा बिहेव करे, यानी एक अच्छा व्यवहार करे, तो प्लीज आप इसे खराब ना करें, क्योंकि इस तरह के लोग सच में काफी दुर्लभ होते जा रहे हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंसान इंसान नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाकी लोग कभी इस तरह क्या नहीं हो पाएंगे, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई किसी के लिए इस तरह का होता है। एंड दूसरी बात, जिस तरह की चीज़ों को एक ज़बरदस्त तरीके से फॉलो किया जाने लगा है, जिसे हम कहते हैं भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ें, कि हाँ अगर पैसा है तो ये है, इस तरह की जो चीज़ें ट्रेंडी होती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये दुर्लभ हो गया है। क्योंकि अगर ह्यूमन वैल्यूज़ को हम साइड में रख करके और कुछ ऐसा करेंगे जो उससे परे होगा, तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्रकृति के विपरीत जाने पर प्रकृति परिणाम देती है, जो कि बड़ा भयावह और खौफनाक होता है। उसी तरह ह्यूमन वैल्यूज़ को भूल जाना, प्यार मोहब्बत, ये जब से दुनिया बनी है ना तब से ही चल रहा है, और आज भी दुनिया इसी के लिए कायम है। क्योंकि अगर कोई भी शख्स बिगड़ के ये कहे कि सारी दुनिया उसकी और सब कुछ ख़त्म कर देगा सिवाय अपने, तो ज़रा सोचिए वो अकेले कैसे सर्वाइव करेगा, और वो तो बर्बाद करने पे आ जाएगा। इसीलिए शायद ह्यूमन वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं और हमेशा करती रहेगी। जब तक ये दुनिया कायम है तब तक ये करती रहेगी। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो बड़े ही अच्छे से आपके साथ में बिहेव कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, तो आप इसे ख़राब ना करें प्लीज़, क्योंकि ये चीज़ें रेयर हो रही है। क्योंकि जो दिखा रहा है, जो शो कर रहा है, वो ऐसे कम लोग बचे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर तो है लेकिन वो ला नहीं पा रहे हैं, या वो शायद इस पर लाने का वक्त भी नहीं दे रहे हैं कि इतना वक्त ही नहीं है यार, आई एम वेरी बिजी, आई एम ये, आई एम यो, और ज़्यादातर चीज़ें होती हैं भाई आजकल ईगो वाली बातें होती हैं ना।

कोई कहे कि भाई ये मोहब्बत क्या चीज़ है, बकवास है, टाइम बेकार हो जाता है, तो ये तो उसी से आप पूछो जिसको है या जो उस चीज़ को फील कर रहा है। अगर आप कहिए अरे माफ़ कर देने में क्या है, मर्दई तो है उसको डांटने में, उसको सज़ा देने में, तो जो शायद जिसने माफ़ किया और उसके बाद सामने वाले ने जिस तरह से उसकी कृतज्ञता जाहिर की, वो उसका फील वही जान सकता है जिसने माफ़ किया, जो सुकून से रह रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब तक आप उन चीज़ों को करके ना जानते हो या आपका खुद एक्सपीरियंस या पाला ना पड़ा हो, तब तक आप पूरी तरह से ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये सबके लिए गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। दैट्स वाई ये थॉट बड़ा ही प्यारा है जो कि फ्राइडे में आया है और यही कह रहा है कि वो जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो प्लीज़ उनसे आप ख़राब ना करें, क्योंकि सच्चे लोग जो है वो अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। और इस बात को आप भी समझ रहे हैं कि इस तरह के एक्सप्रेसिव लोग, इस तरह का बिहेव करने वाले काफ़ी कम होते जा रहे हैं। डांटने वाले बहुत बढ़ गए, गुस्सा दिखाने वाले भी बढ़ गए, छोड़ देने वाले भी बढ़ गए, लेकिन पकड़ के थामे रखने वाले, आपको माफ़ कर देने वाले और प्यार से आपसे बात करने वाले कम हैं। इन्हें पकड़ के रखिए।

0: नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए भाई, जो रास्ता आपने पकड़ लिया उसको पहले समझ तो ले, जान तो ले, उसके बाद उसके बारे में डिसाइड करें। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग चॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो भाई देखिए, इतना बेहतरीन आज का तोहफा मिला हम लोगों को थॉट के फॉर्म में, और अब सीधे चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। लेकिन उससे पहले हम वेलकम करते हैं, इस वक्त आपने हमको ट्यून किया है फ्रीक्वेंसी से, आप सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, और आप मौजूद हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन पर। और उसी एप्लीकेशन पर चूंकि चैट का ऑप्शन मिलता है, और इसी चैट पर जो कुछ लिखा है वो हम पढ़ करके आप तक बताने वाले हैं इस लाइव शो के दौरान, क्या क्या मैसेजेस अभी तक आए हुए हैं। सबसे पहले GK फ्रॉम राजस्थान लिखते हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है आपका मॉर्निंग के स्पेशल शो में GK। एंड अनूप जी हमारे लिखते हैं, जीवन में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हम समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग ही होते हैं जिनके साथ हम समय भूल जाते हैं, उन्हें हम कभी नहीं खोना चाहिए। क्या बात है, वाओ, बड़ी ही प्यारी बात आपने कही है, और साथ ही सुप्रभात लिखा है और आशीर्वाद दिया है कि आपका दिन शुभ हो और आप सदैव हंसते रहें, खुश रहें। भाई आप भी खुश रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। महेंद्र देपन राजस्थान से लिखते हैं, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग महेंद्र, आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में RJ अदनान। साथ में बहराइच से मैसेज आ गया है प्रीति जी का, और लिखा है, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। भाई ये मैसेजेस ही तो होते हैं, ये बातचीत ही तो होती है, ये दुआएं ही तो होती है कि हर रोज़ सुबह देते हैं और उसके बाद भी मन नहीं भरता है, और हर रोज़ एक नई शुरुआत अपनों के साथ बांटने हम चले आते हैं। और होता भी ये है कि जब आपकी शुरुआत किसी अपने के साथ होती है तो आपका दिन सच में आपके लिए और भी ज़्यादा ख़ास बन जाता है। और ख़ास क्यों ना रहे, भाई 89.6 FM से आप जुड़े हुए हैं तो ख़ास तो होना लाजिम रहता है ना। फिलहाल चलिए ये दिन को और भी ज़्यादा ख़ास बना दें इस सॉन्ग के साथ। वापस से आएंगे तो बताने वाले हैं आज सिटी अपडेट में आपके लिए क्या कुछ मौजूद है, इसलिए बने रहना है और सुनते रहना है अपना 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से वेलकम करने के साथ ही अब आपको ले चलते हैं आपकी सिटी की अपडेट की तरफ, ताकि आप भी जान जाए कि भाई क्या कुछ चल रहा है शहर में जो आपको जानना चाहिए, है ना। सो रुख करते हैं सिटी अपडेट की तरफ और आपको देते हैं आज के गोंडा में क्या कुछ चल रहा है सिटी के अंदर ही, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉग RJ Adnan.
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Adnan. RJ Adnan.

हाँ जी, तो चलिए भाई अपडेट की तरफ हम आ गए हैं और पहली अपडेट काफ़ी पॉजिटिव आ रही है और वो है अपने खर्च से स्कूल के बच्चों को बांटी है स्कूल ड्रेस। जी हाँ, दरअसल ये जो अपडेट है ये दुर्जनपुर घाट की है, जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय दुर्जन घाट द्वितीय के जो शिक्षक हैं उन लोगों ने बृहस्पतिवार को 50 से ज़्यादा विद्यार्थियों को अपने निजी खर्च से ड्रेस बांटी है। सो इस पहल का बस उद्देश्य इतना है कि बच्चों को स्कूल आने के लिए इंस्पायर किया जाए। जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं आयशा जमाल, स्वाति सिंह, अशोक सिंह और साधना कनौजिया ने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो जो प्रधानाध्यापक है आयशा जमाल, उन्होंने बताया कि बच्चों के खातों में DBT की धनराशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने पेरेंट्स से स्वेटर और जूते मोजे खरीदने की भी अपील की है। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अब अगली अपडेट की तरफ, जहां पर एक अंक पत्र में एक 19 साल की छात्रा का जो करेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होना है, क्योंकि उनकी उम्र 19 के बजाय 55 साल कर दी गई है। जी हाँ, सो फिलहाल ये बेलसर के मंगूरा बाजार में मौजूद निजी स्कूल के रिकॉर्ड संबंधी चूक में एक स्टूडेंट के भविष्य पर चूंकि अब संकट खड़ा कर दिया है। 8वीं तक सभी शैक्षिक जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें दर्ज जन्मतिथि हाई स्कूल की मार्कशीट में 36 साल पीछे चली गई। नतीजा ये हुआ कि 19 साल की जो छात्रा है उसकी उम्र अंक पत्र में 55 साल से ज़्यादा दर्ज हो गई है। अब स्टूडेंट अंक पत्र में जन्मतिथि ठीक कराने के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर लगाने को फिलहाल मजबूर है। इसके अलावा अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल आ रही है राज्य सूचना की तरफ से। सो राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री ने कल को गोंडा का भ्रमण किया और सर्किट हाउस में जन सूचना अधिकारियों को कहा कि शासन की योजनाओं, विकास के कामों, योजनाओं की जानकारी पारदर्शिता के साथ अवेलेबल कराएं। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों से कहा कि आवेदकों को स्पष्ट और समयबद्ध सूचना अवेलेबल कराएं। सो इसके अलावा अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो सरयू के खतरे के निशान से महज 4 सेंटीमीटर दूरी को लेकर के है। सो सरयू नदी का जो वाटर लेवल है लगातार खतरे के निशान की तरफ बढ़ता जा रहा है और कल शाम 4 बजे एल्गिन ब्रिज पर नदी का जो जल स्तर था वो 106.030 मीटर दर्ज किया गया। ये खतरे के निशान 106.070 मीटर से महज 4 सेंटीमीटर नीचे है। हालांकि कुछ घंटों में जलस्तर स्थिर बना हुआ है और बाढ़ नियंत्रण विभाग के जो आंकड़े इसके हिसाब से बुधवार की रात में 8 बजे एल्गिन ब्रिज पर सरयू का जो जलस्तर था वो 105.920 मीटर था। बृहस्पतिवार की सुबह 8 बजे जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए 106.030 मीटर पर पहुंच गया। शार शाम चर तक ये स्थिर रहा। सो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और सीमा चौकियों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और अगली अपडेट जो आ रही है वो गर्मी में बिजली कटौती को लेकर के आ रही है। सो फिलहाल उमस भरी गर्मी के बीच में बिजली कटौती ने लोगों की फिलहाल परेशानी बढ़ा दी है। परसपुर हो या उमरी बेगमगंज, बालपुर समेत जो आसपास के एरियाज हैं वहाँ कंज्यूमर्स को रोस्टर के हिसाब से आपूर्ति नहीं मिल रही है। सो बार बार ट्रिपिंग लो वोल्टेज और बिना बताए जो कटौती हो रही उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। अगली अपडेट हम बता दें कि भाई दुर्जमपुर घाट से आ रही है, जहाँ किसान बालिका इंटर कॉलेज में कल ब्रह्म कुमारी बहमन ने नशा उन्मूलन अभियान चलाया। इस दौरान छात्र और छात्राओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई और कहीं ना कहीं इस बात को कहा गया कि भाई ये नशा जो है ये लोगों की जिंदगियों को, उनकी फैमिलीज़ को ख़राब कर रहा है। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। एक्सपायर्ड खून मामले में आपको पता होगा कि जिस तरह से एक्सपायर्ड खून चढ़ाया जा रहा था, एक पूरा रैकेट का भांडा फोड़ हुआ है गोंडा में। सो मरीजों को फर्जी ब्लड बैंक कार्ड के जरिए खून अवेलेबल कराने और एक्सपायर्ड खून देने के आरोप में जेल में बंद जो हैं विजय को जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने फिलहाल खारिज कर दी है। और अभियोजन के हिसाब से 13 नवंबर 2025 को रूपाली ने अपनी 9 साल की बेटी
सिद्धि को बुखार, प्लेटलेट्स कम होने और बॉडी में पानी भरने की शिकायत पर एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। करीब 6 दिन इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उस बच्ची को खून चढ़ाने के लिए 3 से 4 यूनिट ब्लड को ज़रूरत बताई और बताया कि इसके लिए जो परिवार वाले हैं उनसे रुपए भी लिए गए। बाद में बच्ची की हालत बिगड़ गई और 19 नवंबर को उसकी मौत भी हो गई। सो मां ने एक्सपायरी खून चढ़ाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसमें पुलिस ने विजय को गिरफ्तार किया था। फिलहाल इनकी जमानत की जो अर्जी है वो खारिज कर दी गई है और जो आरोपी है उसको जमानत फिलहाल नहीं दी गई है। इसके अलावा जो अगली अपडेट आ रही है उस तरफ चलते हैं और अगली अपडेट आ रही है कि भाई जो भी मेधावी स्टूडेंट थी छात्राएं उनको स्टडी टेबल का उपहार दिया गया है। सो विकास खंड सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पीएम श्री विद्यालय की मेधावी जो छात्राएं हैं उनको स्टडी टेबल वितरण का अभियान शुरू किया गया है और बेसिक शिक्षा प्रमोशन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जो आयोजित कार्यक्रम था। डीएम ने कहा कि अक्सर घर में सही से व्यवस्था नहीं होने से बालिकाओं की पढ़ाई प्रभावित होती है। स्टडी टेबल मिलने से उन्हें पढ़ाई में करने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी ब्लॉक में ये कार्यक्रम आयोजित करके मेधावी बालिकाओं को स्टडी टेबल अवेलेबल कराई जा रही है। सो ये अगली अपडेट थी। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं गोदामों की तरफ। जी हाँ, सो ज़िले में यूरिया की जो अवेलेबिलिटी है इसको लेकर के राहत भरी एक तस्वीर सामने आई है, लेकिन फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सुस्ती और किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सो विभागीय आंकड़ों के मुताबिक ज़िले के कई सारे गोदामों में पहले से 4,09,000 बोरी खाद अवेलेबल है। सो बुध की शाम 22,844 बोरी यूरिया की नई खेप पहुँच गई है, जिससे कुल जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़कर के 4,31,000 बोरी हो गई। इसके बावजूद कई साधन सहकारी समितियों पर खाद का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने से किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। सो ये आपको बताया हमने गोंडा से आ रही अपडेट। इसके अलावा आपको ले चलते हैं मनकापुर की तरफ। सो मखाना की वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। सो कृषि विज्ञान केंद्र में कल की शाम मखाना की वैज्ञानिक खेती पर कार्यशाला आयोजित किया गया। डॉक्टर एस के वर्मा ने बताया कि तालाब में इसकी खेती से प्रति एकड़ 8 क्विंटल पैदावार मिलती है। सो डॉक्टर राम लखन सिंह ने उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी है। साथ ही बाकी कृषि वैज्ञानिकों ने खेत की तैयारी, जैविक खाद, कीट प्रबंधन, अनुदान सिंचाई योजना के बारे में बताया और इस मौके पर हमारे साथ मतलब इस कार्यक्रम में कई सारे किसान मौजूद थे। सो ये जो है आपको अगली अपडेट मिली। इसके बाद चलते हैं परिषदीय स्कूल्स की तरफ, क्योंकि 19 से होने वाली है सत्रीय परीक्षाएं। सो ज़िले के 2609 परिषदीय विद्यालयों में सत्र परीक्षाएं 19 अगस्त से शुरू होंगी। सो ये एग्ज़ाम्स 25 अगस्त तक चलेगा। जुलाई महीने तक पढ़ाए गए जो सिलेबस हैं इसके बेस पर सवाल पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम के बाद में अभिभावक शिक्षा बैठक यानी PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग में विद्यार्थियों की जो रिपोर्ट कार्ड है उसको भी साझा किया जाएगा, जबकि कमज़ोर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेष दोहराव अभियान भी चलाया जाएगा। सो ये कुछ ख़ास ज़रूरी जानकारी थी जो कि हमने आपको दी और ये गोंडा से ही थी। आई होप कि आपके ज़रूर काम की रही होगी और आप तक पहुंच गई होगी। फ़िलहाल आपको लेकर के चलते हैं अब अगले सॉन्ग की तरफ, जो कि आ रहा है आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

तो एक बड़ी प्रॉब्लम है आज के पेरेंट्स की, और वो क्या है पता है? जी हाँ, अगर बच्चे छोटे हैं और पढ़ना शुरू ही किया है या प्राइमरी सेक्शन में हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के नाम पे थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये तो आपने, जाहिर सी बात है, जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं, उन्होंने सीधे तौर पर देखा है, राइट? सो पढ़ाई के नाम पर जो चिड़चिड़ाहट है, उसकी वजह कभी अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो इसकी कई वजहें निकलती हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा भी पढ़ाई का नाम सुनते ही बहुत चिड़चिड़ा जाता हो। सो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि इसको लेजीनेस ही माना जाएगा कि वो काहिल है, लेजी, ऐसा नहीं है। हो सकता हो पढ़ाई का दबाव ज़्यादा हो रहा हो, या जो सब्जेक्ट में कर नहीं पा रहा हो वो उस बच्चे के लिए टफ हो, कठिन हो, या हो सकता हो बच्चा थका हुआ हो, और ये भी हो सकता हो कि नींद ही पूरी ना हो पा रही हो, या फिर हो सकता हो कि उसका इंटरेस्ट ही ना हो। सो कोई भी वजह हो सकती है, क्योंकि हमने बताया ना कई सारी वजह है। सो इसमें से मान लिया अगर कोई भी वजह है, तो ऐसे में बच्चे पर उसको डांटना या किसी से कंपेयर करना कि फलाने को देखो, धमाके को देखो, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सो उसको डांटने या कंपेयर करने की बजाय उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना होगा कि इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है। इंटरेस्ट की कमी है, सब्जेक्ट टफ लग रहा है, आराम नहीं किया हुआ है, नींद की कमी है, लेजीनेस की प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअल प्रॉब्लम जब आप जानेंगे तो आप एक्चुअल प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आएंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी बात ये कि पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में ज़रूर बांटिए। अगर आपका बच्चा है और पढ़ाई करता है तो उसको एक साथ लंबे वक्त तक पढ़ाने से बेहतर है कि छोटे छोटे वक्त में आप पढ़ाते रहें, और उसको कहीं ना कहीं रेगुलर ही ब्रेक लेने दें, और एक सकारात्मक जो माहौल होता है कि आराम से सीखे बच्चा, गलतियां करे, कोई दिक्कत नहीं, हंसते खेलते खाते सीखे, सो वो अगर माहौल मिलता है तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और ये जो चिड़चिड़ाहट है ना पढ़ाई को लेकर के, ये ख़त्म हो रही होती है। क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है और इससे कई सारे पेरेंट्स, कई सारे गार्जियंस जूझ रहे हैं। सो इसकी वजहें हमने बताई आपको कि कई हो सकता है, हो सकता हो लेजीनेस हो सकता हो उसका पढ़ाई में मन ना हो, सकता हो वो सब्जेक्ट टफ हो सकता हो कि उसे नींद पूरी ना मिली हो सकता हो कि बच्चा वीक हो सकता हो कि पढ़ाई का प्रेशर हो। सो कई सारे रीज़न होते ही हैं अलग अलग तरह से बच्चों के लिए, एक साथ दो से तीन रीज़न भी हो सकता है। बट अगर एक्चुअल में आपको रीज़न पता चल गया कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो आप उस पर काम कर सकेंगे आराम से। सो बस वही करना है और क्या। तो अगर आपका बच्चा भी फिलहाल चिड़चिड़ा रहा है और नहीं करने का बोलता है, तो उसको डांटने का या किसी से कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन से बच्चे जो हैं और भी ज़्यादा इग्नोर्ड फील करते हैं, और उनको लगता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने उनको ये भरोसा दिला दिया तो फिर लाइफ टाइम आप खुद पछताने वाले हैं कि यार ये हमने क्या किया। जी हाँ, ये कोई कहने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा ही होता है। इसीलिए हमने कहा कि भाई इन चीज़ों से दूर रखना होगा, और कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि नहीं, बच्चा जो है वो हमारे घर का है, हमारा खुद का है। सो हमें किस तरह से उसको डील करना है और किस तरह से उसकी पढ़ाई को लेकर के हम उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं बिना डांटे और बिना कंपेयर करें। और कंपेरिजन तो प्लीज़ जो हमारे पेरेंट्स ने कई बार कर दिया, वो गलती नहीं करना। कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि फलाने को देखो और धमाके को, बिल्कुल नहीं है। नो मीन्स नो।

0: चलते चलते रास्ते बदल जाते हैं।
1: बाबा बाबा।
0: चलते चलते रास्ते बदल जाते हैं।
1: क्या बात है?
0: चलते चलते रास्ते बदल जाते हैं।
1: अरे अब रास्ता बदल भी दो भाई।
0: सुन, चलते

0: गुस्सा गुस्सा और गुस्सा, अगर आपको भी आ रहा है गुस्सा तो चलिए गुस्से से जुड़ी एक बात हम बताते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है आपके गुस्से को बैलेंस करने में। कैसे, आइए हम बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan. RJ Khan.

सो देखिए, रिश्तों में नाराज़गी होना बिल्कुल ही आम सी बात है। हर इंसान की चाहे सोच हो या उम्मीद हो या उसकी सिचुएशंस हो, सब अलग होती है। लेकिन होता है कि कई बार गुस्से में कही गई बात या गलत तरीके से जताई गई नाराज़गियाँ जो है वो दूरी हमेशा के लिए बढ़ा देती है। अगर हम अपनी जो इमोशंस हैं उनको समझदारी, बहुत ही सब्र और बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ में शो करें तो शायद मतभेद भी रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका बन सकते हैं। बस ज़रूरत है नाराज़गी सही तरीके से जताई जाए। अब आपके मन में सवाल है कि नाराज़गी को सही तरीके से कोई कैसे जता सकता है, चलिए हम बताते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि इमोशंस को समझा जाए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर आपको किस बात ने नाराज़ किया है। कई बार हम बिना बहुत क्लियर वजह जाने सामने वाले पर गुस्सा निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इसीलिए अपने जो इमोशंस हैं उनको पहचानने के बाद बातचीत के लिए सही वक्त और शांत माहौल चुनना होता है। अगर सामने वाला पहले से तनाव में है या माहौल गर्म है तो उस वक्त चर्चा करने की अगर आप सोच रहे हैं तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा सकता है। दूसरी बात है सही वक्त पर सही बात। अब आप सोचेंगे सही वक्त पर सही बात क्या होती है, चलिए अब बता दें। देखिए, नाराज़गी जताते वक्त ऐसे शब्दों से बचना होता है और सामने वालों को जिसे दोषी ठहराए कि तुम हमेशा ऐसा करते हो या तुम्हारी वजह से, ये ऐसे सेंटेंस हैं जो रिश्तों में तनाव बढ़ा सकते हैं। इसकी जगह पे अपने इमोशंस पर बात करें, जैसे मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ या मुझे लगा कि मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं मिली। इस तरह से बात रखने से सामने वाला आपकी जो इमोशंस हैं उनको बेहतर समझ पाएगा और बातचीत जो है वो एक सकारात्मक ढंग से होगी। अगर आप हमेशा वाला बोलेंगे कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ या तुम हमेशा ऐसा करते हो, तो ये प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। कोई भी होगा नाराज़ होगा कि हमेशा तो कोई गलती जानबूझ के नहीं करता है, जाहिर है। इसके अलावा सॉल्यूशन पर ध्यान देना। जी हाँ, सो रिश्ते सिर्फ अपनी बात कहने से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने से मजबूत बन ही जाते हैं। और इसीलिए अपनी बात रखने के बाद सामने वाले को पूरा आपको मौका देना है। हो सकता है उसका नज़रिया अलग हो या हो सकता हो कोई ऐसी वजह हो जिससे आप नहीं जानते हो। बातचीत का उद्देश्य जो है वो बहस जीतना नहीं होता है बल्कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को ढूंढना होता है। सो मिल करके ये तय करना होता है कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन दोबारा ना बने, इसके लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं। सीधी सी बात है, ये हमारा सॉल्यूशन का अप्रोच होता है। सोच समझ कर ही शब्दों का चुनाव करना होता है। देखिए, ज़्यादा गुस्से में क्या होता है कि फौरन रिस्पॉन्ड करने से अक्सर ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। लेकिन इसलिए पहले खुद को थोड़ा सा वक्त देना होता है, थोड़ा सा कूल होना होता है, फिर बातचीत करना होता है। साथ ही पुरानी गलतियों को बार बार दोहराने से बचना होता है क्योंकि इससे नई प्रॉब्लम और उलझ सकती है। हमेशा बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ, बहुत ही संयमित भाषा का इस्तेमाल करके

ताकि आपकी बात सामने वाले तक बिना ठेस पहुंचाए पहुंच सके। सही शब्द और बहुत ही शांत जो व्यवहार है रिश्तों में बहुत ही अच्छा यकीन, रेस्पेक्ट और अपनापन बना रखने में मदद करता है, यह आपको ही पता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि रिश्तों में नाराज़गी जताने का सबसे सही और शांत तरीका है सम्मानजनक बातचीत। अपनी भावनाओं को बिना किसी पर आरोप लगाए बहुत ही क्लियर शब्दों में आप व्यक्त करें। सही वक्त का चुनाव करें कि किस वक्त कहना सही होगा। सामने वाले की भी बात ध्यान से सुनना होता है और प्रॉब्लम का समाधान खोजने पर ध्यान देना होता है। गुस्से में फौरन रिस्पॉन्ड देने से या बहुत गंदा बोल देने से बचना होता है, क्योंकि समझदारी और सब्र से की गई बातचीत जो है रिश्तों को मजबूत बल्कि और बना देती है, अगर हमने समझदारी से किया तो। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ये सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती ही होती है और आ ही जाती है, इसलिए इस बात को समझा जाना चाहिए कि इसको कहना कैसे है। यानी हर बात को कहने का एक लहजा होता है, अगर उस लहजे को आपने समझ लिया तो यकीनन आपकी बात भी सुनी जाएगी और यकीनन आप उन बातों को लेकर के अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर लेंगे। ये बात जो है बहुत फैक्चुअल है और ये बिल्कुल सच है। सो आइंदा से अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, और अगर इन सारी बातों का आपने ध्यान रखा सो डेफिनेटली आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा एक्सपर्ट्स और ऐसा स्टडी और ऐसा आपका एक्सपीरियंस भी कह रहा है।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9816, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: अरे चिंटू।
5: यस सर।
4: एक सवाल का जवाब दो।
5: के सर।
4: खड़े हो जाओ।
5: यस सर।
4: ABC सुना।
5: ABC
4: और सुना।
5: और

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: So, अगर आप भी डरते हैं बाहर पनीर खाने से या बाहर से पनीर लाने से, यही सोचकर कि भाई ये असली है या नकली है, तो चलिए आज आपको हम बता देते हैं कि आपको पहचानना कैसे है कि आपका पनीर है असली या फिर नकली।
3: Now you're listening, Good Morning Koda with your favorite RJ Khan.

जी भाई, तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आप कैसे पहचान पाए कि जो पनीर का सेवन आप कर रहे हैं वो पनीर सही है या नहीं, यानी असली है या नकली। देखिए, पनीर जो है वो प्रोटीन और कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन अभी हम बात करें मिलावट की, सो मिलावटी पनीर जो है सेहत के लिए छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत गंभीर ख़तरा होता है। सो किसी ऐसी शॉप से जो आप को जहाँ पे ट्रस्ट हो कि भाई ये सही देंगे, और या ऐसे ब्रांड पर भरोसा जहाँ पता हो कि भाई यहाँ से आपको सही मिलेगा सामान, तो वहाँ से आप ख़रीदें। एक्सपायरी डेट और FSSAI का लाइसेंस से रिलेटेड जानकारी ज़रूर देख लें, क्योंकि वही ऑथराइज करता है। सो आपको बता दें कि अयोध्या के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की डॉक्टर सौम्या के हिसाब से पनीर के छोटे टुकड़ों को हल्के गुनगुने पानी में डाल करके उस पर आयोडीन टेंचर की कुछ बूंद डाल देना होता है। अगर पनीर का रंग नीला या गहरा बैंगनी हो जाए तो वो मिलावटी है। क्या है? अगर पनीर का रंग नीला या गहरा बैंगनी हो जाए तो वो मिलावटी है। ताज़ा और शुद्ध पनीर मुलायम होता है और हल्का दबाने पर आसानी से टूट जाता है। वहीं नकली पनीर जो है वो सख्त और रबड़ जैसा महसूस होता है और दबाने पर तुरंत अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। ये भी पहचान है। इसके अलावा डॉक्टर के मुताबिक लंबे वक्त तक लगातार मिलावटी पनीर खाने से लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है। पनीर अगर नकली है तो उसको खाने के बाद में उल्टी, दस्त, तेज में पेट दर्द, बुखार, चक्कर, बॉडी में पानी की कमी या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, ये सब महसूस हो सकते हैं। इसलिए आपको असली पनीर ही खाना होगा, और उसके लिए हमने आपको तरीके बता दिए हैं कि पहली चीज़ तो ये होता है कि आपको जो ब्रांड लेना है वो आपको देखना होगा कि एक ऐसी दुकान से जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, या ऐसे ब्रांड की चीज़ें जहाँ पे आप थोड़ा सा ईजीली ट्रस्ट कर पा रहे हों। और इसके अलावा FSSAI जो प्रमाणित करता है उसके बारे में भी आपको जानना, उसके बारे में भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप देखते हैं तो ये अच्छी बात है, आपके लिए बेहतर फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा पनीर के छोटे टुकड़ों को हल्के गुनगुने पानी में डाल करके, अगर मान ली उसमें आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डालते हैं, और अगर पनीर का रंग नीला या गहरा बैंगनी हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ये मिलावटी है। ये भी हमने आपको दूसरा बताया कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमने आपको बताया है कि भाई किस तरह से ये जो पनीर होती है, यानी शुद्ध और ताज़ा पनीर जो है वो मुलायम होता है और हल्का सा दबाने पर आसानी से टूट जाता है, जबकि नकली पनीर के साथ इसका उल्टा होता है। ये सख्त और रबड़ जैसा महसूस होता है और दबाने पर फिर से अपनी अवस्था में लौट आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नकली पनीर की निशानी होती है। इसलिए अगर पनीर आप खा रहे हैं तो यकीन मानिए कि बहुत सोच समझ कर देख कर जहाँ से सही और ताज़ा और अच्छा मिले वहीं से आप लीजिएगा। आई होप कि ये जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम की होगी, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी हेल्थ से जुड़ी है और आपकी हेल्थ की फिक्र मुझे भी है, इसीलिए तो हम आप तक ये बातें और ऐसी जानकारियां लेकर आते रहते हैं। और आप सुनते रहते हैं अपना मॉर्निंग वाला शो, सॉन्ग्स भी एंजॉय करते हैं, अपडेट्स भी लेते हैं और ऐसी जानकारियां भी आप तक मिलती रहती है।

0: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चल बुलेया चलना ही तेरी फितरत, रुकना नहीं राहों में। फिलहाल अच्छा, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं और आपसे पूछूं कि अगर किसी की बहुत अच्छी नौकरी है, उसकी मनपसंद जॉब है और उसके बावजूद उसका मन नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो बताइए कि अगर कोई अपने मन की जॉब कर रहा है, काम कर रहा है और उसके बावजूद उसका मन नहीं लग रहा है, तो आखिर कौन कौन सी ऐसी बात है जिसको किया जाए तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। सोचिए फिर बताइए।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: सो यस, मैंने कोई क्वेश्चन किया था और उसका आंसर बड़ा ही गजब का है भाई, आपकी तरफ से बड़ा मजा आया। तो चलिए, चूंकि मैंने पूछा था कि अगर कोई ऐसी नौकरी है जो आपके मन पसंद की है और मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए, फिलहाल महेंद्र देपन ने मुझ पर ही सवाल किया है कि आर्ज अदनान सर जी, दूसरों को सलाह देने से पहले ज़रा सच सच बताइए, जब आपका भी रेडियो पर बोलने का मन नहीं करता तब आप क्या करते हैं। देखिए, बात बहुत सही कही आपने, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और कई बार काम करते करते या कुछ कहते कहते मन नहीं करता है, राइट। सो एक तो ये है, पहली चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है कि मैं जब कोई भी काम को काम ना समझ करके और डायरेक्ट कोई और चीज़ समझ लेता हूँ, जैसे कि अपने मन की चीज़ों को, तो शायद मेरा मन लगने लग जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है, वो भी किसी ऐसी चीज़ में जो आपके मन पसंद की हो, तो फिर क्या करना चाहिए, चलिए वो भी हम बता ही देते हैं कि आखिर क्या क्या करना चाहिए जिससे आप समझ पाएंगे कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा है।
3: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

सो महेंद्र के पास सॉल्यूशन है कि मेरा मन नहीं लगने पर सबसे बड़ा सहारा तो कैलेंडर में दिख रहा होता है संडे। बस दिल को यही समझाना पड़ता है कि भाई बस कुछ दिन की बात और है, ऑलराइट। सो वैसे ये अच्छा तरीका हो सकता है जो आप अपनाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और तरीके हो सकते हैं जिसको हम अपना सकते हैं। सो अगर आप ये भी सोच लेंगे कि भाई मन नहीं लग रहा तो लाओ इस काम को ही ख़त्म कर देते हैं, जॉब ही छोड़ देते हैं, फिर देखिए कैसे खटाखट मन लगने लग जाएगा क्योंकि लगेगा अरे रहन दो, बाकी काम तो बकवास ही हो जाएंगे, ये काम तो अपने मन का है। सो ऑन द सीरियस नोट कि अगर ऐसा कुछ होता है कि मनपसंद काम है उसके बावजूद भी मन नहीं लग रहा है तो इसको लेकर देखिए कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि कोई भी चीज़ होने के पीछे वजहें होती हैं, कारण होता है, रीज़न होता है। सो रीज़न है तो जाहिर सी बात है रीज़न को समझने की कोशिश सबसे पहली बात होती है। अगर रीज़न समझ में आ जाता है तो आप उस पर काम अच्छे से कर पाते। दूसरी बात यह है कि नई चीज़ें सीखने की कोशिश अगर आपके प्रोफेशन में है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप सेल्स में हो, आप HR में हो, आप रेडियो जॉकी हो, आप TV एंकर हो, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, आप दुकानदार हो, आप टीचर हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, कुछ भी हो आप, तो हर एक एरिया में कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती है और हमेशा कुछ करने का जो स्कोप है वो यूं ही बना रहता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि आप जो अपने लक्ष्य हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको बहुत क्लियर करना होता है। यानी आपको पता होता है कि भाई आप ये काम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, वो क्यों जो वाय है, वो जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इससे होने से आपको बहुत क्लियर डायरेक्शन मिलती है और आप चले जाते हो। एक बैलेंस्ड डे फ्लो होना चाहिए। कई बार आपका काम में मन इसलिए नहीं लग पाता, आपकी अच्छी चीज़ों में मन इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि आपकी दिनचर्या भी ठीक नहीं होती है, ना सही से उठना, ना टाइम से खाना, ना पीना। तो जाहिर है बॉडी से ही काम ले रहे हैं और बॉडी को जब हम नहीं दे रहे हैं जो उसे चाहिए तो वो गड़बड़ तो करेगी, डेफिनेटली करेगी। सो इसलिए दिनचर्या भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। प्लस कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना होता है, पहली चीज़ की फटाक से नहीं समझ में अच्छा बस ये कर डालो, थोड़ा सा सोचना समझना होता है कि इसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, और एक बार सोच लिया तो फिर आगे बढ़ जाओ, फिर तो उसके बाद सोचना ही नहीं है। सो अपना जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है और जो आपके करियर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको थोड़ा सा इवैल्यूएट करना होता है, समझना होता है, देखना होता है, और उसके बाद सही डायरेक्शन में बहुत छोटे छोटे कदम आपको उठाने होते हैं जिससे आपके अंदर सेटिस्फैक्शन, आपका कॉन्फिडेंस और आपके एक बेहतर कल की जो एक कामना होती है उसको प्रगति की तरफ ले जाया जाए, यानी एक बेहतर सुनहरे भविष्य की बात जिसे हम कहते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अगर ऐसा कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में है तो हम उसको लेकर के समझ सकते हैं। आई होप कि हम समझ ही सकते हैं। सो मुझे तो लगता है कि भाई जब आपका मन नहीं लगता है तो सबसे बड़ी वजह होती है कि किसी भी चीज़ को हम काम समझ के करते हैं। अच्छा बतियाना किसको बुरा लगता है, नहीं लगता है ना, जितना टाइम मिले आराम से बतिया ले। लेकिन अगर कहें नहीं पैसा देंगे बात करते रहो, पैसा देंगे बात करते रहो, तो फिर आपको लगेगा ये काम हो रहा है, यहाँ तो पैसे मिल रहे हैं बात कर रहे हैं। बट अगर उसी को आप ये सोचो कि नहीं यार बात ही तो कर रहे हैं और बतियाना है, खूब बतियाना है, तो फिर आप बतिया दे जाओगे। इसी तरह आप जो भी काम कर रहे होगे, आप टीचिंग कर रहे हो, अरे मज़ा आ रहा है यार, किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हो, उसकी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा आप कर रहे हो सो जाहिर है कि आप उसको देखने का नज़रिया भी बदल जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें भी बहुत हद तक बदलती है, मतलब मेरा ऐसा पर्सनली मानना। अगर आपका भी इस पे कोई और विचार है तो विचार का आदान और प्रदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं और बता सकते हैं। फिलहाल एंजॉय करते रहेंगे अपना गुड मॉर्निंग गोंडा शो विद यू मॉर्निंग जॉक आरजेड नानूली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, चूँकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

वाह भाई, कई बार ऐसी सी घटनाएं जो है वो आप साझा कर देते हैं कि सोचने पर इंसान मजबूर हो जाए कि हा हा हा ये क्या हुआ था। ऐसी ही एक घटना फिलहाल महेंद्र बता रहे हैं अपने बारे में, और ये लिखते हैं, अदनान सर, हमने तो एक बार रेडियो के चक्कर में जॉब ही छोड़ दी थी। बाद में जब कंपनी वालों ने वापस बुलाया तो हमने सीधी शर्त रखी, रेडियो हमारी लाइफ है, काम छूटे तो छूटे, रेडियो बंद नहीं होगा। टैलेंट के दम पर शर्त भी मंजूर हुई और रेडियो का भी साथ बना रहा। क्या बात है। कुछ बातें और कुछ चीज़ें इतनी अमेजिंग होती है कि आप लाइफ टाइम जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो यकीनन आपको एक स्माइल सी आ जाती है। आप सोचते हैं वाह क्या मतलब, हमने भी कारनामे किए हैं और क्या ज़बरदस्त तरीक़ा था। जाहिर है कि अगर आपको काम आता है तो आपकी कुछ शर्तें मानी ही जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और आपने साथ भी ऐसा बनाया है कि हमेशा आपका साथ निभाने वालों में है रेडियो, जो कि हमेशा ही बना रहने वाला है, और ऐसे ही बेहतरीन आपका रिश्ता रेडियो के साथ बना रहे, ऐसी हम पूरी पूरी कामना करते हैं। और जाहिर है कि ये रिश्ता आप आगे भी चलाते रहेंगे और ये आगे भी बढ़ता रहेगा, इसमें कोई शक की बात फ़िलहाल तो नहीं है। और साथ ही साथ चूँकि सभी के साथ की अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, सो बिल्कुल सही बात है। और अगर मुझे भी लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का भी कुछ ना कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस अलग अलग ज़रूर रहा होगा, क्योंकि सभी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसके बाद हमारी लाइफ का वो हिस्सा बन जाती हैं। फ़िलहाल चलिए, बहुत ही खूब बात आपने बताई और आपको एक बेहतरीन उम्दा सा सॉन्ग सुनाते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

भाई, इसी म्यूजिक के साथ में आइए, आपके कुछ मैसेजेस भी आ गए हैं और उनको पढ़ के बताते हैं किसने क्या कुछ लिखा है, क्योंकि लास्ट में जो मैसेज आया था उसके बाद कई और मैसेजेस आए। आशु जी का लखनऊ से आया, बीत गई तारों वाली सुनहरी रात, याद फिर आए वही प्यारी सी बात, खुशियों से हो हर पल आपकी मुलाकात, इसलिए मुस्कुराते हुए करें अपने दिन की शुरुआत। आपको भी स्वागत है, वेलकम है। विकास जायसवाल है खरगापुर से, आपका स्वागत करते हैं विकास। इम्तियाज मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग। अवी हैं, गुड मॉर्निंग। सुजीत हैं, गुड मॉर्निंग आप सभी, गुड मॉर्निंग। और क्रिकेट लवर भी मौजूद है, आपका भी स्वागत है। सबलू सावंत हैं सांता क्रूज मुंबई से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है। एंड यस, फिलहाल काम तो हर इंसान की ज़रूरत होती है लेकिन रेडियो सुनने में मज़ा आता है, बेशक सही फरमाया आपने, थैंक यू सो मच। और फाइनली अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, आज काफ़ी ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए और आई होप कि आज का शो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ था जो आपके काफ़ी काम का था। एंड साथ ही साथ आप बने रहिए अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर, आपसे बातचीत का दौर जारी रहेगा। फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260-9976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: अरे समता, जल्दी करो। अरे वो मेरी बनारसी वाली साड़ी नहीं मिल रही है, तुमने कहीं देखा है क्या? मैं वही पहनूंगी रामदीन काका की बेटी की शादी में, बताए दे रही हूँ।
7: हाँ किरण दी, मैंने ही उसे संभालकर अलमारी में डाल दिया है, अभी निकाल देती हूँ। और आप तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, पर जया कहाँ है?
8: ओहो किरण दीदी, मैं वॉशरूम में नहा रही थी, और वैसे भी तैयार होने जा रही हूँ, मैं भी चलूंगी गाँव।
9: ओ मैया का हवा लगायू बड़ी देर,

0: जया, अगर गांव चलना है तो 5 मिनट में तैयार हो जाओ। रामदीन काका का फोन अभी आया था, बोल रहे थे जल्दी आ जाओ, यहाँ कुछ काम देख लो, जल्दी करो।
1: किरण दी, मैं न्योता लिखने का काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, तो मैं सारा न्योता लिख दूंगी, और काका के घर में ज्यादा कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो ये काम मैं ही कर दूंगी।
0: ओके ओके, तुम ये काम संभाल लेना, मैं भी काका से पूछ लूंगी कि कोई काम मेरे लायक हो तो मुझे दे दो। पर ये रमेश भैया कहाँ रह गए, हमेशा लेट हो जाते हैं। रमेश भैया जल्दी आइए, गांव निकलना है।
2: किरण दी, रमेश भैया कब से आकर के बैठे हैं, मैं उन्हें चाय दे करके आती हूँ, तब तक आप उनके पास बैठिए और मैं तैयार भी तो हो जाऊँ।
1: चलिए सब लोग अब निकलिए भी।
0: चलो भाई, पहुँच गए काका के घर। कितनी भीड़ है, लगता है पूरा गांव यहीं आ गया है, और सब कितने खुश हैं। और समता, जया, ये देखो छोटी छोटी बच्चियां गाना गा रही हैं।

0: वाह, कितना अच्छा गाती हैं ये बच्चियाँ। ये काकी की नातिन है ना, रिद्धि और सिद्धि। कितना प्यारा नाम है इन दोनों का।
1: मुझे भी कोई गाना सिखा दो।
2: क्या हुआ, मैं थोड़ा कम अच्छा गाऊंगी पर मैं गाना चाहूंगी।
1: किरण दी, आप खुद इतना अच्छा गाती हैं पर मुझे नहीं सिखाती हैं।
3: अरे बाबा, सिखा दूंगी समता, पर अभी जरा ये शादी के मजे ले लो और जाओ। वहाँ बाहर चारपाई पड़ी है, वहीं बैठकर न्योता लिखने का काम संभाल लो, काका बहुत परेशान है।
4: हे बहन जी, इजन समन्वा है, इका सबका लिख दिन जाए। अरे आप सब पढ़े लिखे हो, हम सब पढ़े लिखे तो है न, तो आप सब लिख दिया जाए।
5: हे माँ, इका हो इमामा रह गए हैं, बड़ा बर्तन आए।
4: अरे दुल्हन, ई खाना खाए वाला बर्तन होए।
6: बैरन बाहे

0: अरे काकी, इसको डिनर सेट कहते हैं। ये खाना खाने वाला बर्तन ही है, पर इसको डिनर सेट कहते हैं। समता, ये न्योते में लिख देना। काकी, डिनर सेट के साथ ये 1100 रुपए लिफाफा भी है, ये भी लिखवा देना।
1: लाइए, लिख रही हूँ। और भी काफी न्योता रखा है, मैं ही लिख रही हूँ। आप जाइए, आपको काकी बुला रही है।
2: किरण दी, आप काका के पास बैठिए, मैं अभी कुछ काम देख लेती हूँ।
0: कैसे हैं काका आप? परेशान मत होइए, ये सब बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, लिखने पढ़ने का काम अच्छे से कर लेंगी। आप बस आराम से बैठिए, सब काम हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ कि अपनी बेटी महुआ को पढ़ने लिखने दीजिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है काका, पढ़ लिख कर बच्चियाँ होशियार हो जाती हैं, और अब जमाना बदल चुका है।
2: हाँ काका, किरण दी सही कह रही हैं। मुझे भी मेरे पापा पढ़ा नहीं रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी शादी करनी है, तो मैं भी जिद पर आ गई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब तो नौकरी भी कर रही हूँ और मम्मी पापा सभी को खुश भी रख रही हूँ, और तो और मैं अपने खर्चे भी निकाल लेती हूँ। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे।

0: अरे भाई बारात बगीचे में पहुंच गई है द्वार पूजा के लिए, सब लोग तैयार हो जाएं। काकी ये क्या कर रही है, ये थारा और फल की डलियां क्यों यहाँ रखी हैं?
1: अरे बच्चा हमरे यहाँ द्वार झाड़ से पहले तिलकिया होता है फिर द्वार चार होता है।
0: अच्छा अच्छा कोई नहीं, जो आपके यहाँ होता है वही करिए काकी जी। किरण दी ये मिठाई की डलिया है, इसे यहाँ लेकर आइए द्वार पर, पहले तिलक चढ़ेगा।
2: अच्छा अच्छा अभी आती हूँ।
3: ये लो मिठाई की टोकरी, काकी यहीं रख दूँ?
4: अरे भाई बारात आ गई, आओ सब लोग बाहर आओ, तिलक चढ़ने जा रही है।
1: दीदी आप लोग कोई तिलक वाला गाना गा दीजिए।
3: अच्छा भाभी गाती हूँ। आओ जया समता, भाभी आप भी आओ हमारे साथ गाना गाओ।

0: वाह दीदी, बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग।
1: अरे भाभी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे सगुनी, रे अरे अरे सगुनी।

0: जया, किरण दी कहाँ है? चलो सब लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। मुझे तो भाई बहुत जोर की भूख लगी है, मैं तो चली खाने। जया, तुम किरण दी को लेकर आ जाओ।
1: हाँ समता दीदी, आप चलिए, मैं जरा किरण दीदी को ढूंढ के आती हूँ, देखूँ जरा कहाँ चली गई हैं, मिल नहीं रही हैं।
2: हाँ जया, मैं यहाँ हूँ, क्या बात है? मैं यहाँ दुल्हन के पास हूँ, आ रही हूँ अभी।
3: अरे बहनी, आज आज सबका जायक नाई है, आज रात भर रुके परी और रुको और हमारे गांव के ब्याह देखो।
1: रुकिए दीदी, बहुत मजा आएगा और आप लोगों के साथ मैं भी गाना गाऊंगी।
0: अरे कितनी रात हो गई है, मुझे तो नींद आ रही है, ये क्या है?
1: समता दीदी, ये लाई है, अभी इसको परछा जाएगा, चंद्र भैया अभी लावा परछेंगे। सुनना।

0: काका तो अभी से ही रोने लगे। अरे काका, आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी खुश रहे, ससुराल में सबको खुश रखे, सबका आदर सम्मान करे और सुखी रहे। बेटियों को तो एक दिन अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है।
1: लो, अब तो काकी भी शुरू हो गई। अरे अरे काकी मत रोइए, नहीं तो अभी महुआ दीदी को कौन संभालेगा।
2: दीदी अम्मा को छोड़ दीजिए, आप ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए।

0: और क्या ही रखा है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और सुनो जया, समता, अब शाम हो गई, फिर दूसरी शाम हो रही है ये, अब चलो सब लोग घर चलते हैं। चलो सबको राम राम बोलते हैं, काकी राम राम, काका राम राम।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
2: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
8: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
9: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
8: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
9: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
8: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
10: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
11: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
10: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
11: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
10: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरन नाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
12: हुक्कई से खेलन जाइबो।

हाँ जी, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है, 12 बज चुके हैं और 12 बजे होता है आपका अपना स्वास्थ्य संगनी, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन। आपकी फेवरेट वाली आरजी आ चुकी हैं और भाई गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में रोड साइड चाट के ठेले और उनमें से आती खुशबू जितना ही हमारा दिल लुभाती है, और छोटी सी गलती उतने ही हमारे पेट में जाकर बूम यानी कि ब्लास्ट करती है। अब आपने भी कई बार देखा होगा कि बाहर का खाने के बाद कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिसमें पेट में दर्द होना, उल्टी आना, बुखार आना, और हम सोचते हैं हमने ऐसा भी क्या किया है। एक ऐसा दुश्मन जो आपके प्लेट से निकल कर आपके पेट तक जाता है। एक ऐसा विलन जो दिखाई तो नहीं पड़ता है लेकिन बीमार आपको हफ्तों के लिए कर जाता है, जो आपको कमजोर हफ्तों के लिए कर जाता है। आज उसी विलन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ रहा, और जिसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। सुनने में काफी खतरनाक लगता है, पॉइजन का वर्ड सुनते ही लगता है भाई किसी ने जहर घोल दिया है। और जब खाना जिसको हम खा रहे हैं एनर्जी के लिए, सोचिए अगर वही हमारे शरीर में जाकर जहर का काम करने लगे तो क्या होता है, तो क्या होता है, बताने वाले हैं आज के अपने वाले शो में। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगली। मिलते हैं इस वाले ब्रेक के उस पार बताने के लिए कि आफ्टर ऑल क्या है ये फूड पॉइजनिंग, क्यों होती है ये फूड पॉइजनिंग, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं इस फूड पॉइजनिंग को ट्रीट। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

हाल में ही आपने भी कोई खराब खाना खाया है या आप थोड़े से भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कल रात तो अच्छे खासे थे, भले चंगे थे, और अचानक से पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है, साथ में उल्टी भी आ रही है, बुखार भी है, कमजोरी भी है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो होशियार हो जाइए क्योंकि ये हो सकता है फूड पॉइजनिंग, जिसके बारे में आज हम करने वाले हैं बात। तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आशुरती, लेकर आई हूं सेहत सही लाभ के बैनर के तले आपके लिए इस खूबसूरत सी श्रृंखला को, जिसमें बात होती है आपके सेहत की, आपके अपनों की सेहत की। स्पेशली आपकी आज बात होगी आपके पेट से जुड़ी हुई, क्योंकि भाई खाना खाने का शौक हम भारतीयों से ज्यादा आज तक किसी को नहीं होता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जब भी हम खाने को देखते हैं, स्पेशली जब हम स्ट्रीट पे निकलते हैं, यानी कि रोड साइड निकलते हैं, और स्ट्रीट स्टॉल इतने सारे होते हैं, उनमें से आ रही इतनी लजीज खुशबू होती है कि हमसे रुका नहीं जाता, और हम सोचते हैं पानी बताशे भी खा लिए जाए, ये भी खा लिया जाए, बर्गर भी खा लिया जाए, चाउमीन भी खा लिया जाए, और क्या ही हो जाता है। एक दिन तो चीट डाइट चलती है ना, और जिस दिन चीट डाइट करते हैं पता चलता है हमारे पेट ने हमारे साथ ही थोड़ी सी चीटिंग कर दी और अब पेट में हो रहा है दर्द। तो अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह से हो रहा है तो भाई वो है फूड पॉइजनिंग, या फिर हो सकती है फूड पॉइजनिंग। लेकिन ये भला है क्या, फूड पॉइजनिंग कहते किसको है? तो भाई अगर किसी खाने के जरिए आपके शरीर में कोई वायरस, कोई टॉक्सिन, कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया है जिसने आपको अंदर से बीमार कर दिया है, तो आपको होती है फूड पॉइजनिंग। दूषित भोजन या पेय पदार्थ का सेवन से होती है। हम आपको बता दें कि कोई हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी या फिर कोई टॉक्सिन्स आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं खाने के जरिए, और उसी के बाद आप होते हैं बीमार। आपके पेट में होता है बहुत ज़्यादा दर्द, उल्टियाँ होना, मतली आना, दस्त होना, पेट में लगातार दर्द होना या फिर बुखार, ये सारे लक्षण शामिल होते हैं जब भी किसी को होती है फूड पॉइजनिंग। ये हल्के से लेकर बहुत गंभीर तक हो सकते हैं। आमतौर पर तो इसे कई लोग घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती है, उल्टियों के साथ साथ लगातार लूज मोशंस भी आते हैं, और जिससे हालत बद से बदतर होती चली जाती है। स्पेशली अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं और आपको अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आपकी कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई एक तो आपका शुगर लेवल बहुत तेजी से डाउन होने लगता है, यानी कि लो होने लगता है, उसमें फिर आपको चक्कर आते हैं, आपकी बॉडी उल्टी भी कर रही है, आपकी बॉडी से लूज मोशन भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी हो रही होती है डिहाइड्रेट, और इस दौरान अगर आपने कहीं ना कहीं अपनी शुगर की दवा भी ले ली है तो मुबारक हो, आप बीमार हैं, साथ ही साथ आप बेहोश भी होने वाले हैं। हालांकि मुबारकबाद जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नज़दीकी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तो ये समस्या और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनसे तो कहा जाता है कि अगर आपको लूज मोशंस और आपको वॉमिटिंग लगातार आ रही हो तो कभी भी अपनी डायबिटिक की दवा ना लें। अगर आप लेते हैं तो शुगर लेवल लो होने की वजह से आप कोमा तक भी जा सकते हैं या फिर आपकी जान भी जा सकती है। अब फूड पॉइजनिंग, जिसको कई लोग घर पर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि यार क्या हुआ है, सिर्फ उल्टियाँ ही तो हो रही हैं, सिर्फ लूज मोशन ही तो हैं, पेट में दर्द ही तो है, तो कई लोग सोचते हैं कि पैरासिटामोल ले लेने से हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, और क्या ही हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं, सिर्फ दवा ले लूंगा घर पे ठीक हो जाएगा। स्पेशली कभी कभार ये ठीक हो भी जाता है, यानी कि 3 से 4 दिन ले लेते हैं, कई कभार ऐसा होता है कि भैया 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त भी लग जाए। तो अगर आपको लगातार 1 हफ्ते से ज़्यादा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें उल्टी होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, बुखार आना, तो इन सारे लक्षणों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत होती है। फिलहाल हम आपको और भी

देते हैं कि कुछ और सिम्टम्स जो फूड पॉइजनिंग को दर्शाते हैं यानी कि बताते हैं, तो कहते हैं भाई सागर समुद्री बीमारी या फिर उल्टी होने लगे, दस्त आने लगे, पेट में ऐठन होने लगे, भूख में लगातार कमी होने लगती है, हल्का हल्का बुखार, कमजोरी, सिर दर्द और कई लोग चक्कर खाकर भी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी हो चुकी होती है बहुत ज्यादा कमजोर। इसकी वजह से उनकी एनर्जी हो जाती है खत्म और हमको लगता है कि यह नॉर्मल लूज मोशन है, अगर हम मेट्रोजेल खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और वो मेट्रोजेल से भी ठीक नहीं होता। अगर ये दवाई लेने के बाद भी आपने सारे उपचार घर में करके देख लिए हैं फिर भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो अब आपको किसका इंतजार है, बीमार होने का, बेहोश होने का? क्योंकि अब बीमार तो पहले से ही है भाई, तो बेहोश होने का इंतजार ना करें, नजदीकी जिला अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाएं और पता करें कि कहीं आपको फूड पॉइजनिंग तो नहीं है, अगर फूड पॉइजनिंग है तो कौन सी दवा लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अब आपको बता दे भाई ये लक्षण तब आते हैं जब आप दूषित भोजन खाने के बाद कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि अगर आपने आज चाट खा लिया है या आज वो पानी बताशे खा लिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं थोड़े से बैक्टीरिया, थोड़े से टॉक्सिन्स शामिल हैं, अगर आपने वो खा लिए और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, भैया होगा होगा, हो सकता है आपकी बॉडी उसको झेल ले जाए और हो सकता है आपकी बॉडी ना झेल पाए, लेकिन उसके अगले ही सेकंड आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू नहीं होती हैं, ये तब शुरू होती है जब कुछ घंटे गुजर चुके होते हैं, कुछ दिन गुजर चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने रात में खाना खाया है तो सुबह तक उसके पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, कमजोरी होना, ये सारे लक्षण उन्हें आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आपने पहले ही दिन खाना कुछ भी ऐसा गलत खा लिया है और आपकी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश कर रही है तो हल्का हल्का बुखार आना शुरू होता है और कुछ दिनों तक आपके पेट में लगातार दर्द बना रहता है या कुछ दिन बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और अगर आपके पेट में बहुत तेजी से दर्द शुरू हो रहा है, ऐठन हो रही है, तो यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बताते हैं कि फूड पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए तो उसे क्या कुछ करने की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप फूड पॉइजनिंग के पीरियड के दौरान ले सकते हैं, किन चीजों को बिल्कुल ही अवॉइड करने की जरूरत है, क्या आप ना खाएं, क्या आप खाएं जिससे आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
0: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनोसली 89.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। सेहत से लाभ कई बैनर के तरह लेकर आए इस खूबसूरत सी श्रृंखला को, जिसमें बात है आपके सेहत की। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो सबसे ज्यादा किसी को बीमार करता है वो होता है फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरिया। भाई, जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, या फिर आप बिना हाथ धोए खा लेते हैं, या फिर बाहर के चाट पकौड़े, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, पानी बताशे, जब इनका शौक आपको बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब ऐसे मौसम में जहाँ बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैला करती हैं, तो उस मौसम में आप हो जाते हैं बीमार और आपको लगता है कि यार आम दस्त ही तो है। बट ऐसा नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये बीमारी हो जाती है बहुत ज़्यादा जानलेवा। तो हमने ये तो जान लिया कि ये फूड पॉइजनिंग होती क्या है और इसके कुछ आम लक्षण क्या होते हैं, बट अब बात करते हैं क्या इसका कोई इलाज संभव है। जी हाँ, इसका इलाज संभव है। और अगर हम प्रारंभिक चरण की बात करें तो सबसे पहले जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो होता है हाइड्रेट रहना। जब भी कभी भी आपको फूड पॉइजनिंग हो तो सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को हाइड्रेट रखना। उल्टी और दस्त से शरीर में तरल पदार्थ की काफ़ी मात्रा कम हो जाती है, काफ़ी मात्रा निकल जाती है, आपके बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है। साथ ही साथ अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपकी बॉडी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी खो रही होती है, क्योंकि आपको पसीना आता है, उस दौरान काफ़ी सारी इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं इस दौरान भी तो पीना शुरू कर दीजिए। आमतौर पर भी गर्मियों में पानी ज़्यादा पीने की बात की जाती है, ज़्यादा पीना भी चाहिए। और अगर आपको लगातार उल्टी और दस्त आ रहे हैं तो खुद को और भी ज़्यादा हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। तो लगातार अपने तरल पदार्थों की पूर्ति करते रहिए, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसमें आप पानी ले सकते हैं, ORL ले सकते हैं, शोरबा ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी ड्रिंक्स ले सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट शामिल हो। फॉर एग्जांपल, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, यानी कि नारियल का पानी ले सकते हैं। इसमें आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। और एक और ख़ास बात जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी आप पानी पिए तो कोशिश करें वो पानी पूर्ण रूप से साफ और स्वच्छ हो, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पानी टंकी का पी लेते हैं और इसकी वजह से भी हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सिर्फ खाने से ही फूड पॉइजनिंग होगी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कई बार आपके पीने की वजह से भी, जो आप कहीं भी जाकर किसी भी जगह से पानी पी लेते हैं उसकी वजह से भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ध्यान रखें, जब आप पानी पिए तो उसको साफ और स्वच्छ पिए, स्वच्छ बर्तन में पिए पानी, या फिर अगर आप कोई चीज़ बनाकर ढक रखते हैं तो उसको हमेशा ढक कर रखें, बिना ढके उसे ना रखें, ताकि उसमें कोई एक्स्ट्रा बैक्टीरिया ना हो। बासी खाना ना खाएं। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि हम रात का रखा हुआ खाना खा लेते हैं जो कि नहीं खाना चाहिए। अगर वो खाना स्मेल में भी ठीक है, टेस्ट में भी ठीक है, तो आप उसे एक बार गर्म ज़रूर कर लें खाना खाने से पहले, और अगर वो फ्रिज में रखा है तब तो आप उसको सेफली खा सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आप गर्मियों में फ्रेश, ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, बाहर के खाने को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बाहर के खाने आपको भी नहीं पता होता कि बाहर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो कब की हैं, क्या वो सेफ़ हैं, वो नहीं है। और गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर आप टिक्की की बात करते हैं तो आलू जो होते हैं वो सुबह कहीं ना कहीं उबाले जाते हैं और शाम तक आते आते वो ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में होते हैं और इतना टेम्परेचर वो नहीं झेल पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप बाहर कोई चीज़ खाने जा रहे हैं तो ये इंश्योर ज़रूर करें कि वो साफ़ हो, सुथरा हो और उससे भी ज़्यादा हाइजीन इसमें मेंटेन तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ वो आपके लिए सेफ़ हो। सुबह का रखा हुआ, कल रात का रखे हुए खाना खाने से बचें और ख़ुद को साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरा पानी ज़रूर प्रोवाइड करें। इसी के साथ बात करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो भैया और कर सकते हैं आप कुछ घरेलू उपचार। जी हाँ, हम आपको बता दें भाई, घरेलू उपचार में कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा लूज मोशंस आ रहे होते हैं तो घर में रखी हुई जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं लूज मोशंस के लिए, वो आप ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़रा ध्यान से लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, तो भाई ज़रा ध्यान से उनका इस्तेमाल करें, उन्हें आप ले सकते हैं ताकि आपके लूज मोशंस कुछ देर के लिए रुक जाए। अगर रुक गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तभी भी होती है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अब पूरी तरह से ठीक हैं, फिर भी एक बार खुद को चेक जरूर करा लें कि आगे जाकर के कोई खतरा तो नहीं होने वाला है। इसी के बाद आता है भाई कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो भैया खाना क्या नहीं है वो हम आपको बता देते हैं और क्या खाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। जब आप फिर से ठोस खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि भाई जब आपको फूड पॉइजनिंग होती है तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको तरल पदार्थ वाली चीज़ें लेनी है, सूप लेना है, खिचड़ी लेनी है, जो आप आसानी से डाइजेस्ट कर ले जाएँ, यानी कि आसानी से आप पचा ले जाएँ, जिसको पचाने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े उसमें। और इसके बाद जब आप ठोस खाद्य पदार्थ खाना शुरू कर देते हैं तो उसमें केले, चावल, सेब, टोस्ट, यानी कि जिसको हम ब्रेड आहार कहते हैं, वो शामिल कर सकते हैं। इसमें आप हल्के खाने को शामिल कर सकते हैं, खिचड़ी को, दाल को, चावल को। बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने से बचे। फिर से एक बार वही आता है कि हर गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मसालेदार या फिर बहुत ज़्यादा तीखा, खट्टा, मीठा खाना खाने से बचना चाहिए। बहुत सादा भोजन लेना चाहिए और आपको गर्मियों के मौसम में बाहर जो सब्ज़ियाँ या फिर जो फल मिलते हैं वो मेनली ऐसे होते हैं जो गर्मियों में बहुत आसानी से पच जाएँ, साथ ही साथ जो आपको हाइड्रेट रखते हैं, जिनमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर चाहे आप बात कर ले लौकी की, चाहे आप बात कर ले खीरे की, चाहे आप बात कर ले तरबूज की, या फिर आप बात कर ले खरबूज और तुरई की। ये वो सारी सब्जियां हैं जिनमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपको गर्मियों में जरूरत होती है हाइड्रेशन की, यानी कि आपको ज़रूरत है खुद को हाइड्रेट रखने की। तो अगर आप इन सब्जियों को शामिल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कोशिश करें कि गर्मियों में ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। अगर आप लौकी भी बना रहे हैं तो उसको सादा बनाएं, उसको कोफ्ते बना के खाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब आप फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी से जूझ रहे हों या खुद को ठीक कर रहे हों, तब आपको बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। पूड़ियों को थोड़ा साइड कीजिए, कचौड़ियों को थोड़ा साइड कीजिए, रोटी पर आइए, पराठों को थोड़ा साइड कीजिए और तली हुई चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। ठंड आएगी भाई, फिर से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से इसको बंद कर देने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खा सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में। हर एक चीज़ अगर लिमिट में रहती है तो भाई डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लिमिट में लिया गया हर एक चीज़ बेहतर है। और अगर आप अनलिमिटेड किसी चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो दवाई क्यों ना हो आपके शरीर में जा करके कहीं ना कहीं वो जहर का ही काम करने वाली है। तो ब्रेड आहार ले सकते हैं जिसमें केले, चावल, सेब, टोस्ट एंड बाकी जो फल आते हैं जो गर्मियों के मौसम में आसानी से उपलब्ध होते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं। साथ ही साथ हल्का भोजन लेने की ज़रूरत होती है। अब आपको क्या नहीं खाना है वो भी हम आपको बता दें। जब तक आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, यानी कि आप जब तक कम्प्लीटली ओके नहीं हो जाते हैं, आपको नहीं लग जाता कि भाई अब मैं फिट एंड फाइन हूँ, अब मुझे उल्टी नहीं हो रहा है, मुझे कहीं भी दस्त नहीं आ रहे हैं, मुझे पेट में दर्द नहीं हो रही, कमज़ोरी नहीं हो रही, तब तक के लिए आपको कुछ चीज़ों से बचने की जरूरत होती है। और वो चीजें हैं डेयरी उत्पाद, यानी कि वो जो दूध से बनी हुई चीजें हैं। अब और दूध से बनी चीजों का मतलब ये नहीं कि आप दही अवॉइड करेंगे, आप दही ले सकते हैं एक लिमिट में, क्योंकि दही आपके पेट को आराम देता है। बट दूध से बनी बाकी चीजें, कॉफी, दूध, खीर, मिठाई, आइसक्रीम, इन सारी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि दूध में होता है लैक्टोज, जो कि एक शुगर का ही फॉर्म है, और ये आपके पेट में जाकर आपके पाचन तंत्र को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जो भी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि जब वो दूध पीते हैं तो उनको ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, पेट में दर्द, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो जब भी किसी को फूड पॉइजनिंग होती है तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप डेयरी से बनी उत्पादों से दूर रहें, कुछ दिनों के लिए दूर रहें। भले ही आपको दूध चाहे कितना ही पसंद क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करें कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आप डेयरी की बनी चीजें ना खाएं। इसके बाद आते हैं वसा युक्त यानी कि बहुत ज्यादा फैट वाला खाना। फैट किस में होता है, चलिए ये भी बता देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा बटरी खाना खाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बटर, क्रीम, घी, तेल का इस्तेमाल हो रहा है, रिफाइंड का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल पूड़ी, छोले, राजमा, इन सारी चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है अगर आप फूड पॉइजनिंग से गुजर रहे हैं तो, इन सारी चीजों को ना खाएं। दूसरा आता है कि मसालेदार खाना। जी हाँ, बेशक, क्योंकि आपका पाचन तंत्र अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, अगर आप मसालेदार खाना खाते हैं तो ये आपके पेट में जलन के साथ साथ आपकी कंडीशन को और भी ज्यादा वर्स कर सकता है, यानी और भी ज्यादा खराब कर सकता है। तो इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। आप दही का सेवन कर सकते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, एंड प्रोबायोटिक्स को कहीं ना कहीं एंड प्रोबायोटिक के साथ साथ आप प्रीबायोटिक ले सकते हैं। प्रीबायोटिक आपको केले में मिलेगा ऑफ कोर्स, तो आप केला खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, और ये आपकी सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं उन सवालों की जो लोग अक्सर पूछते हैं और अक्सर सोचते हैं कि भाई ये दोनों चीजें तो सेम सेम होती हैं। वो सवाल कौन से हैं बताते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूँ आपकी आर चुनौती और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनल 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर प्रोग्राम चल रहा है आपका स्वास्थ्य संगिनी, सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए हैं इस खूबसूरत सी श्रृंखला को। और आज हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने जानी। और अब बात करते हैं उन सवालों की जिनका इंतजार आई थिंक आपको भी था। तो भाई, वो सवाल क्या है जो लोग अक्सर पूछते हैं? लोगों का अक्सर सवाल होता है कि पेट फ्लू यानी कि स्टमक फ्लू और फूड पॉइजनिंग में अंतर क्या होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि फूड पॉइजनिंग और पेट का फ्लू यानी कि फूड पॉइजनिंग और स्टमक फ्लू में दोनों में ही मतली आना यानी कि उल्टी आना, दस्त होना, पेट में ऐठन होना जैसे समान चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, समान लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से ये काफ़ी अलग होते हैं। जहाँ फूड पॉइजनिंग आपको दूषित भोजन, दूषित खाने या फिर पानी की वजह से होता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ये उसी व्यक्ति को बीमार करता है और कमज़ोर करता है, वहीं पर जो स्टमक फ्लू होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, संपर्क के जरिए, दूषित सतहों पर, दूषित भोजन के जरिए, पानी का सेवन करने के जरिए, और अगर आप वॉशरूम ना जाकर कहीं खुले में शौच करते हैं तो उसके ज़रिए ये फ्लू फैलने की आशंका थोड़ी ज्यादा रहती है। लोगों का दूसरा सवाल होता है कि कितने दिनों तक फूड पॉइजनिंग रहती है। तो मैं आपको बता दें, आमतौर पर दूषित भोजन खाने के कुछ घंटों से लेकर कई दिनों के भीतर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आमतौर पर ये 1 से 3 दिन तक चलते हैं। हालांकि कुछ प्रकार के फूड पॉइजनिंग ऐसी भी होती हैं जो 1 सप्ताह से ज़्यादा भी चल सकती हैं या 1 सप्ताह तक भी चल सकती हैं। अगर आपको सिर्फ 1 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, आप देखते हैं कि सिर्फ आपको 1 दिन ही उल्टी हुआ है, बुखार आया है, पेट में दर्द है, ऐठन है, दस्त हो रहे हैं और आपने घर में पैरासीटामोल लेकर या फिर मेट्रोजिल जैसी दवा लेकर खुद को ठीक कर लिया है और उसके बाद आप अगली सुबह प्रॉपर तरीके से ठीक हो गए हैं तो ये अच्छी बात है। और अगर ये 1 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है या फिर 3 दिन से ही ज़्यादा चल रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की और डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। तो भाई, ये तो था शो आपका फूड पॉइजनिंग को लेकर के, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो खाने पीने से होती है, दूषित खाना, दूषित पानी की वजह से होती है। अगर आप इन गर्मियों के मौसम में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, ख्याल क्या रखना है भाई ये भी बता देते हैं। ख्याल रखना है कि आप दूषित भोजन ना करें, घर का बासी खाना ना खाएं, बाहर जाकर चाट पकौड़े खाने से अच्छा है आप घर से खाना पैक करके ले जाएं, बाहर पानी पीने से अच्छा है आप घर से पानी पैक करके ले जाएं। हाँ, माना बैग का वजन थोड़ा बढ़ जाता है, लगता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज हम लेकर चल रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बाहर जाकर खा लेंगे, बट भाई इसको लेकर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी चीज़ें आप घर से पैक कर रहे हैं, कोशिश करें वो बहुत जल्दी ख़राब होने वाला खाना ना हो, उसमें बहुत तेल मसाला ना हो, बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, जिससे आप उसे लंबे समय तक कैरी कर सकें, उसे लंबे समय तक ले सकें। वो हल्का भोजन हो जिसमें पानी की मात्रा भरपूर हो, साथ ही साथ खुद को हाइड्रेट करते रहिए, लगातार पानी पीते रहिए। अगर आप सफ़र में सुबह 2 गिलास पानी पीने के बाद सीधे शाम में ही जाकर 4 गिलास पानी पीने की कोशिश करते हो तो ऐसा ना करें। हर घंटे में खुद को 1 गिलास पानी से ज़रूर नवाजें, यानी कि खुद को 1 गिलास पानी ज़रूर दें। पानी बहुत ज़्यादा चिल या बहुत ज़्यादा गर्म ना रखें, नॉर्मल पानी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी रख सकते हैं। अगर आपको ठंडा पीने का शौक़ है तो उसे भी थोड़ा टेम्परेचर उसका डाउन होने की ज़रूरत है, यानी कि आप उसको थोड़ा सा हल्का नॉर्मल करके पी सकते हैं, जिससे आपकी प्यास भी मिटेगी, आप खुद को हाइड्रेट भी कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से जो आपके दांत जम जाते हैं वो भी नहीं जमेंगे। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, और आप ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से जो आपको कमज़ोर कर देती हैं हफ्तों के लिए, आपको परेशान कर देती हैं, आप उनसे बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, गर्मियों में अपना ख्याल रखते रहिए, पानी पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना FM रेडियो 99.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार। सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
4: साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा। आज का कार्यक्रम कुछ खास है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हफ्ते की जिसका हर परिवार की खुशी से सीधा नाता है, नवजात सुरक्षा सप्ताह यानी न्यूबॉर्न केयर वीक, जो हर साल 15 से 21 नवंबर तक पूरे देश में मनाया जाता है। और आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ है गांव-गांव की हेल्थ दूत, माताओं की सच्ची साथी और नवजात देखभाल की चैंपियन, हमारी शुभचिंतक टीकन देवी जी। स्वागत है भाभी आपका।
5: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और क्या तारीफ कर रहे हो, इतने बड़े बड़े शब्द तो मैंने अपने ही बारे में कभी नहीं सुने।
4: क्यों नहीं भाभी, जब आप इतने बड़े बड़े काम करेंगी तो बड़े बड़े शब्द तो तारीफ में बनते हैं। टीकन भाभी, शुरुआत एकदम मूल बात से करते हैं। ये जो नवजात सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ये आखिर क्यों मनाया जाता है, इतना जोर क्यों दिया जाता है इस पर?
5: अरे दीदी, बात बहुत सीधी है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके बाद के पहले 28 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे नाजुक समय होता है। इस समय को ही हम नवजात अवस्था कहते हैं। इस दौरान बच्चा इतना कमजोर होता है कि जरा सी लापरवाही भी उसे बीमार कर सकती है। यही वो समय है जब उसे संक्रमण लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। शरीर का तापमान तुरंत बिगड़ जाता है। कई बार बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसके फेफड़े में ताकत कम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध ना मिले तो बच्चे बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब ये पूरे 28 दिन बच्चे के लिए जैसे इम्तिहान का होता है। ये सावधानी बहुत जरूरी है।
4: भाभी, ये सब सुनकर तो लगता है मामला बहुत गंभीर है। क्या हमारे देश में अभी भी नवजात बच्चों की मौत एक बड़ी समस्या है?
5: कहने में दुख होता है दीदी, लेकिन हाँ, अभी भी है। SRS 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी भी 18 नवजात बच्चे हर 1000 जन्मों में पहले ही महीने में दुनिया छोड़ देते हैं। आप सोचो ना, 18 परिवारों के घरों की रोशनी सिर्फ इसलिए बुझ जाती है क्योंकि थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती गई।
4: ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसके कारण कौन कौन से होते हैं?
5: कारण साफ है दीदी। सबसे ज्यादा मौतें कम वजन के बच्चों और समय से पहले जन्मे बच्चों की होती है, ये लगभग 45% के करीब है। फिर आते हैं वे बच्चे जो जन्म के समय ठीक से सांस नहीं ले पाते, जिसे हम एस्फिक्सिया कहते हैं, ये लगभग 15% मामलों में होता है। नवजात निमोनिया 10% बच्चे की जान ले लेती है। सेप्सिस यानी इन्फेक्शन लगभग 6% का कारण बनता है। बाकी जो कारण है जैसे जन्म के बाद दूध न लगना, साफ सफाई न रखना, नाभि का गलत तरीके से ख्याल रखना, जन्मजात समस्याएं, ये सब भी जिम्मेदार है। इसलिए ये पूरा सप्ताह मनाने का मकसद यही है कि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे।
4: सही कहा आपने भाभी, और हर साल की थीम बहुत ही सुंदर है ना?
5: जी बिल्कुल दीदी, इस साल की थीम है न्यूबॉर्न सेफ्टी, एवरी टच एवरी टाइम एवरी बेबी, यानी कि हर बार जब भी हम बच्चे को छुएं, उसे उठाएं, दूध पिलाएं, नहलाएं, कपड़े बदलें, तो हर बार हमें पूरा ध्यान रखना है कि बच्चा सुरक्षित रहे। ये नहीं कि हर बार सावधानी बरती और दूसरी बार भूल गए। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, हर बच्चा समान रूप से कीमती है और हर बच्चे की सुरक्षा जरूरी है।
4: बहुत बढ़िया, अब थोड़ी जानकारी लोगों को भी दे देते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही क्या क्या करना जरूरी होता है। टीकन भाभी जरा विस्तार में समझाइए कि जन्म के तुरंत बाद क्या करना चाहिए।
5: अरे दीदी, जन्म का पहला घंटा सबसे अहम होता है। इसको गोल्डन आवर्स भी कहते हैं। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, सबसे पहले नाल काटने में थोड़ी देर की जाती है, 1-3 मिनट तक। इसे ही डिलेड कॉर्ड कटिंग कहते हैं। इससे बच्चे को माँ का खून और ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाता है। इसके बाद बच्चे को तुरंत पूरी तरह से सुखाया जाता है। गीला शरीर बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका तापमान एकदम से गिर जाता है। फिर बच्चे की सांस देखी जाती है, अगर सांस ठीक नहीं चल रही हो तो NSS के ट्रेंड स्टाफ तुरंत उसे सहारा देते हैं। इसके बाद बच्चा माँ की छाती पर स्किन टू स्किन रखा जाता है, यानी उसका शरीर माँ की गर्मी से सीधे जुड़ा रहता है। ये बच्चे के तापमान, सांस, धड़कन सबको स्थिर कर देता है। और दीदी, सबसे जरूरी बात ये है कि जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाने की शुरुआत की जाए। यही दूध बच्चे की पहली दवा है, पहली ढाल है। बच्चे को विटामिन के का टीका भी इसी समय दिया जाता है, ताकि आगे चलकर खून बहने की समस्या ना हो। और अंत में बच्चे का वजन, शरीर की जांच और जरूरत हो तो आगे भी देखभाल शुरू और जरूरत हो तो आगे की देखभाल भी शुरू की जाती है।
4: ओ ठीक है भाभी, पर एक बात तो अक्सर लोग कहते ही रहते हैं कि नवजात बच्चा बहुत जल्दी ठंड से कांपने लगता है, यानी उसको बहुत जल्द ठंड पकड़ लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसकी?
5: दीदी, नवजात के शरीर में तापमान संभालने की ताकत बहुत कम होती है। हम बड़े लोग जैसे थोड़ी ठंड सह लेते हैं, बच्चा वैसा नहीं कर सकता है। उसका शरीर इतना नाजुक होता है कि जरा सी हवा या जरा सा गीला कपड़ा जरा सा देर भी उसके तापमान को गिरा देती, इसलिए बच्चे को ठंड बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जैसे ही बच्चा पैदा हो, उसे तुरंत अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है। सिर पर छोटी सी टोपी डाल दो, कपड़ा लपेट दो और कपड़ा भी थोड़ा गर्म रखा जाए। सबसे अच्छा तरीका तो है कि माँ की छाती से लगा रहे, यानी स्किन टू स्किन। इससे बच्चा सुरक्षित भी रहता है और उसका तापमान भी ठीक रहता है। ठंड नवजातों की सबसे बड़ी दुश्मन है दीदी, ये मैं पूरे अनुभव से कहती हूँ।
4: सही कहा आपने भाभी। अब बात करते हैं स्तनपान की। कई बार लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, पर आप ही बताइए स्तनपान क्यों इतना जरूरी है?
5: दीदी, माँ का दूध नवजात के लिए भगवान का दिया हुआ वो खजाना है। जी, इसमें जितनी ताकत, जितना पोषण, जितनी दवा, ऑल इन वन है।
4: बिल्कुल,
5: माँ का दूध बच्चे को हर तरह के संक्रमण से बचाता है, उसे ताकत देता है, उसके दिमाग का विकास तेज करता है। और इसमें सबसे प्यारी बात ये है कि इससे माँ और बच्चे के बीच रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है। जन्म के 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी, कुछ भी नहीं। बच्चे की पहली और असली दवा है माँ का दूध।
4: क्या बात है भाभी, लेकिन भाभी हमारे गांव में तो लोग बच्चे को छूते रहते हैं, चूम लेते हैं, हाथों में उठा लेते हैं, ये सब कितना सही है आखिर।
5: बस दीदी, यही सबसे खतरनाक चीज है,
4: है ना?
5: नवजात का शरीर इतना कमजोर होता है कि अगर कोई भी हाथ बिना धोए उसे पकड़े, चूम ले या बहुत सारी भीड़ उसके पास आ जाए तो संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। नाभि को गंदे हाथों से छू दिया, समस्या। बिना हाथ धोए बच्चा उठा लिया, समस्या। घर में 10-20 लोग नया बच्चा दिखाओ कहकर इकट्ठा हो गए तो भी समस्या। हमेशा एक ही बात याद रखो, साफ हाथ, सुरक्षित बच्चा। बच्चे के लिए ये नियम सबसे बड़ा बचाव है।
4: ठीक है भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन कौन से खतरे के संकेत हमें तुरंत पहचान लेने चाहिए।
5: देखिए दीदी, अगर बच्चा दूध ना पिए या उसकी सांसें तेज चल रही हो या सीना धंसता हुआ दिखे तो ये बड़े खतरे हो सकते हैं, संकेत होते हैं ये खतरों के। अगर बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म लगे, त्वचा पर दाने फोड़े हों, बच्चा बहुत रोए या बिल्कुल ना रोए, बिल्कुल चुप पड़ा रहे, तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। शरीर का पीला पड़ जाना, झटके आना, ये तो बिल्कुल भी इंतजार करने वाली चीजें नहीं है। ऐसा कुछ भी दिखे तो बिना देरी किए अस्पताल जाएं। नवजात के मामले में देर करना मतलब खतरा बढ़ाना है।
4: बिल्कुल सही बात है भाभी। अब एक और जरूरी बात, अस्पतालों में नवजात के लिए कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं?
5: दीदी, सरकार ने आजकल हर स्तर पर नवजात बचाने की व्यवस्था की है। सबसे पहले आती है NBCC यानी न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर, जहां बच्चे को गर्म रखने के लिए वार्मर होता है, ऑक्सीजन सेक्शन। इसके बाद आती है NBSU यानी न्यू बॉर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट, जहां हल्के बीमार या कम वजन वाले बच्चे को संभाला जाता है। फिर आती है SNCU स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट, ये तो बड़े अस्पतालों में होती है, 12 से 20 बेड वाली। यहाँ सांस की दिक्कत हो, कम वजन हो, पीलिया हो, संक्रमण हो या हर तरह की बीमारियों का इलाज होता है। और अब तो MNCU भी बन रहे हैं, जहाँ बच्चा और माँ साथ रहते हैं। बच्चा अस्पताल में भर्ती है तो माँ को अलग नहीं किया जाता, माँ ही उसके पास रहकर उसकी देखभाल करती है, और यही सही तरीका है।
4: गांव में आशा बहनें जो काम करती हैं उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, तो जरा इस पर भी बता दे।
5: हाँ दीदी, HBNC यानी होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आशा बहनों की। जन्म के बाद आशा बहन 3rd, 7th, 14th, 21st, 28th, 42th दिन घर घर जाकर बच्चे की जांच करती है। वो वजन देखती है, छाती का उतार चढ़ाव चेक करती है, बच्चे को दूध कैसे पिलाना है ये सब सिखाती है। अगर कोई खतरे का संकेत दिखे तो तुरंत रेफरल कराती है, साथ ही माँ की देखभाल करती है। खून की कमी, कमजोरी, तनाव, परिवार नियोजन, HBNC का मकसद है कि हर घर में सुरक्षित देखभाल पहुँचे।
4: और भाभी एक बहुत जरूरी बात, ये जो KMC यानी कंगारू मदर केयर है जिसकी खूब चर्चा होती है, ये आखिर क्या है?
5: अरे दीदी, KMC तो जादू जैसा है,
4: है ना?
5: हाँ, इसमें बच्चा सीधे माँ की छाती पर रखा जाता है, त्वचा से त्वचा यानी स्किन टू स्किन, कम से कम 1 घंटे, जितना लंबा हो सके उतना अच्छा है। कई दिन कई हफ्ते तक किया जाता है, अस्पताल में भी किया जाता है और घर पर भी। इससे बच्चे का तापमान स्थिर रहता है, वजन तेजी से बढ़ता है, संक्रमण कम होता है और माँ का दूध ज्यादा बनता है, बच्चा भी शांत रहता है। मेरी तो हमेशा यही सलाह है, KMC जितना लंबा उतना फायदा ज्यादा।
4: यानी कंगारू मदर केयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जादुई भी।
5: बिल्कुल
4: भाभी, अब सरकार की कई योजनाएं चलती हैं नवजातों के लिए, उसके बारे में क्या कहना है आपका?
5: दीदी, सबसे पहले आता है NSSK यानी नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें हर प्रसव केंद्र पर प्रशिक्षित स्टाफ होता है जो जन्म के समय सही देखभाल, सांस चलने पर रीससिटेशन, ठंड से बचाव, इन्फेक्शन से बचाव करते हैं। दूसरा है JSSK, दूसरा है JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें बच्चे को एक साल तक मुफ्त इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त जांच, मुफ्त खून और घर से अस्पताल तक और वापस पूरी तरह मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। गरीब परिवारों के लिए तो ये सच में भगवान की कृपा जैसा है।
6: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। एक और बात कि विटामिन के का टीका क्यों लगवाया जाता है?
5: क्योंकि दीदी नवजातों में विटामिन के बहुत कम होता है और इससे कई बार अचानक खून बहने का खतरा भी होता है, इसलिए जन्म के पहले घंटे में ही 1 mg का विटामिन के देना बहुत जरूरी है। ये बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाता है।
6: और आखिर में नवजात देखभाल में घर में कौन कौन लोग मदद कर सकते हैं ये भी बता दीजिए।
5: ये तो सबको करना चाहिए। हाँ, भैया, पिता, दादी, नानी, चाची, बड़ी बहन, हर कोई। माँ को आराम मिले, सफाई रहे, सही समय पर दूध दिया जाए, ये सब परिवार की ही तो जिम्मेदारी है। नवजात सिर्फ माँ का नहीं पूरे परिवार का बच्चा होता है।
6: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। और भाभी कहीं ना कहीं आपने कुछ भ्रांतियाँ भी तो लोगों में मतलब होते हुए सुनी या देखी होंगी।
5: हाँ दीदी, और इन्हीं भ्रांतियों की वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहला दूध गंदा होता है। अरे दीदी, यही तो सबसे पौष्टिक होता है।
6: वही तो।
5: हाँ, कहते हैं कि बच्चे को जल्दी नहला दो। अरे 24 घंटे बाद ही नहलाना चाहिए, ज्यादा लोग देखने आएंगे तो अच्छा है। नहीं दीदी, ये तो संक्रमण का बड़ा खतरा है। और सबसे खतरनाक भ्रांति, बच्चा थोड़ा ठंडा है, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, ठंड नवजात की जान भी ले सकती है। मेरे गांव की बहनों और भाइयों, एक बात जरा दिल में उतार लो, हर बच्चा अनमोल होता है और नवजात की सुरक्षा सिर्फ माँ की नहीं बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। देखिए, नवजात का ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर सही रखा जाए तो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहता है।
6: ठीक है भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितनी सरल भाषा में इतनी जरूरी और इतनी महत्वपूर्ण बातों पर जरूरी बातें की। दोस्तों, जैसे टीकन भाभी ने कहा, नवजात सुरक्षा सप्ताह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए आज मिलकर एक वादा करें, हर बच्चा सुरक्षित बच्चा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ, पर जाने से पहले बिल्कुल हम लेंगे आपकी और हमारी सुरक्षा की शपथ।
7: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
8: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
7: सेहत सही तो लाभ कई।
9: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
10: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
9: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
10: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
9: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: अरे सुना
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: धड़कन।
4: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में हैं
5: आरजे अंशिका।
4: हां जी, और आ गए हैं हम जल्दी से अपने कमर की पेटी को कस करके, एंड आप लोग भी रेडी हो जाएं क्योंकि फ्लाइट अभी हमारी फटाफट उड़ने को है तैयार। क्योंकि आज जो होता है ना दिन, यानी फ्राइडे के दिन, हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए काफी मशक्कत करते हैं। घर में तो करते ही करते हैं, लेकिन हम अपने कार्यस्थल पर और अपने जॉब पर, अपने घर में जब हम काम से खाली हो जाते हैं, तो काफी महिलाओं को लगता है कि यार 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, तो चलो हम लोग फटाफट फेस पे ये यूज कर लेते हैं, बालों में ये यूज कर लेते हैं। ऐसा होता है ना अंशिका?
5: बिल्कुल मैम,
4: तो
5: ऐसे ही होता है।
4: उसको हम लोग किस वे में लेते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम अपने आप को पैम्पर करते हैं, यानी कि हमने एक दिन पहले, 2 दिन पहले हम लोगों ने ये टॉपिक भी लिया था कि अपने आप को प्यार करना। और अपने आप को प्यार करने का मतलब है जब हम अपने आप की केयर करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और अपने लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जैसा कि लगता है कि हाँ यार ये होना चाहिए था। तो फिर कुछ ऐसे ही बातों को लेकर के आज के दिन हम आते हैं, क्योंकि आज हमारा फ्राइडे स्पेशल, यानी कि ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल वाला डे, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारने का दे। तो आज आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है
3: सुन सहेली विद
4: आरजे समता एंड
5: आरजे अंशिका।
4: और इस प्यारी सी दोपहर में, दोपहर को प्यारी तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ना सुबह से इतना ज्यादा पसीना बहा चुके हैं हम लोग कि बिल्कुल ना चेहरे की तो जैसे लगता है कि वाट सी लग गई है। लेकिन कहते हैं कि जिसका पसीना ज्यादा आता है उसका फेस बाद में ग्लो करता है। है ना?
5: Of course.
4: अंशिका, तो ऐसा होता है कि जिसका पसीना ज्यादा निकलता है, इट मींस कि उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसकी स्किन अच्छी होती है, उसकी बॉडी के जो रोम छिद्र होते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं।
5: बिल्कुल।
4: तो इस सुकून के साथ में, इस प्यारी भरी, प्यार भरी वाली, सुकून वाली बात के साथ में आज का शो शुरू करते हैं। आइए एक साथ, एक ही फ्रेम में दोनों लोग विश करते हैं
5: शुभ दोपहरिया। तो शुभ दोपहर लिसनर्स, क्योंकि मौसम है जबरदस्त, इसलिए हम भी हैं बहुत मस्त मस्त मस्त और बहुत बेकरार भी हैं। बेकरार हैं आपसे बात करने के लिए।
4: दिल बेकरार था, दिल बेकरार है,
5: दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, वो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

0: दिल बेकरार था।
1: आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अंशिका के मुंह से एक शब्द निकलता है और मैं उस पे गाना बना देती हूँ।
0: तेरा इंतजार है। किसका इंतजार है मैम? बाय द वे
1: समवन स्पेशल। कोई चेक वेक नहीं करना है, काम करना है बस। चेक।
0: आपने इतने अच्छे, देखिए लिसनर्स ही होता है ना, इतने अच्छे से सॉन्ग गाया, इतने अच्छे से बता भी दिया someone special, तो फिर चेक करना तो बनता है ना, नॉक नॉक करना तो बनता है कि भाई कौन है वो someone special, क्यूट, इनोसेंट, या फिर कोई भी हो सकता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुरंत कोई गाना आ जाए मुंह में और हम किसी के लिए अच्छे से फीलिंग से गा रहे हैं तो मतलब है कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं।
0: अब अभी आपने ही कहा जब
1: तो समवन स्पेशल नॉट सो मतलब एक मेल इंसान, हम किसी अपने फ्रेंड का भी इंतजार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल आई नो मैम।
1: फिर हाँ, तुम तो बड़ा नो हो हमसे। तुम तो बड़ा नो ही हो ना।
0: अभी मैम कहती है अंशिका तुम गलत ट्रैक पे मत जाया करो, सही ट्रैक पर आ करो।
1: एग्जैक्टली सही ट्रैक पे थी, लेकिन वो समय सही नहीं था अंशिका, समय सही नहीं था। तो लिसनर्स आ गए हैं,
0: ट्रैक सही था, समय सही नहीं था।
1: वो क्या सोचेंगे कि इन दोनों की आपस की बकबक जो खत्म नहीं होती है। तो शुरू करते हैं आज के प्यारे से शो को, और ये इस गाने को भी मैं लगा देती हूँ, तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार है। और उसके पहले अभी जो हमारी एक औपचारिकता होती है, आप सभी को पता है कि मैं लेके आती हूँ पोयम, तो अंशिका जब तक देर रास्ता तब तक हम बनाते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक गाने की सोच।
0: तो चलिए देते हैं रास्ता। और आज है कि आते ही हमने कहा था कि भाई मिलने के लिए दिल बेकरार तो होता ही है, तो जब इंतजार कही दिया है तो कुछ इंतजार से ही लेकर चलते हैं। आँखों को उनका इंतजार था, दिल बेहद बेकरार था। वो मिल गए यही तो है खूबसूरत फसाना,
1: जी।
0: पर दुनिया से है ये कुछ अनजाना, अनजानी बात है, एक नई शुरुआत है। तो चलिए करते हैं एक प्यारी सी कविता की शुरुआत आपकी अपनी आरजे
1: ममता के साथ,
0: समता के साथ। मैम तो नाम ही चेंज कर देती है
1: समता के साथ।
0: लगता है मैम को नाम चेंज करना है।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा नाम अच्छा वाला नाम।
0: नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन भी अच्छा था,
1: ममता,
0: सिर्फ एक वर्ड ही तो चेंज हुआ।
1: हाँ,
0: आगे से हटा के आगे से हमने बना जो
1: है ना,
0: हो गया।
1: चले काम पे लगे।
0: जी
1: चलिए।
0: लगता है कोई मैम को इस नाम से बुलाता है तभी मैम को ये नाम याद आया। ऐसे बच्चों के निकनेम होते हैं ना मैम घर में, कई नाम।
1: मेरा निकनेम लकी है।
0: अच्छा,
1: ममता नहीं है, लकी है निकनेम।
0: ओके,
1: लकी है, और वो भी लकी मुझे कुछ खास लोग बोलते हैं, सब नहीं। ठीक है, चलें शुरू करें हम। अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी
0: मेरी
1: खत्म हो गई हो तो मैं आगे काम को
0: बढ़ाऊं। आपको इजाजत
1: जी, तो चलिए
0: लिसनर्स की।
1: हाँ, तो
0: आपको इजाजत
1: जी, तो चलिए
0: लिसनर्स की।
1: हाँ, तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी कविता के साथ, जो कि आप सभी को पता है कि जो होती है रिश्तों को लेकर के, एंड प्यारी सी लव चीजों को लेकर के। तो बढ़े आगे
0: जी।
1: कच्चे धागों की ये डोर होती है, कच्चे धागों की ये डोर होती है, पर दुनिया की सबसे बड़ी जोर होती है, पर दुनिया की सबसे बड़ी जोर होती है। कभी चुपके से दिल को छू जाती है तो कभी बिना कहे बहुत कुछ कह जाती है। वक्त की धूप में जो साया बन जाए, वक्त की धूप में जो साया बन जाए, वही तो सच्चा रिश्ता कहलाए। दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, पर मन का तार कभी न टूट पाए। गलत फहमियों की धूल कभी जम जाती है, हंसती हुई जिंदगी भी थम जाती है। पर माफी की छोटी सी फुहार दिल से खिला देती है सारा प्यार। दिखावे के इस दौर में इन्हें संभाल कर रखना, अपनों के चेहरों की मुस्कान हमेशा चखना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब यही रिश्ते जिंदगी को मोड़ देते हैं।
0: वाह, जबरदस्त, बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही प्यारी लाइंस, और बहुत ही फीलिंग से सुनाया भी मैंने, बहुत अच्छा लगा। हमारा रिश्तों का जो दिन है ना, ये स्पेशल हो गया इतनी प्यारी लाइंस को।
1: और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ऐसा ही सेम कुछ रिश्ता हमारा और अंशिका का भी है कि काफी मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हमारा और इनका रिश्ता 3 साल से चल रहा है, नहीं 2 साल से, ढाई पौने 3 साल से चल रहा है। और पहले ये स्टूडेंट थी, पहले ये मेरे से बहुत डांट मार खाती थी और अब ये सुधर चुकी हैं, अब ये ट्रैक पे आ गई हैं और ट्रैक पे इतना आ गई हैं कि मुझे मुझे मुझे भी कभी कभी मेरे ट्रैक से भी अलग कर देती हैं ऐसी ऐसी बातों को बोल करके। तो ये आज़ादी हम उन्हीं को दे पाते हैं जब हम से हमारा किसी का दिल का रिश्ता होता है। और इतने सारे टाइम में, मतलब अभी कुछ टाइम से इसने वो जगह बना ली है अब, कि मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ अंशिका और हमारा जो रिश्ता है वो प्योर है एंड बहुत ही अच्छा वाला है। क्योंकि मैं आप सभी से भी एक बात कहना चाहती हूँ लिसनर्स और जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, कि हमारी दोस्ती जो होती है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि आप सामने तो आप जी हजूरी करते हैं, आई मीन जी हजूरी का मतलब होता है अरे यस, अरे हाँ तुम इतनी अच्छी हो, ये है वो है, लेकिन सच्ची दोस्ती वो होती है जो पीठ पीछे आपको हिला ना पाए। ये मेरा तजुर्बा है। और आपको कितना भी कोई प्रलोभन दे दे कि मैं तुम्हें इतना दे दूंगा, मैं तुम्हें इतना दे दूंगी, तुम मुझे उसकी एक कमी बता दो। दोस्ती वहां पर, वफादारी वहां होती है सिद्ध, जब हम ये कह सकें कि आप मुझे चाहे कितने भी पैसे दे दो, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। समझ में आया अंजु?
0: समझ में आया।
1: तो ये चीजें मेरे लिए भी मतलब अलाउड है और ये चीजें आपके लिए भी, एंड ये चीजें हर एक उस दोस्ती के लिए अलाउड है जो कि एक सच्ची और प्योर दोस्ती के अंतर्गत होता है।
0: बिल्कुल ना, बिल्कुल सही कहा मैम ने। और अभी जो उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, तो क्रेडिट गोज टू हर, क्योंकि मैं जब आई थी तो हाँ मैं डरती थी, मतलब अभी भी डरती हूँ, ऐसा नहीं है,
1: पर अब वो वाला डरना नहीं है,
0: पर अब अच्छा।
1: कभी कभी ऐसा होता है कि डर में ही गलतियाँ होती हैं जो इनसे हो जाया करती थी। फ्रेंडली कहा गया, मतलब हम लोग जब नए नए यहाँ पर शो के लिए आती थी तो कई बार होता था अंशिका को चिढ़ाया जाता कि तुम इतना क्यों डरती हो, फ्रेंडली ला करो, ये वो, पर जैसे वो सीट पे बैठती थी जैसे लगता था कि इसका फ्यूज ऊपर का उड़ चुका है। तो जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, आज हमारा रिश्तों का सेगमेंट है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं ना, तो एक मन में एक हल्का सा डर भी हो जाता है और उस डर में गलत काम हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि नई नई शादी होती है और पहली रसोई में जब लड़की जाती है सुबह और उनकी सास, उनकी देवरानी, उनकी नंद खड़ी होती है और लड़की बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, हर चीज़ में एक्सपर्ट होती है, बट उस दिन उसका हलवा अच्छा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एक तो डर होता है, आता उसे होता है लेकिन एक डर में होता है कि मतलब कैसा बनेगा, कैसा
0: बनेगा,
1: लेकिन उसी दिन उससे वो हलवा खराब बनता है, उसी दिन उससे उसके हाथों से मीठा वो सही नहीं बनता है। तो एक तो डर होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहां हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, वहां हमें प्यार वाला डर होना चाहिए, खौफ वाला डर नहीं होना।

0: मैंने इतना बाँचा तो मैंने कल इनके लिए मैंने बोला।
1: हाँ, और मैं समझ भी गई हूँ, और इसीलिए मैम कहती है ना तुम सुधर गई हो, तो इसलिए मैं समझ कर सुधर गई। अब मैं सब कुछ करती हूँ, मतलब डर अभी भी है नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं
0: अब वो डर नहीं है, वो एक खौफ वाला डर
1: अच्छा
0: नहीं
1: है, वाला है।
0: अब अच्छा वाला डर है कि हाँ अगर मैं ये करूँगी तो मैं आपको और अच्छा लगेगा, और अगर मैं और अच्छे से करूँगी तो ये और अच्छा फील करेंगी, ये वाला डर है। ये वाला गुड वाला डर होता है। ठीक है
1: ठीक है,
0: चले
1: चले
0: चलो रियल फैक्ट्स।
1: वैसे कुछ लोग खौफ वाला भी डरते हैं मैम से, ऐसा नहीं है। मुझसे किसी ने कहा भी था कि डांटती है, तो मैंने जवाब दिया था हाँ प्यार से डांटती है, तो उससे मुझे उस साइड से जवाब मिला था हाँ डांटती तो प्यार से ही है। तो है कुछ लोगों की आंखों में खौफ है, लेकिन वो भी बहुत जल्द समझ जाएंगे कि वो खौफ नहीं है, मतलब
0: वो प्यार है।
1: देखिए जब कोई अपना आपको अपना डांटता है ना, अपना इंसान, वो चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। अब अगर मैम कोई ऐसी कहीं कभी कुछ होगा, वैसे तो वो कुछ गलती नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि वो रॉन्ग साइड जा रही है, तो मैं भी उनको प्यार से समझा देती हूँ कि मैम ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए तो आपको बेटर बेनिफिट।
0: हाँ, ये समझाती है मुझे बहुत अच्छे से, समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है वो कुछ भी बहुत।
1: तो उसी तरीके से गुस्सा भी उसी पे होता है, प्यार भी उसी पे होता है, हक भी उसी पे होता है, जिससे बहुत अच्छा सा रिश्ता होता है। लेकिन हाँ कभी कभी मैम ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ जैसे आपने दूध देखा है ना, दूध आप गैस पे रखते हो तो एक उबाल, मतलब एक उसमें आता है ऐसे भाप उठता है, और उसके बाद क्या होता है वो नीचे बैठ जाता है।
0: लेकिन अगर वो बह जाता है तो ज्यादा खतरनाक भी होता है।
1: नहीं, अब बहने वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ज्यादा हो जाता
0: जी।
1: है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, वो फिर हानिकारक हो सकता है।
0: हानिकारक सभी के लिए,
1: सभी के लिए।
0: ओके, तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में आइए जानते हैं कि क्या है, और चलते हैं खूबसूरत से गाने की ओर।
1: जी, तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है कि रिश्तों में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीछे मुड़कर बार बार देखने से आपके रिश्ते सिर्फ खराब होते हैं, और आपको एक नई शुरुआत करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी अपने रिश्तों में पीछे ना देखें। पीछे ना देखने का मतलब है कि मान लीजिए हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई बुरा एक्सपीरियंस कभी रहा हो, पीछे कभी नहीं देखना चाहिए। हम जब सड़क पे चलते हैं मैम, तो हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, कभी सड़क को पीछे मुड़कर थोड़ा ना देखते हैं कि कितनी हमने पार कर ली।
0: एग्जैक्टली,
1: ठीक उसी तरीके से हमेशा आगे जाइए, क्योंकि पीछे जो छूट गया वो पीछे छूट गया, लेकिन आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा और बेस्ट ही मिलेगा।
0: जी,
1: चल बातें अच्छी हो रही है।
0: चलें
1: चलें,
0: तो चलिए लिसनर्स लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक में बहुत ही प्यारा सा गाना मैंने लगा दिया
1: जो
0: है,
1: जो मैम गा रही थी,
0: वही मैं गा रही थी, दिल दिल बेकरार।
1: एक लाइन गा देंगी उसके बाद चला,
0: नहीं कुछ नहीं गाएंगे,
1: एक लाइन नहीं मैम, रिक्वेस्ट
0: आप कुछ नहीं
1: मैम, डबल रिक्वेस्ट,
0: हेडफोन लगाओ
1: मैम, रिक्वेस्ट
0: हेडफोन लगाओ,
1: आप मेरी रिक्वेस्ट भी नहीं मान
0: रहे, हेडफोन लगाओगी तो गाएंगे ना।
1: अच्छा हेडफोन, ओह
0: हद है बिल्कुल।
1: ओके ओके ओके
0: जी, तो एक काम करेंगे, अभी गाना शुरू होगा ना, मैं गाने के साथ में गाऊंगी।
1: ओके ओके,
0: क्योंकि कल लिसनर्स बोल रहे थे कि आप
1: शौर,
0: गाने
1: शौर,
0: के साथ में गाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है, या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: जे अंशिका,
4: वाकई फैंटम हो तुम, वाकई बता रहे हैं, सो जाती हो पता नहीं कहाँ कहाँ। तो चलिए भाई लिसनर्स, फटाफट शुरू करते हैं आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो कि आए हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिश्तों को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि आज का सेगमेंट हमारा होता है रिश्तों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।
3: बिल्कुल, आज भी है हमारे

0: पास कुछ जो कि रिश्तों को बेहतर कैसे बनाया जाए, लेकिन बेहतर बनाने से पहले हमारे रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिन्हें दूर हो जाए, जो दूर करने चाहिए, अगर वो दूर हो जाएंगी तो आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है। तो आज भी ऐसी ही एक प्रॉब्लम हमारे पास है, तो प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, वो मैं बताऊंगी
1: और निवारण हम बताएंगे, ये मेरे ऊपर सौंप दिया जाता है। तो आशु जी एंड हमारे साथ में एक मंजू जी हैं जो कि लिख रही हैं अपना नाम मंजू, बट उनके आईडी से नाम मुझे लिख करके आ रहा है क्रिकेट लवर। एंड महेंद्र जी आल्सो एंड मिश्रा ऑप्टिकल जी नहीं आए हैं, सबलू जी आ गए हैं और बाकी सभी लिसनर्स भी जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि ना हमारा आज का जो सेगमेंट होने वाला है वो बहुत ही प्यारा सा, अपने रिश्तों को किस तरीके से हम और बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए आप बताते हैं कि हमारी आज की प्रॉब्लम का नाम क्या है। तो हमारी आज की प्रॉब्लम का नाम है फैंटम कम्युनिकेशन।
1: फैंटम कम्युनिकेशन
0: यानी कि ये क्या होता है, ये एक तरीके से ऐसा होता है कि आप साथ तो हैं पर साथ नहीं है।
1: ओके,
0: साथ होकर भी अकेले रहना,
1: साथ होकर के भी अकेले रहना।
0: इसका मतलब होता है कि हम एक ही कमरे में हैं बट हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। कहने का ये सेंस है कि आप साथ तो हैं पर मेंटली एक दूसरे से हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं, और ये रिश्तों में तब शुरू होता है जब आपके रिश्ते में गैप आने लगता है। कई बार हम कहते हैं ना मैम कि स्पेस देना चाहिए, स्पेस अगर आप किसी को देंगे तो वो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लेकिन रिश्तों में इतना भी स्पेस नहीं दे देना चाहिए कि वो जगह बन जाए। कई बार हमारे रिश्तों में यही होता है कि हम सामने वाले को इतना स्पेस दे देते हैं कि रिश्तों में एक जगह बन जाती है, इसलिए उतना स्पेस नहीं देना चाहिए। जैसे कहते नहीं है जब आप जाते हैं मैम तो ट्रैफिक रूल्स में वो बताते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो कुछ वही वाला सिचुएशन हमारे रिश्ते में भी होता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घट गई। तो इसीलिए नज़र हमेशा बनाए रखनी चाहिए, फिर चाहे आप साथ हों या दूर रह रहे हों, दोनों ही सिचुएशन में है कि नज़र हमेशा बनाए रखनी चाहिए। और ये मेल्स और फीमेल दोनों के लिए है, मतलब ये तो फनी वे था बताने का। कहने का सेंस ये है कि एकदम से इंट्रैप करना नहीं छोड़ देना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बात नहीं कर रहे हो, आप दो दिन तक बात नहीं कर रहे हो, आप उनकी कोई खोज खबर ही नहीं ले रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो। तो इससे क्या होता है कि हमारे रिश्ते में गैप आने लगता है कि अरे वो तो मेरे बारे में कुछ पूछती नहीं है, लगता है इंटरेस्टेड ही नहीं है मतलब पूछने के लिए, या फिर हो जाता है कि अरे वो मुझसे दो दिन बात नहीं करती है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लगता है मुझसे कुछ दूर हो गई है, मतलब इस तरह के ख्याल हमारे मन में कहीं ना कहीं आने लगते हैं, और यही धीरे धीरे आपके रिश्तों में गैप मेंटेन करते हैं। और जब वो गैप ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे रिश्तों में आ जाती है प्रॉब्लम कि हम एक साथ होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये उन्हीं के साथ होता है जो दूसरे शहर में रहते हैं या आपके साथ नहीं रहते, ये उनके साथ भी होता है जो सुबह निकलते हैं और शाम को ऑफिस से सीधे घर जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि कई बार हमारा बिजी शेड्यूल इतना टाइट होता है कि हम बात भी नहीं कर पाते, या धीरे धीरे साथ रहते रहते ही आने लगता है कि पहले तो जैसे मान लीजिए कि पहले तो वो मेरे लिए मेरी स्पेशल डिश बनाती थी, अब नहीं बनाती हैं, पहले तो वो मुझे बहुत केयर करते थे, अब नहीं करते हैं, मुझे फ्लावर्स ला के देते थे, छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से अलग कर देती हैं। रिश्ते में अकेलापन बढ़ता है जिससे बातचीत खत्म हो जाती है, और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है, मतलब अगर आपकी बात भी होती है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है कि अरे जैसे कुछ भी छोटी मोटी बात, जैसे मान लीजिए तुमने बिल दे दिया था, फोन का बिल दे दिया था, ये
1: बिल दे दिया था,
0: बिल
1: अच्छा
0: बताइए आप बताइए लिसनर्स, मतलब यहाँ शुक्र है कि यही सुनाई पड़ा मैम को, दिल सुनाई पड़ा,
1: सच्ची है चिंका, मुझे ना दिल ही सुनाई दिया कि तुमने हाँ। आपने दिल दे दिया था ना, क्या हो रहा है दिमाग में, ये सब क्यों ऐसी बातें आ रही है, ये फैंटेसी मेरे दिमाग में क्यों आ रही है।
0: अब इसमें मुझे मतलब देखो, याद आ रहा है।
1: नहीं देखो, इसने दिल और बिल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाया मुझे, ये जानबूझ करके बोली है मुझे, और इसने आपने दिल दे दिया था मतलब ऐसे करके, तो मुझे लगा कि शायद वाकई दिल देने वाली बात कुछ अभी बताएगी है। हाँ बिल दे दिया था, सॉरी आगे।
0: नहीं अब तो मेरा जो सेगमेंट है वो दिल की तरफ ही जा रहा है कि मैंने दिल क्यों नहीं कहा, मुझे दिल ही कहना।
1: आपने दिल दे दिया था जी, आगे।
0: आपने दिल दे, ऐसे कोई एक सॉन्ग भी है, दिल दे दिया दिल ले लिया ऐसे करके कुछ है, मुझे मतलब प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, बट कुछ है ऐसे। तो दिल दे सकते हैं आप और दूसरे का दिल ले भी सकते हैं, बहुत ही प्यारा ये एक लेन देन होता है। फिलहाल हम चलते हैं बिल,
1: ये लेन देन जब ये लेन देन लेने में तो लेन देन करने में तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब वापस करने का दिन आता है तो बड़ा ही दुखदाई होता है। जो
0: वापस करने का दिन?
1: वापस करने का भी एक दिन आता है जिसको कहते हैं ब्रेकअप। समझ में आया?
0: नहीं तो वो सबके साथ नहीं होता।
1: दिल लेने की रुत आई, ये देखा मैंने, मतलब आप गानों के मामले में आप मेरे से आप बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है?
0: किसी को आपसे जीतना भी नहीं है,
1: चले
0: हारने में ज्यादा मजा आता है।
1: कम टू द पॉइंट।
0: ऑफ कोर्स, तो कम टू द पॉइंट ये है लिसनर्स कि अब दिल पे बात हो रही थी और वो दिल तक चली गई, तो फिलहाल दिल से ही दिल की बात करें। कहने का सेंस ये है कि इस तरह की छोटी मोटी बात नहीं करनी चाहिए, अपने दिल की बात करनी चाहिए। अगर आप दिल की बात करेंगे तो कभी भी आपके रिश्ते में गैप नहीं आएगा।
1: हाँ ये तो सही कह रही हूँ, बिल्कुल। सुना है थक हार के लोग घर आते हैं और पर जो घर के ही थक जाएं तो वो कहाँ जाएं। सबलू जी काहे, सबलू जी आप क्यों थके हुए हैं मुझे ये बताइए, आप कि आप घर से ही थके हुए हैं। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आई नदिया किनारे। नहीं ये नहीं था आशु जी, आप गलत हैं। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, ये गाना अंशिका के मुंह में था।
0: हाँ जी, तो कहने का सेंस ये कि यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है। अब मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि मैम अभी गुनगुना रही थी या अभी गुनगुनाएंगी, तो वो दो सुन लेते हैं और इस सॉन्ग के उस पार आएंगे बताने के लिए कि अगर समस्या है बहुत ही गंभीर तो क्या करना है आपको।
1: जी तो चलिए फटाफट एक सुना देते हैं गाना इसको, और उस गाने के बाद आएंगे हम और इसका सोल्यूशन बताएंगे कि फैंटेसी कम्युनिकेशन जो होती है उसको किस तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपको अगर सुनना है, मतलब सुनना तो है ही, कहीं नहीं जाना है आपको, हमारे साथ बने रहना है 89.6 FM पे इस प्यारे से गाने के साथ।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली, अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका के साथ। तो वही सहेलियां हैं तैयार और हम तैयार होकर हमें क्या करना है? तैयार होकर हमें, आपको अभी तक हमने कारण बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब निवारण बताना है। क्योंकि समस्या जो होती है ना, वो निवारण बताने से खत्म हो जाती है।
5: बिल्कुल, तो चलिए फटाफट हम बिना देर लगाए आइए आते हैं निवारण पे, जो कि हमारा अभी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक चल रहा था। अभी टॉपिक क्या था कि जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो अगर हम उसको किस तरीके से उस गैप को ख़त्म कर दें या फिर अपने रिश्तों को किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो ये आता है कि अगर हम फ्रेश एनर्जी अपने रिश्तों में फिर से अगर भरना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं कि थैंक यू की एक आदत डाल दें। मतलब मुझे ये लगता है अंशिका
4: जी,
5: कि अगर कोई सामने वाला जरा सा भी कोई काम कर देता है ना, तो मेरे मुंह से तुरंत थैंक यू निकलता है, थैंक यू। या फिर अगर हल्की सी भी मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी। तो ये जो दो शब्द बने हैं ना, ये जो थैंक यू एंड सॉरी, ये जिन्होंने भी बनाए थे, बट इससे बड़ा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते देखा है हम लोगों ने।
4: बिल्कुल मैम।
5: तो अपने अपनों के छोटे छोटे कामों को हल्के में ना लें और उनके प्रयासों के लिए थैंक यू या फिर छोटा सा कोई गिफ्ट या फिर नोट लिख करके उन्हें तुरंत भेजने का काम किया करें।
4: वाह,
5: गिफ्ट या फिर नोट।
4: ऐसे नोट वाला ज्यादा अच्छा था,
5: है ना? नोट कुछ भी लिख करके भेज दो। नोट मतलब पैसे वाला नोट नहीं,
4: नहीं मुझे
5: नोट, हाँ नोट मतलब कि हम
4: चिट्ठी सीधी भाषा।
5: यस, अच्छा मुझे लगा तुम नोट समझी, पैसे वाला नोट, है ना? एंड उसके बाद में सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि आप थैंक यू एंड सॉरी की आदत डालो। आपके हर एक नोट में थैंक यू एंड सॉरी होना ही होना चाहिए। तो आपके रिश्तों में कितना भी कम्युनिकेशन गैप आ जाए, कितना भी फेंटेंसी वाला जो भी आप गैप कह रहे हैं, कुछ भी गैप आ जाए, वो चुटकियों में ख़त्म हो जाता है जहाँ एक सॉरी वर्ड आ गया। मुझे लगता है ऐसा
4: ही है मैम
5: जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्वालिटी टाइम इन द सेंस कि अगर आप में लव अभी शुरू हुआ है या फिर कई सालों से भी है, तो क्वालिटी टाइम अगर आप एक दूसरे को देते हैं तो उससे रिश्तों में एक बॉन्डिंग होती है। इनको पता नहीं क्यों हंसी आ जाती है बेवजह, जैसे पागल लोग होते हैं।
4: बेवजह तो नहीं हंसी हूँ, कोई वजह होगी तभी मुझे हंसी आई।
5: इंसान फर्जी में लोग हंसने लगते हैं ना, तो लगता है जैसे कि वो मुझे कुछ डेडिकेट कर रहे हैं, ऐसा फिर कुछ पिन आउट होने लगता है।
4: मैं क्या डेडिकेट करूंगी, अब मुझे कुछ सोच कर हंस भी नहीं सकते।
5: नहीं हंस सकते हैं आप, हंसिए, बिल्कुल हंसिए, ठीक है? तो क्वालिटी टाइम पे ही क्यों हंसी आई, मुझे समझ में नहीं बात आ रही है।
4: नहीं,
5: क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए जिससे आपके रिश्तों में और प्यार और अपनापन बढ़ता है।
4: बिल्कुल,
5: साथ में कोई नई हॉबी शुरू कर सकते हैं जी, जैसे साथ में वॉक पर जाना, खाना बनाना या कोई खेल खेलना या फिर कहीं पर घूमने चले जाना, ऐसी कुछ हॉबीज होती हैं। क्योंकि देखिए दोनों की हॉबीज अलग अलग होती हैं, किसी को खाना खाना पसंद होता है, किसी को खाना बनाना पसंद होता है और किसी को खाना खिलाना पसंद होता है। समझ में आया?
4: समझ में।
5: अंशिका को कुल मिलाकर के एक ही चीज पसंद आती है इन तीनों में, खाना, है ना? तो आप ये क्वालिटी टाइम में करिएगा तो इससे रिश्तों में एक गैपिंग नहीं होगी। उसके बाद है कि सरप्राइज, आप अपने पार्टनर को, आप अपने लवर को सरप्राइज दे सकते हैं कि बिना किसी त्योहार या जन्मदिन के बस यूं ही उनकी पसंदीदा मिठाई या छोटी सी कोई चीज बना लें, कोई छोटा सा गिफ्ट ले लें और उसको सरप्राइज करें।
4: ये तो होना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज देखिए दोनों को बहुत पसंद होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है मैम कि सिर्फ फीमेल्स को बहुत सरप्राइज चाहिए होते हैं, उनको तो बहुत पसंद होता है, वो बहुत खुश हो जाती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरप्राइज मिलता है तो मेल भी बहुत खुश हो जाते हैं।
5: हाँ, क्या उन वो लोग क्या मतलब जीव हाँ। है, वो भी जीव जंतु थोड़ी नहीं
4: वो है। तो सिर्फ ऐसे कहा जाता है, कहते नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को बस ऐसे ही कहा जाता है, बाकी मेल्स में भी होता है। जैसे शॉपिंग के लिए कहा जाता है तो क्या मेल शॉपिंग नहीं करते, वो तो और ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो चूजी भी बहुत होते हैं।
5: चूजी बहुत होते हैं, अरे बहुत ज्यादा कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, मेरे पे क्या सूट करेगा,
4: ये अच्छा नहीं है,
5: ज्यादा टाइम लगाना मतलब रेडी होने के लिए।
4: और फीमेल्स का सबसे अच्छा था, मॉल गई, जो पहली नजर में पसंद आया वो उठा लिया, हो गया।
5: हाँ,
4: मेल्स की तरह हमें नहीं सोचना पड़ता है कि ये नहीं ये चाहिए, हमें पता होता है क्या चाहिए।
5: चलो, तो उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और आता है स्पेस। जैसा कि अभी अंशिका ने बताया कि अगर आप में थोड़ा सा स्पेस अगर आ रहा है तो हर वक्त साथ रहना ही प्यार नहीं होता है। हम लोगों ने देखा है कि काफी लोग जो बहुत दूर दूर तक रहते हैं लेकिन उन लोगों में बहुत प्यार होता है। समझ में आया? सामने वाले को अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अपनी हॉबी पूरी तरीके से आप उसको आजाद कर सकते हैं। इससे एक चीज होती है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं बंधी हुई नहीं हूँ। हमें अपने हिसाब से जीने का भी एक मतलब एक वो होता है कि हम अपने आप से भी अपनी इच्छाओं को भी बिना मारे हुए जी सकते हैं।
4: बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक हक मिलना चाहिए अपने हिसाब से जीने का।
5: हाँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर हम एक दूसरे में अगर हम मतलब मिले जुले हैं, कम्युनिकेटेड हैं, तो हाँ भाई तुम सुनो मेरे से ही बात करो, मेरे से मैं तो बिल्कुल आजाद छोड़ती हूँ और आजाद छोड़ा हुआ भी है एंड आजाद आगे भी छोड़ूंगी कि जो भी मर्जी है इंसानों को जो भी करे, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, आपको जो मर्जी हो जो करना है वो करो। मतलब ये लगता है कि हाँ, और अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपका जो बंदा है, जो लड़की है या लड़का है, तो वो आपको छोड़ करके कहीं जाएगा ही नहीं। गट्स आप में होने चाहिए, सामने वाले को बांध करके रखने में प्यार नहीं
4: होता।
5: ये है रिश्ता, और आप में अगर गट्स नहीं है तो अगर आपने बोल भी दिया ना, आपने हल्का भी बोल दिया ना कि सुनो ठीक है तुम जाओ बात करो, तो वो तो मौके के इंतजार में होगा, हाँ ठीक है तो कल से मुझसे बात मत करना। आप उसको आजादी दें कि हाँ ठीक है जाओ, तुम्हें ये करना है वो करना है, जिससे बात करनी है, किसी को छोड़ के आना है, कुछ करना है, आपको जो करना है करो। अगला बंदा अगर आप में गट्स है तो वो तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, या जो भी होता है। समझ में आया? इसीलिए कुल मिलाकर के रिश्ते में अपने आप में गट्स होना चाहिए।
4: समझ गए आप लिसनर्स कि मैम ने अभी भी आपको क्या बताया? मैम ने अभी अभी आपको जो भी बताया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आइए चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम सॉन्ग की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यूं गए यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है RJ अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के ब्यूटी टिप्स को, क्योंकि आज हम लेकर के आए, भाई मैं तो बालों के लिए बताने वाली हूँ, अंशिका पता नहीं क्या बताने वाली है, बट मैं तो बालों के लिए बताने वाली हूँ।
6: तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई जो फीमेल्स होती हैं उन्हें अपने नेल्स से बहुत प्यार होता है।
5: हाँ, मुझे तो बहुत है।
6: मुझे भी है, लेकिन जब मेरे नेल्स में मतलब अच्छे से उसको कटिंग वटिंग करके अच्छे से रखती हूँ और फिर टूट जाते हैं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है।
5: हाँ, ये
6: दुख होता है, दिल दुखता है कि क्यों टूटे। तो आज हम ये बताएंगे क्यों टूटता है, और उसके लिए मैं 2-3 आपको ऐसे घरेलू चीज़ें भी बताऊंगी कि जो अगर आप करेंगे ना तो आपके नेल्स बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और मैम बालों के लिए,
5: बालों के लिए तो मैं ये बताऊंगी कि अंशिका जब लगाएगी तो जैसे थोड़े से बाल और कम हो जाए ना बचे, मतलब जिसे अंशिका पूछती है बालों के लिए, बालों की आजकल की प्रॉब्लम क्या चल रही है अंशिका?
6: झड़ रहे हैं मैम।
5: तो बस वही बताएंगे ना कि झड़े ना, पोषण अच्छा हो बालों का और स्मूथ से रहें, ये कहने का मतलब है।
6: बिल्कुल, वैसे भी बाल बहुत तो मतलब कहते हैं ना कि जब अच्छे घने बहुत ही अच्छे बाल होते हैं तो उससे फिर अच्छे भी लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हो आप देखने।
5: हम नहीं लगते ना?
6: नहीं, आप तो लगती हैं।
5: मेरे तो हाँ, चलो ठीक है।
6: नेक्स्ट, मैंने औरों के लिए।
5: नेक्स्ट
6: औरों के लिए का
5: नेक्स्ट।
6: तो नेक्स्ट ये है कि मैम आपको बताएंगी बालों के लिए,
5: तो आप बताइए ना।
6: मैं बताऊं?
5: हाँ।
6: अच्छा, मुझे लगा आप बताने, वरना फिर अभी मैम कहती है अंशिका मुझे बताने दो।
5: नहीं नहीं, अंशिका जैसे कहते हैं ना छोटे आगे, तो आप पहले बताएं फिर मैं बताऊं।
6: छोटे होने का फायदा भी बहुत
5: है।
6: जी, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अपने नेल्स को पानी से बचाना चाहिए। पानी से बचाने का मतलब है मैम कि जब से बर्तन साफ करते हैं या कपड़े धोते हैं, सबसे ज्यादा कपड़े धोने में होता है, तो इससे आधा घंटा तो आपको लग ही जाता है, मतलब अगर 2-3 कपड़े
5: सॉफ्ट हो जाते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए वो जल्दी टूट
6: जाते हैं। इसलिए
5: और स्पेशली एक और उसका वो होता है कि नेल पेंट नहीं रुकती है उसपे, नेल्स पे नेल पेंट नहीं रुकती है। आप देखो अंशिका की, देखो उस दिन अभी 2 दिन हुआ था लगा के आई थी और आज देखो ये नहीं लगी। तो सबसे जो मेरे साथ भी ये है कि देखो मैं इसलिए ऑलमोस्ट तो टाइम में लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने लगा ली और मैंने पानी का काम ज्यादा कर लिया, इट मींस कि वो फिर नेल पेंट तो जानी जानी है।
6: बिल्कुल, तो इसीलिए अपने हाथों को हमेशा नाखूनों को पानी से बचाना चाहिए। पानी से बचाने का मतलब होता है कि अगर आप कपड़े ज्यादा धो रहे हैं जैसे, तो थोड़ा सा ग्लव्स पहन लीजिए या कुछ भी ऐसे प्रिकॉशन करें जिससे बहुत ज्यादा देर तक आपके नेल्स जो है पानी में ना रहे। दूसरा होता है कि हमेशा जब भी आप नाखूनों को, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छे से शेव देने के लिए हम उन पर यूज़ करते हैं, तो जब भी आप नेल्स को काट रहे हैं उनको अच्छा सा एक शेप देने के लिए घिस रहे हैं, जैसे हम घिसते हैं यूज़ करते हैं, तो हमेशा सही दिशा में कट करने चाहिए या सही दिशा में उनको अच्छे से आकार देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे नेल्स के शेप्स की वजह से भी नेल्स टूटने लगते हैं, क्योंकि जब आप अपने नेल्स को कई बार कट करते हैं ना तो हम कुछ ऐसी थोड़े थोड़े से छोड़ देते हैं कि जब आपने देखा होगा ना कि कोने से नेल्स फंसने लगते हैं, कई बार पर्दों में फंस जाते हैं, टॉवल में फंस जाते हैं, तो वो
5: अपने ही सूट में फंस जाते हैं, अपने ही अगर आपने चेन डाली हुई है गले में या फिर कान में या फिर नाक की रिंग्स पे, मेरे साथ तो बहुत होता है, या फिर आपने टॉवल से अपना फेस पोंछा ना तो वो ऐसे होता है कि वो टॉवल के कोनों में फंस जाते हैं, तो ऐसे मतलब। और हाँ, दुपट्टे में, दुपट्टे में बहुत फंसते हैं, दुपट्टे में तो बहुत फंसते हैं।
6: तो इसीलिए हमेशा जब भी कट करें तो एकदम फाइन कट करना चाहिए, मतलब उसमें जगह नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार क्या होता है दरारें छोड़ देते हैं जिनकी वजह से वो फंसने लगती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कि हमेशा बहुत ध्यान से अपने नेल्स को काटना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम नेल्स को ध्यान से नहीं काटते हैं और नाखून काटते काटते नीचे का हिस्सा भी जो स्किन होती है वो कई बार कट जाती है, जिससे आपकी नेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ज्यादा पेन होता है। तब भी वो जल्दी टूटते हैं क्योंकि नीचे के रूट्स जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है कि आपके नाखून हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट, न कि कोई इंस्ट्रूमेंट है कि आप उसको
7: चबाएं, खाएं। ऐसा बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि नेल्स को चबा चबा करके पूरा मांस आगे आ जाता है और नेल्स अंदर घिस जाते हैं। सबसे गंदी बात होती है ये नेल्स को खाना,
6: बिल्कुल। और ये एक ऐसी पता है कुछ लोग जब टेंशन में होते हैं तो वो ऐसा करते हैं, उनकी हैबिट बन,
7: मैंने भी देखा है। दो चीज करते हैं अंशिका, एक तो लिप्स को खाना है ना, चबाना, और एक नेल्स को खाना।
6: और दूसरी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जो हम अपने नाखूनों से, कभी आप डिब्बे का ढक्कन खोलते हैं, कभी बॉटल खोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो आपके जो नेल्स हैं वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप उसको डिब्बे के ढक्कन खोलने के लिए यूज करें। कभी भी अपने नेल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रेशर देने से वो जल्दी टूटते तो हैं और साथ ही साथ में जल्दी बढ़ते भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि अपने नेल्स को हमेशा अच्छे से रखें, प्यार से रखें, जैसे हम अपने किसी खास को रखते हैं वैसे रखना चाहिए।
7: अब तुम नेल्स का कंपैरिजन अपने किसी खास को रख रही हो?
6: नहीं नहीं,
7: कहाँ नाखून कहाँ वो इंसान।
6: अरे मैम मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ, बहुत प्यार से बहुत केयर से रखते हैं ना हम अपने अपनों को, वैसे अपने नाखूनों को भी रखना चाहिए, प्यार और केयर के।
7: जी
6: ये कनेक्शन,
7: ठीक है ठीक है, अच्छी बात है।
6: चलिए अब एक मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ जिससे कि आपके नेल्स जो
7: कुल मिला करके, अभी तो उपचार अभी नहीं चल रहा था, अब उपचार की बारी,
6: अब उपचार की बारी है, लेकिन ये उपचार आज मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैम को अभी और भी चीजें बतानी है ना आपको, इसलिए ये वाला मैं बताती
7: हूँ।
6: तो ये है कि लहसुन की कली आपको ले लेनी है और उसे बीच से कट कर लेना है और हफ्ते में दो बार उसे अपने नाखूनों पे आपको घिसना है,
7: लहसुन की कली को।
6: हाँ, इससे आपकी नेल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही, साथ में जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि खिले खिले हुए चाहिए और शाइन करने चाहिए, तो वो शाइन भी करेंगे। और जिनके भी नेल्स में नीचे कट लग जाने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्शन आपको कभी नहीं होगा अगर आप लहसुन की कलियों को यूज करेंगे। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही काम वाली एक टिप है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि नारियल का तेल जरूर लगाना चाहिए, अगर कभी नीचे का जो स्किन होती है वो कट जाती है, कुछ नहीं लगाना है आपको, बस नारियल का तेल लगाना है।
7: जी।
6: नारियल तेल लगाने से कभी भी आपकी स्किन पे वो चीजें ज्यादा असर नहीं करेंगी और इन्फेक्शन नहीं होगा।
7: जी ठीक, अच्छी बात है, हो गया
6: हो गया।
7: चलिए तो मैं आपको बताऊंगी अभी हेयर रेमेडी, लेकिन उसके पहले लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार
6: कहती है ना हो गया, डर जाती।
7: हाँ तो नहीं मतलब बता रही थी ना बड़े प्यार से, तो मुझे लगा कि अभी कुछ बाकी होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि एक सॉन्ग सुना देती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, आइए सुनते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको बालों की रेमेडी के लिए। आप रेडी रहें कॉपी पेन ले करके, बस हम यू गए यू आए।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: आपकी आज समता और साथ में है
5: आरजे अंशिका।
4: जी हाँ, तो गुड न्यूज पे गुड न्यूज अभी मिली जा रही थी हम लोगों को, तो चलिए भाई बालों के लिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो बता दूं कि मेथी हर घर में होती है।
5: मेथी
4: मेथी

0: मेथी होती है वो मेथी को आपने रात में भिगो देना है, ठीक है। अब मेथी को भिगो देने से आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत पुराना नुस्खा है, सब लोग बताते हैं मेथी लगाने से बाल नहीं झड़ते हैं, ये है वो है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगी इंटरनल, इंटरनल बताऊंगी मैं आपको, और ये इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैंने ये चीज की है और उसका जो असर हुआ है वो मुझे हुआ है। आज से 4 से 5 महीने पहले की बात है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा, मतलब 5 महीने या 6 महीने समझ लीजिए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाले, मतलब एक्सट्रीम लेवल के बाल मेरे झड़ रहे थे। तो मुझे किसी ने कहा कि मेथी दाने को लगाना शुरू करूँ। मैंने कहा ये नुस्खा तो कुछ ऐसे समझ में, तो मैंने दिमाग लगाया क्योंकि आपको पता है कि मेरा 7th सेंस बहुत एक्टिव रहता है हमेशा। तो मैंने सोचा कि इसको भिगो करके लगाने में ऊपर ऊपर से जब इसका इतना फायदा हो सकता है, तो अगर मैं इसको खाऊंगी तो कितना फायदा होगा। 7th सेंस एक्टिव हुआ।
1: यस यस।
0: अब सुनो मैंने क्या किया, मैंने इसको कंटिन्यूअसली 2 महीने, 1 महीना 1.5 महीना तो मैंने कंटिन्यूअसली इसको खाया। और कैसे खाया, रात में मैं आधा चम्मच, बिल्कुल मतलब एक्यूरेट आधा चम्मच में भिगो के रख देती थी। और एक दो दिन मुझे लगा अजीब सा लगता था खाने में, तो एक दो बार मतलब जैसे उसको हल्का सा कूच करके पानी पी जाती थी, पर धीरे धीरे मेरी इतनी अच्छी आदत हो गई कि वो ना मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट इतनी मतलब वो मेथी जो होती है वो टेस्टलेस होती है, आई नो टेस्टलेस होती है, उसका टेस्ट कुछ नहीं होता है, बट धीरे धीरे आप उसकी आदत में आ जाएंगे और आप जब उसको खाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि, लेकिन इस रेमेडी को आपको 1 से 1.5 महीना करना है। जिनको जिनके बाल सर में कम भी होते हैं ना अंशिका, अगर आपने ये आपने खाना शुरू कर दिया तो ये आपके बाल जो बेबी हेयर आपके जमने शुरू हो जाएंगे। इट्स अ चैलेंज फॉर
1: यू। ओके, तो यानी कि मुझे खाना है।
0: एग्जैक्टली। और पता है उसका ना, उसको खाने के 2 और 3 लाभ हैं। पहला, आपके बाल बहुत झड़ते हैं वो बंद होंगे, बेबी हेयर आएंगे। दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ क्या है, उसका वेट लॉस होता है। थर्ड, शुगर लेवल आपका ठीक रहता है। अगर ईश्वर ना करे किसी को शुगर होने भी वाली होती है, तो अगर आपने इसका खान पान शुरू कर दिया तो वो शुगर आपकी नहीं होगी।
1: वाह, ये तो मैम ने लास्ट में बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बता दिया कि अस्त्र एक है पर उसके जो निशाने हैं वो बहुत सारे हैं, यानी कि फायदे बहुत सारे हैं। तो भाई मैं तो आज से शुरू करने वाली
0: हूं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लिसनर्स को बता दूं कि चलते चलते आप ये जो है ना, इसको आप लगाने से बेटर है कि आप इसको खाना शुरू करो, क्योंकि जब हम इंटरनल मजबूत होंगे ना तो मतलब ऑटोमेटिकली हमारे बाल भी अच्छे होंगे, हमारी स्किन भी अच्छी होगी, हमारे नेल्स भी अच्छे होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेथी दाना खाने से।
1: तो बिल्कुल वही, मेथी दाना लगाना बिल्कुल कैंसिल कैंसिल कैंसिल है, उसे खाना
0: नहीं, कैंसिल नहीं है, आप लगा भी सकते हैं। अच्छा, बट आप खाना शुरू करो पहले।
1: खाना पहले है। हाँ। खाना मस्त है। तो मेथी दाना खाना है
0: जी। हाँ,
1: तो मैं तो शुरू करने वाली हूँ मैम।
0: हाँ, तो चलिए फटाफट आप लोग भी इस रेमेडी को यूज करिएगा और हम मिलेंगे कल आपको सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने वाले शो कॉल ट्यून गोंडा में। घड़ी में वक्त हो चला है 3:03 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन पर फ्राइडे स्पेशल। आपके साथ मौजूद हैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजी उन्नति। और क्योंकि भैया आज फिर से शुक्रवार है, यानी कि आपके कॉल ट्यून का, आपकी फरमाइशों का सिलसिला आज पूरे 2 घंटे जारी रहने वाला है। तो उठाइए अपना फ़ोन और डायल कीजिए 6393316429। आई रिपीट 6393316429। और अपनी फरमाइशें भेज दीजिए हम तक, क्योंकि ये है आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा। तो फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की रानू तिवारी जी की फरमाइश के साथ, जो सुनना चाहती हैं। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन गीत की फरमाइश की गई है लता जी उदित की आवाज़ में। उत्तम सिंह का म्यूजिक है, आनंद बख्शी के बोल हैं, और किस पे फिल्माया गया है ये तो आप सभी जानते हैं, यानी कि आपकी फेवरेट करिश्मा कपूर, शाहरुख खान और ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माया गया गाना। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर अगली फरमाइश, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: हाय
1: हाँ जी आई हाय। और आप सुन रहे थे लता जी और अदित की आवाज में भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। रानू तिवारी जी की फरमाइश थी। इतनी खूबसूरत फरमाइश और इतने प्यारे गाने से हमारे प्रोग्राम का आगाज हुआ है आज कि भाई मज़ा ही आ गया। मौसम बाहर हो रहा है सुहाना, बारिश हो रही है हल्की हल्की, उस बारिश में लता जी की आवाज़, ओहो क्या बात है। फिलहाल आपको बता दें कि आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर चल रहा है आपका अपना शो कॉल ट्यून गोंडा विद योर आरजे उन्नति। और ऑफकोर्स आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं हमें 6393316429 पर। अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने से पहले आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और हमारे साथ जो लिसनर्स जुड़ गए हैं उनका वेलकम कर लेते हैं, स्वागत कर लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं मुस्तफ़ा जी फ्रॉम सऊदी, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं के गुप्ता जी फ्रॉम तिरंगा कॉम्प्लेक्स, लिख रहे हैं डियर उन्नति जी नमस्ते, और हैंडशेक भी कर लिया उन्होंने, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं। कमल लैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं मैम गुड आफ्टरनून टू यू। और मेरे बाकी लिसनर्स आप कहाँ हैं मौजूद, कृपया करके आप भी अपनी अटेंडेंस अपनी हाजिरी चैट बॉक्स में लगाएं और अपनी फरमाइशें भेजते रहें। फिलहाल आइए चलते हैं, इन्जॉय करते हैं हमारी अगली फरमाइश को जो कि मुस्तफ़ा जी की ही है, और वो सुनना चाहते हैं किसका है ये तुमको इंतज़ार मैं हूं ना। बेशक आप हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना, और आज लग रहा है हर कोई SRK के ही गाने की फरमाइश कर रहा है क्योंकि पहला गाना भी हमारा SRK की ही था और सेकंड सॉन्ग भी जो फिल्माया गया है वो SRK की फिल्म से ही है, मैं हूं ना से ही है। इन्जॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, और मैं हमेशा कहूंगा कि मैं हूं ना। जावेद अख्तर ने लिखा था इस गाने को, सोनू निगम और श्रेया की आवाज में। आप भी बहुत ही बेहतरीन सा गाना सुन रहे थे। शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, जायद खान और अमृता राव पर फिल्म आया गया गाना मैं हूं ना फिल्म से। फिलहाल हम आपको बता दें ये वही फिल्म है जिसके अंदर आपको अपनी राखी सावंत भी नजर आई है। हालांकि उनको पहचानने में बहुत सारे लोगों ने बहुत देर कर दी थी, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस आपको नजर आती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये फिल्म देखी थी ना, तो हमेशा से लगता था ये एक्ट्रेस कहीं देखी हुई है, इनको तो मैं जानती हूँ, उनको जानती हूँ जानती हूँ। और इन द लास्ट समझ में आया कि ये कोई और नहीं, ये तो अपनी राखी सावंत है भाई, जिनको अक्सर हम फिल्मों में देखा करते हैं बट हम पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज का लुक और उनके पहले का लुक बहुत डिफरेंट था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बेहद ही प्यारी फरमाइश थी हमारे मुस्तफा जी की, जो हमें साउदी से सुनते हैं। इसके बाद आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। सुनील कुशवाहा जी ने वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग की डिमांड कर दी है और गाना है जो प्यार करता है वो पागल हो जाता है। हम आपको बता दें अजय देवगन, माधुरी दीक्षित और आपकी प्यारी प्रीति चिंटा पर फिल्म आया गया गाना। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत नगमा। आनंद बख्शी ने इस गाने के बोल लिखे हैं, तो एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। और इतना सन्नाटा काहे है हमारे चैट बॉक्स में, हमको बताइए तो जरूर, अपनी अपनी हाजिरी लगाइए, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर, क्योंकि ये है कॉलर ट्यून गोंडा, आपका अपना फ्राइडे स्पेशल शो विद योर आरजे उन्नति।

क्या बात है भैया, क्या बात है। सुनील कुशवाहा जी ने मेरे पसंदीदा गाने की आज फरमाइश कर दी थी। मनोहर शेठी, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आपने इस बेहतरीन से नगमे को सुना। संजीव दर्शन का संगीत था और आनंद बख्शी के बोल थे। और आपको पता है आनंद बख्शी कितना खूबसूरत लिखते हैं जब भी उनके गाने कॉलर ट्यून में प्ले होते हैं। भाई 90s का, 80s का, 60s का वो दौर जब गाने लिखने के लिए जावेद अख्तर, समीर साहब, आनंद बख्शी और गुलजार आते थे तो गाना अपने आप में इतना खूबसूरत साउंड करता था, इतना प्यारा साउंड करता था। ऊपर से आप कहीं ना कहीं उन गानों से रिलेट करते थे और यही तो वो जादू है जो आज भी आपको इन गानों से जोड़े हुए रखता है। जहां आपको नए गाने समझ नहीं आते हैं, वहीं आपको पुराने गाने आज भी अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा लगते हैं, एक हिस्सा लगते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोना और हमारे साथ मौजूद हैं चैट बॉक्स में सबलू सावंत जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। आपका स्वागत करते हैं। लिखा है, नमस्ते आशुमती जी, नमस्ते, आपको कैसे हैं आप। एंड इसके बाद महेंद्र दीपन जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम राजस्थान, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्कार मती मैम जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप। आपका भी वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोना में। फिलहाल वक्त हो चला है हमारे अगले गाने की तरफ चलने का, हमारे अगली फरमाइश की तरफ चलने का। और ये फरमाइश किसी और की नहीं, सबिया जी की तरफ से आई है और वो सुनना चाहते हैं ये वाला गाना, कसम से हम हैं। अब हम क्या हैं ये तो आपको पता चलेगा इस गाने को सुन करके। फिलहाल आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। माना कि मौसम बड़ा रोमांटिक हो रखा है, मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत मौसम में खामोशी अच्छी नहीं लगती, तो लगातार अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6993316429 पर। इन्जॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा विद राजनीति।

जी, तो आपने एंजॉय किया सविया जी की पसंद पर, कसम से कसम से हमें प्यार हो गया सनम से सनम से। एंड इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं रिजु जी, जो कि हमारे चैट बॉक्स में आ चुके हैं। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सब लोग जी ने लिखा है, प्यार आंखों से होता है या दिल से भी होते हैं? भैया, आंखों से भी होता है, दिल से भी होता है। आंखों से शुरू होता है, दिल तक का सफ़र तय करता है, और कई बार हमारी बातें जो कभी आंखों से आंखें मिलती भी नहीं है, इसके बाद भी अपने लिसनर से ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि दिल से दिल मिल जाते हैं फिलहाल के लिए, तो दोनों चीज़ों से हो सकता है। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला सॉन्ग है हमारे देवी प्रसाद जी का, और उन्होंने डेडिकेट किया है आप सभी के लिए ये वाला गाना, एक देशभक्ति सॉन्ग जिन्होंने फरमाइश कर दिया, बिकॉज कल है 15 अगस्त, यानी कि आपका इंडिपेंडेंस डे। आप मुझे बता सकते हैं कि कल कौन सा दिन है, यानी कि कौन सा साल है हमारे इंडिपेंडेंस डे का? चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आप सुन रहे हैं कॉलोजी, उनको अपनी आरजीओ के साथ सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस बात, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भैया 15 अगस्त आ जाए और आप ऐसे गाने ना सुने तो क्या फायदा, फिर फील नहीं आता ना कि हमारा 15 अगस्त आ चुका है। और 15 अगस्त आने से एक महीना पहले ही एक गाने की शुरुआत हो जाती है जो आप सबको पता है, देश रंगीला रंगीला। फिलहाल आपको बता दें, आप सुन रहे थे देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर एक खूबसूरत गाना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और ऑफकोर्स हमारे अंदर कुछ कला ऐसी है जो सबसे अलग है। कई कई बार ऐसा होता है कि हम खुद बारिश में भीग लेते हैं लेकिन दूसरों की मदद कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपको परेशान भी कर देते हैं। फिलहाल जो भी है, दिल से हिंदुस्तानी है और ऑफ कोर्स आप एंजॉय करते रहिए। कॉल ट्यून गुना, आइए चलते हैं हमारी अगली गाने की तरफ। अगला गाना आया है आरती जी की फरमाइश पर और वो सुनना चाहती हैं, हर लड़की का पसंदीदा गाना, और हर लड़की ने इसको कहीं ना कहीं डांस में ज़रूर किया होगा। यानी कि अगर वो 15 अगस्त पे 26 जनवरी पर ये गाना नहीं प्ले हुआ तो क्या खाक 15 अगस्त और 26 जनवरी आई है। फेवरेट सॉन्ग आप सभी का देश रंगीला रंगीला, आइए एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और जिनकी फरमाइशें अभी तक नहीं आई है वो इंतजार इस बात का ना करेगी कि भैया आप 3:30 बज चुके हैं, नहीं नहीं ऐसा ना सोचिएगा, क्योंकि आज आपका प्रोग्राम पूरे 2 घंटे चलने वाला है। तो अपनी फरमाइशें आप भेजते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कॉल ट्यून गोंडा 6393316429 पर आपने ट्यून कर दिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन।

अच्छा भैया लिसनर, आप में से वो कौन से लोग हैं जो स्कूल में जब लड्डू बटता था तो एक बार नहीं दो दो बार लाइन में घुसते थे ताकि डबल लड्डू मिल सके, क्योंकि ये कारनामे हमने बहुत किए हैं।

आरजी जी की फरमाइश पे आप सुन रहे थे देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। लक्ष्मी अय्यर की आवाज़ थी, बहुत ही बेहतरीन सा नगमा था। जतिन ललित का म्यूज़िक, प्रसून जोशी के बोल थे, और ये वो गाना था ना जिसको हर किसी ने अपने स्कूल टाइम में ज़रूर से सुना होगा। इवन आज भी भैया जब भी हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर लाइन लग जाती है इस गाने की, और हर कोई इस गाने पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कर रहा है। हालांकि एक वक्त हमें भी शौक था डांस करने का 26 जनवरी 15 अगस्त पर, लेकिन मेरी मैम ने कभी मुझे डांस करने नहीं दिया। वो मुझे हमेशा डांस की लाइन से बाहर निकाल के परेड की लाइन लगा देती थी, कहती जाते तुम बैंड बजाओ, तुम यहाँ डांस ना करो। और हमेशा से सर ने मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा मैं परेड वाली लाइन में दोपहर के वक्त में परेड कर रही होती थी। हालांकि डांस करने का शौक था, लेकिन कोई बात नहीं, डांस आता भी नहीं है। और इसी कमाल के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि अगला गाना हमारे कमल नयन जी का है और वो सुनना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं कौन सा गाना उनकी तरफ से आ चुका है हमारे लिए फरमाइशी गीत। और ओके, कोई बढ़िया सा खूबसूरत सा रोमांटिक गाना आप सुनने जा रहे हैं। उतनी देर से काफ़ी बार आपने इंजॉय किया था देशभक्ति वाला गाना। शुरुआत आज बहुत मिलती जुलती लग रही है ना, मतलब स्टार्टिंग हुई हमारी एसआरके के साथ और एसआरके के बाद हम पहुंचे सीधे अपने देशभक्ति की दुनिया में, और अब वापस से हम अपने पंजाबी बीट्स के साथ रोमांटिक गानों में एंट्री ले चुके हैं। सुंदर या मुस्कुराते रहिए, कॉल ट्यून गुन आप सुन रहे हैं 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

अंजी भैया, कमल जी की फरमाइश पे आपने सुन लिया एक बहुत ही पंजाबी बेहतरीन सा गाना। मौसम के जिक्र हो रहे हैं इसमें, और वैसे बाहर का मौसम के अगर जिक्र हम करें ना, तो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। इतना सुहाना हो रहा है कि ऑलरेडी हम भीग भी चुके थे बारिश में आते आते, और बस दुआ कर रहे थे कि मेरे पहुँचने से पहले यह बारिश बंद हो जाए। और पता नहीं क्यों आज मेरी दुआ दोनों बार कबूल हो चुकी है। आज गॉड हम पर मेहरबान है और हम आप पर मेहरबान है, इसलिए आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ और आप इंजॉय करने जा रहे हैं हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ महेंद्र जी की फरमाइश पर, दीपेन महेंद्र जी की फरमाइश फ्रॉम राजस्थान, फिलहाल जो हमें सुन रहे हैं सूरत से। तो एंजॉय करें इस बेहतरीन से नगमे को। जुदाई फिल्म 1997, अनिल कपूर और उर्मिला के ऊपर फिल्म आया गया गाना। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तो तक के लिए सुनते रहिए कॉल ट्यून गुना 89.6 FM, यही गुना शहर की धड़कन पर। अपनी फरमाइशें भेजते रहिए क्योंकि आज है आपका दो घंटे का स्पेशल कॉल ट्यून गोंडा।

जुदाई फिल्म से आप सुन रहे हैं महेंद्र जी की फरमाइश पर हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाल का जी और अभिजीत की आवाज में समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का म्यूजिक और ऑफ कोर्स राज कन्वर हैं इस फिल्म के डायरेक्टर। इसी के साथ आइए चलते हैं मेरी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है राम नरेश जी की और वो सुनना चाह रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा नगमा। अगेन क्योंकि हमारा 15 अगस्त कल है तो भैया देशभक्ति के बहुत सारे नगमे हमारे पास आने वाले हैं, लेकिन लेकिन लेकिन आपसे हमें कुछ कहना है, एक इल्तजा है हमारी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस 15 अगस्त जब भी आप झंडे लें तो उन्हें रोड साइड पेड़ों के आसपास बाउंड्री पर कहीं भी ना रखें, क्योंकि 15 अगस्त के अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को हमारे देश के झंडे न जाने कहां कहां दिखाई पड़ते हैं। कोई कूड़े में फेंक देता है, कोई पेड़ों पर रख देता है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप खरीद रहे हैं तो उन्हें संभाल कर रखें, अदरवाइज आप उन्हें ना खरीदें। और इसी के साथ इस 15 अगस्त आपको करना है खुद से एक प्रॉमिस कि अपने देश को साफ रखने का प्रॉमिस आप खुद से करेंगे, जिम्मा खुद उठाएंगे, ना कि किसी और का इंतजार करने वाले हैं जैसे कि दूसरे देश कर रहे हैं। साफ सफाई बनाए रखे हैं, एक दूसरे से नफरत नहीं मोहब्बत के साथ एक दूसरे का मदद करते हैं, ऐसे ही करने वाले हैं। और अगर ये प्रॉमिस आप अपने आप से कर रहे हैं तो मुबारक हो आपको 15 अगस्त की, बहुत बहुत मुबारकबाद। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी जनाब, तो आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, और ये वही गाना है जो हमने भी एक बार गाया था। हालांकि हम हमेशा लिरिक्स गलत गाते हैं, लेकिन उस दिन हमारे टीचर ने हमको इस गाने को इतना रटवा दिया था कि हम भूले ही नहीं थे। फिलहाल आपने बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुना राम नरेश जी की फरमाइश पर। अगली फरमाइश आई है हमारी रईस साहब की, और वो सुनना चाहते हैं शकीरा। वेलकम टू कराची बम से आप इस गाने को एंजॉय करने जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। आप सुन रहे हैं अपना कॉल ट्यून गोंडा विद राजमती फ्राइडे स्पेशल शो। फिलहाल आज 2 घंटे का आपका कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, यूं ही फरमाइशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो अपनी फरमाइशें लगातार भेजते रहिए 6393316429 पर। अगली फरमाइश पर हम मिलते हैं, जो कि हमारी सब्दुल सावन जी की है, इरशाद जी की है, रिजू जी की है। तो बने रहिए, सुनते रहिए कॉल ट्यून गोंडा 99.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर।

हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे शकीरा, और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। हमारे सबलू सावन जी की अगली फरमाइश आई है लता जी की आवाज़ में, और ये गाना बहुत ही पुराना है और बहुत पहले इस गाने को हमने सुना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो आइए एंजॉय करते रहे, कॉलर ट्यून गुन रहा, पानी का रंग सफ़ेद है क्योंकि बारिश में कुछ देर पहले हम देख कर आए थे फिलहाल। आइए आप बताइए कि आपके पानी का कलर कैसा है, क्योंकि कहीं कहीं पर पानी का रंग बहुत ज़्यादा पीला आ रहा है और कभी कभी ऐसा हो भी रहता है। फिलहाल सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा। और अगर होली की बात करें तो पानी का रंग बहुत अलग होता है।

जी भैया, तो आप एंजॉय कर रहे थे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, मनोज कुमार का बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था, बहुत ही प्यारा सा गीत था, मुकेश और लता जी की आवाज़ थी, इंद्रजीत सिंह के इसमें बोल लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इस गाने को संगीत दिया था। एंड के गुप्ता जी ने लिखा है सॉन्ग को बहुत सारे इमोजीज मिले हैं, क्रेडिट गोस टू सबलू सावंत जी, उन्नति जी, हमको भी कोई गाना सुना दीजिए। ऑफ कोर्स सुना देंगे, आप बस कॉल कर दीजिए 6393316429 पर, इसके बाद हम आपकी फरमाइश को प्ले करते हैं। लेकिन इनकी फरमाइश के पहले चलने से पहले, मतलब कि हमारे के गुप्ता जी की फरमाइश को प्ले करने से पहले, हम चलेंगे हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि आई है इरशाद जी की, और वो सुनना चाह रहे हैं तेरे कूचे में तेरा दीवाना, हीर राजा फिल्म से। आप इस गाने को एंजॉय करें, हम मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, जो कि हमारे रिजु जी की फरमाइश पर होने वाला है। तो सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा विद राजीव 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर फ्राइडे स्पेशल शो, यानी कि आपके फरमाइशों का कार्यक्रम आज पूरे जारी रहेगा 2 घंटे।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे हैं तेरे खूचे में तेरा दीवाना ही रांझापम से, और आपको लगता बॉलीवुड के जो सबसे सैड और सबसे डिप्रेस्ड अगर एक्टर कोई लगता है तो वो हमारे हीर और राजा फिल्म के एक्टर ही हैं। भाई उनकी शक्ल से ना ऐसा लगता है कि वो कितने ज़्यादा सैड हैं, स्पेशली जब उनका ही राजा फिल्म में ही एक गाना आया था, आपने सुना होगा, आपने इंजॉय भी किया होगा, ये दुनिया ये महफिल में किसी काम की नहीं। उनके फेस पे जो एक्सप्रेशंस थे, जो इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस थे, वो इतने नेचुरल लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। और यही वो इकलौते एक्टर ऐसे भी हैं जिनकी डेथ होने पर कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि ये इनकी विश भी थी कि जब उनकी मृत्यु हो या वो दुनिया को अलविदा कहें तो उनके पास लाखों की भीड़ ना हो, उनके परिवार वालों के अलावा उनके साथ कोई ना हो। ऐसी विशेज क्यों उन्होंने की थी इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अगर आपने इनका नाम गेस कर लिया और आपने कभी हीर राँझा फिल्म देखी है या आपने सुना है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो आपको पता होगा कि किस एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपने गेस कर लिया तो चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारे रिजु जी की आई है और वो सुनना चाहते हैं दिल दे दिया है सीने से निकाल कर। क्या बात है, आइए इन्जॉय करते रहे कॉल ट्यून गोना आपका अपना शो, और ऑफकोर्स आपने ट्यून कर लिया 96.5 में गोना शहर की धड़कन पर। रिजु जी की फरमाइश को एंजॉय करें, हम मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारी आई है दिल्ली से। स्टे ट्यून्ड।

0: पैसे दे।
1: अक्षय कुमार एक लौते एक ऐसे एक्टर है ना, जो बीच सॉन्ग में पैसे निकालो पैसे, पीछे वाले को उठा के पीट देंगे, एक्शन सीन चालू कर देंगे, बाकी एक्टर्स डांस परफॉर्म करते हैं और ये भाई साहब अलग ही सीन चला रहे होते हैं।

तो रिजु जी की फरमाइश के बाद अब वक्त हो गया है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। और ऑफ कोर्स ये हमारी फरमाइश आई है दिल्ली से एहसान जी की, आपस में प्रेम करो देशवासियों। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और हमारे साथ चैट बॉक्स में क्रिकेट लवर जुड़ गई हैं जिनका नाम है आई थिंक मंजू जी, और लिख रही हैं, हेलो मैम कैसी हैं आप, आपकी आवाज़ सुनकर आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत करते हैं कॉलोनी गोंडा में। तो आइए एंजॉय कीजिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एहसान जी की फरमाइश को, और हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के जो कि हमारी इम्तियाज़ जी की है, और उसके बाद हमारी आकांक्षा दुबे जी की फरमाइश है, देखते हैं भैया उन्होंने क्या फरमाइश की है। लेकिन उससे पहले आप एंजॉय करें, बहुत ही खूबसूरत सा लेसन दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है इस गाने में, तो आप एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

शाह जी की फरमाइश फ्रॉम दिल्ली और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने एंजॉय किया। देश से प्रेम करो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और आनंद बख्शी के बोल है देश प्रेमी नाम की फिल्म से। ऑफ कोर्स आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे और वक्त है हमारी अगली फरमाइश दर्ज करने का। उनकी फरमाइश हमारी इम्तियाज जी की आई है, तो आइए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं उनकी फरमाइश को और हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं क्वालिटी उनको।

हाँ जी भैया, तो आपने इम्तियाज जी की फरमाइश पर सुना सोनू निगम की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही प्यारा सा हाई बीट सॉन्ग था। और इसी के साथ अब हम चलेंगे आकांक्षा दुबे की फरमाइश की तरफ, और वो सुनना चाहती हैं मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ रुक गए तुम, ये सफ़र कटेगा कैसे जो ऐसे ठहर गए तुम। एंजॉय करते रहिए अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गाना है आपके अपने बॉलीवुड सॉन्ग को कॉल ट्यून गोना में। अपनी फरमाइशों को भेजते रहिए 6393316429 पर। स्टे ट्यून्ड।

बात है भाई, क्या ही खूबसूरत गाना था, हमको दीवाना कर गए। फिल्म से आप सुन रहे थे मेरे साथ चलते चलते, शान सुनिधि चौहान और कृष्णा की आवाज़ में, अनु मलिक का म्यूजिक, समीर के बोल, इतना बेहतरीन गाना, मज़ा आ गया। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और आप सुनने जा रहे हैं हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर ये सॉन्ग है, तो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के आपके अपने क्वालिटी उन गोंडा में। आप सुन रहे हैं रेडियो 11 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन।

जी, तो भैया आप सुन रहे हैं मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए। और हमारे कमल जी लिख रहे हैं नाइस देशभक्ति गीत। जी हाँ, वैसे बहुत पुराना और बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो कि है समरीन जी की, और वो सुनना चाह रही है बेहद ही रोमांटिक गाना जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, इश्काबे। तो आप एंजॉय करते रहिए और ऑफ कोर्स अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर।

हाँ जी, तो आप सुन रही हैं सबरी जी की फरमाइश इश्कावे, एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी नगमा आपने एंजॉय किया। और अब बारी है हमारी अगली फरमाइश की, जो कि राकेश कुमार शुक्ला जी की है। माँ काली का बहुत ही खूबसूरत सा गीत उन्होंने फरमाइश की है, यानी कि भजन है। और आइए एंजॉय करते रहिए। एंड जी हाँ, मैं आपको पहचान गई हूँ मोहतरमा। एंड इसके अलावा पंडित आशीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं क्वालिटी गोंडा में। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए राकेश कुमार शुक्ला जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा, ये वाला गीत, ये वाला भजन। और उसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

तो राकेश कुमार शुक्ला जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं बहुत ही प्यारा सा भजन, और इस भजन को सुनने के बाद आपके मन को, आपके दिल को, आपकी रूह को तसल्ली जरूर मिली होगी। फिलहाल के लिए अगली फरमाइश जो आई है वो मेरी मम्मी की तरफ से आई है, तो आइए एंजॉय करते हैं उनका बेहतरीन सा नगमा। और ऑफकोर्स ये गाना फिल्माया गया है अनिल कपूर डिंपल कपाड़िया पर जानबाज फिल्म से तेरा साथ है कितना प्यारा। आपके अपने क्वालिटी उन गुंडा में सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पर।

किशोर कुमार और सपना जी की आवाज में आप सुन रहे हैं बहुत ही प्यारी सी फरमाइश जो कि मेरी मम्मी की तरफ से आई थी, तेरा साथ है कितना प्यारा। और इसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो हमारी आई है वो आई है अरविंद जी की, जो हमें मनकापुर से सुन रहे हैं। और उन्होंने भी फरमाइश भेजी है, अश्क ना हो नैना अश्क ना हो, हॉलीडे फिल्म से आप इंजॉय करिए। अक्षय कुमार पर फिल्माया गया गाना और लिखा है हमारी मंजू जी ने, सुपर से भी ऊपर सॉन्ग है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अरविंद जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं नैना अश्क ना हो, और इसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो कि हमारे पास आई है चौक से सुरेश कुमार जी की, और ऑफ कोर्स उनका फरमाइश आया है वतन पे जो हो फिदा। मोहम्मद रफी की आवाज़ में फूल बने अंगारे फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं खूबसूरत सा नगमा, आपके देशभक्ति गीतों में से एक। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे हैं सुरेश जी की फरमाइश, वतन पर जो फिदा अमर हो जवा। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश और आखिरी फरमाइश की तरफ। ये सॉन्ग डेडिकेटेड है हमारे उन सभी लिसनर्स के लिए जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, केके गुप्ता जी, मंजू जी, एंड ऑफ कोर्स वो सभी जिन्होंने अपनी फरमाइशें हम तक नहीं पहुंचाई हैं। आज आप हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, या आप हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से। ये गाना आप सभी को डेडिकेट करते हुए आपसे चाहूंगी इजाजत, क्योंकि घड़ी ने कर दिया इशारा, वक्त है बाप से विदा लेने का। हालांकि गाना इतना खूबसूरत है कि बीच में मैं आपको कहीं भी रोकना नहीं चाहूंगी, लेकिन एक दफा जरूर मिलूंगी, क्योंकि आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है मेरे पास। वो क्या है बताते हैं, लेकिन

हां जी, तो आप सुन रहे हैं केके जी और हमारे बाकी लिसनर्स को डेडिकेटेड मेरी तरफ से एक गाना, और वो सॉन्ग है एक मुलाकात जरूरी है सनम। फिलहाल अब चाहूंगी आपसे इजाजत, घड़ी ने कर दिया है इशारा, और कल फिर मुलाकात होगी आपसे आपकी अपनी कॉलर ट्यून गोना में, तो सुनना मत भूलिएगा। और ऑफ कोर्स बॉलीवुड के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कल आपका बॉलीवुड वाला सैटरडे लेकर आने वाली है आज नदी आपकी अपने एफएम रेडियो 11.6 एफएम पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और

0: धंधे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में स्कूल वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान, 4 वाहन को किए गए सीज। बता दें कि खुरासा, दर्जी कुआं, उजीरगंज, मुंडन खां चौराहा व सर्कुलर रोड पर हुई कार्यवाही। वहीं जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण कार्य का किया स्थलीय निरीक्षण। शासन द्वारा निर्धारित मानकों का 100% पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निर्माण के दिए गए निर्देश। जिला पंचायत सभागार में पशुपालन विभाग द्वारा मंडल स्तरीय एक दिवसीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव मुक्कुट निवेश सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग की जिलाधिकारी व आयुक्त देवी पाटन मंडल। जनपद गोंडा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत सेंट जेवियर्स स्कूल गोंडा में भव्य तिरंगा यात्रा जागरूकता रैली निकाली गई। हर घर तिरंगा जागरूकता रैली का शुभारंभ जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का उत्साह रहा। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और देशभक्ति से जुड़े नारों के साथ वातावरण को राष्ट्र प्रेम से सरोबोर कर दिया। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाए जाने के बाद तिरंगा यात्रा सेंट जेवियर्स स्कूल से रवाना किया, वहीं अंबेडकर चौराहा तक गई। रैली में विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राओं के साथ विद्यालय परिवार तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उत्साह पूर्वक प्रतिभाग किया है। रैली में विशेष आकर्षण का केंद्र 50 मीटर लंबा तिरंगा रहा, जिससे विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और गर्व के साथ थामे रखा। जिलाधिकारी ने विशाल तिरंगे के साथ आगे बढ़ती रैली को संबोधित करते हुए देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर प्रकाश डाला। विकासखंड झंझरी अंतर्गत ग्राम दुल्लापुर खालसा में परियोजना के तहत निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक का जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्य तथा शेष कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यालय का निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप 100% सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा प्रत्येक कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार ही कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य की नियमित रूप से निगरानी करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूर्ण कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक एवं बेहतर शैक्षिक सुविधाओं से एक विद्यालय उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलम्ब तथा मानकों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया है कि कार्य की प्रगति में तेजी लाते हुए गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। उत्तर प्रदेश सहित पूरे जनपद में कृमि मुक्त होगा बचपन, स्वास्थ्य होगा भविष्य। गोंडा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का जिलाधिकारी ने किया प्रारंभ। बता दें कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज GGIC सभागार गोंडा में राष्ट्रीय क्रेम मुक्ति दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को दवा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि पेट के कीड़ों से बच्चों को मुक्त कर उन्हें स्वास्थ्य, सशक्त और बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के उद्देश्य से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोंडा में राष्ट्रीय क्रीम मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य, बचपन, उज्जवल भविष्य और छोटा कदम बड़ा स्वास्थ्य लाभ की थीम के साथ किया गया है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी व CMO तथा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने छात्र एवं छात्राओं को क्रीम संक्रमण से होने वाले दुष्प्रभाव, बचाव के उपायों तथा नियमित स्वच्छता के संबंध में जानकारियां उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को मंच पर एल्बेंडाजोल की टेबलेट वितरण की गई है। बच्चों के हाथों की नियमित साफ सफाई, पानी के सेवन, नाखून साफ रखने तथा व्यक्तिगत एवं आसपास की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया गया है। जनपद गोंडा में कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह देर रात अपने बिश्नोहरपुर आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल और उनके नेतृत्व में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। बीवी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी सही दिशा में काम न कर रहे होते तो वे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते। उन्होंने जोर देकर कहा कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़कर आए हैं। पहली बार भले ही पार्टी के चेहरे पर चुनाव हुआ हो, लेकिन दूसरी बार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भूमिका अहम थी। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें कैसे नकारा जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही होगा और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जनपद में घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के भीतर नदी का जलस्तर में करीब 8 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सुबह 9:30 पर घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से महज 27 सेंटीमीटर नीचे बह रही थी। वहीं दूसरे दिन देखा गया कि खतरे के निशान से करीब 35 सेंटीमीटर नीचे थी। जलस्तर बढ़ने को देखते हुए तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शासन के द्वारा बताया जा रहा है बाढ़ चौकी सक्रिय है, 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। यहां तक 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जनपद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई संघ ने एक पेड़ माँ के नाम और अमर शहीदों की स्मृति में यह कार्यक्रम किया है। बता दें कि इसका लक्ष्य 15 अगस्त तक जनपद भर में करीब 21,000 पौधे लगाना है। इस अभियान का शुभारंभ CDO गोंडा दयानंद प्रसाद ने, जिला पंचायत राज अधिकारी गोवर्धन सिंह ने और DC मनरेगा आदि लोगों की उपस्थिति में किया गया है। जनपद गोंडा के खरगोपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महनौन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार द्विवेदी और मुन्ना विधायक इस यात्रा का नेतृत्व किए हैं। यह यात्रा देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देगा। बताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा गांधी स्कूल से शुरू होकर गांधी चौराहे पर समाप्त होगी। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवाओं और स्थानीय निवासियों के शामिल होने की प्रबल संभावना है। प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए चलेंगे। वहीं आज करनेलगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अजय सिंह के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। परसपुर विकास खंड मुख्यालय से शुरू हुई पदयात्रा करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर BRC इंटर कॉलेज पहुंची। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी भी यात्रा में मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा लेकर हजारों लोग देशभक्ति के गीतों और नारों के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। पदयात्रा के दौरान लोगों को तिरंगा वितरित किए गए। विधायक अजय सिंह और अन्य नेताओं ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और 15 अगस्त को अपने घरों पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने की अपील की है। यात्रा में शामिल देशभक्ति गीतों के साथ करीब 3 किलोमीटर का सफर तय किया गया है। जनपद गोंडा के मनकापुर के पास बिहार से दिल्ली जा रही एक ट्रेन में यात्रा के दौरान 14 वर्षीय युवती की मौत हो गई। GRP पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया है और परिजनों को को घटना की सूचना दे दी गई है। मृतक युवती की पहचान नरगिस के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद हरियाणा के किसान मजदूर कॉलोनी थाना ओल्ड पुराना की निवासी थी। वह बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी, तभी मनकापुर के पास ट्रेन में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और तत्काल मौके पर मौत हो गई। थाना जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार यादव के मुताबिक पीएम को पोस्टमार्टम के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण स्पष्ट हो पाएंगे। गोंडा में डायट प्रवक्ता से आवासीय प्लाट देने के नाम पर 9.11 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। बता दें कि आरोप रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक और कर्मचारियों पर है। एसपी विनीत जायसवाल के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार देर शाम करीब 8 बजे बिहार के सीवान निवासी अश्विनी सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। नवाबगंज क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ई रिक्शा के नीचे दबकर करीब 6 लोगों की ई रिक्शा के नीचे दबकर 6 वर्षीय बालक आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान आदित्य की मौत हो गई। यह घटना लवाबीरपुर गांव में एक नाले के पास हुई। बताया गया कि गांव के कई बच्चे एक ई रिक्शा में बैठकर घूमने निकले थे। अनिल उर्फ कदालू ने जानकारी दी कि उनके पड़ोसी रवि का रिश्तेदार सोनू ई रिक्शा लेकर आया था और बच्चों को घुमा रहा था, तभी रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें आदित्य की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई खूबियों में लैस यह गाड़ी 360 डिग्री पर घूम जाती है। बता दें कि जमीन पर 40 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है, 5 किलोमीटर की रफ्तार से पानी पर चलती है। लगातार 40 घंटे तक बाढ़ में फंसे लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा सकती है। इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक बार में यह करीब 8 से 9 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके। 3 करोड़ कीमत की यह गाड़ी भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने गोंडा प्रशासन को दी है। इसका नाम हनुमान रथ रखा गया है। गोंडा स्थित रेल मनोरंजन संस्थान का उन्नयन और सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना का उद्देश्य रेल कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्नयन कार्य के अंतर्गत संस्थान के सभी शौचालय और स्नान घरों में नए पानी के कनेक्शन, सैनिटरी फिटिंग तथा टाइल्स लगाई गई है। इसके अतिरिक्त सेप्टिक टैंक और सोकफिट की मरम्मत की गई है और नई जल पाइप भी बिछाई जा रही है। जनपद में निपुण भारत मिशन के प्रभावी बनाने और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आगामी 29 जुलाई को निपुण संकल्प कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती व गोंडा के शिक्षा विभाग के अधिकारी, डायट मेंटर, खंड शिक्षा अधिकारी, SRG और ARP भाग लिए थे। इस दौरान करीब 2 लाख विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में काफी सुधार आई थी। बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोंडा स्थित ROH डिपो में ब्रेक वन के आधुनिकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य ट्रेन मैनेजरों की ड्यूटी को अधिक सुरक्षित, आरामदायक व सुविधाजनक बनाना है। यह पहल RDSO के मानकों के अनुरूप की जा रही है। इससे लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान ट्रेन मैनेजरों को बेहतर वातावरण मिल सकता है तथा शारीरिक थकान के बिना पूरी एकाग्रता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि आधुनिकरण के तहत एर्गोनॉमिक सीटिंग व्यवस्था की गई है। इसमें हाथों के आराम के लिए आर्मरेस्ट कुर्सी की हाइट को एडजस्ट करने व 360 डिग्री रोटेशन वाली विशेष कुर्सियां शामिल हैं। टाकी होल्डर, कोट हुक और वाटर बॉटल स्टैंड भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए दोनों तरफ 520 मिमी बड़े ग्रेव हैंडल और फुट रेस्ट दिए गए हैं। ये सभी सुविधाएं ट्रेन मैनेजरों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। सख्त हिदायत, मनमानी नहीं करें स्कूल संचालक। बता दें कि जिला शुल्क नियामक समिति की मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। DIOS डॉक्टर रामचंद ने कहा कि अभिभावकों को किसी तय दुकान या स्कूल से किताबें, जूते, मोजे, यूनिफॉर्म, टिफिन और पानी की बोतल खरीदने के लिए मजबूर बोर करने वाले स्कूल पर कार्यवाही की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी तथा साथ ही 5,00,000 रुपए तक अर्थदंड लगाया जा सकता है। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधनों को नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सहित गोंडा जनपद में अंडे और पोल्ट्री मीट की मांग के मुकाबले उत्पादन कम। बता दें कि इस अंतर को कुक्कुट कारोबार में निवेश के बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि जिला पंचायत सभागार में आयोजित मंडल स्तरीय कुक्कुट निवेश सम्मेलन में उद्यमियों और किसानों को निवेश, बैंक ऋण, सब्सिडी व आधुनिक कुक्कुट पालन की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन मंडला आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया है। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री अब केवल पशुपालन तक सीमित नहीं है बल्कि रोजगार और आय का बड़ा माध्यम बन सकता है। उत्तर प्रदेश कुक्कुट पालन विकास नीति के तहत 1,500 करोड़ रुपए के निवेश और 1.25 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य है। परियोजना लगातार अग्रसर है। बताया जा रहा है कि करीब 70% तक बैंक ऋण और ऋण पर 5 वर्ष तक 7% तक ब्याज में छूट का प्रावधान भी किया गया है। जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर स्टाम्प ड्यूटी में 7% छूट पर पोल्ट्री इकाइयों को 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में पूरी छूट दी जा रही है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने लोगों से पोल्ट्री में विशेष निवेश करने की अपील की है। तकनीकी सत्र में कुक्कुट पोषण आहार प्रबंधन, आधुनिक बॉयलर व लेयर पालन, जैव सुरक्षा, सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण और नाबार्ड की योजनाओं की जानकारी दी। नवाबगंज क्षेत्र के ढेमुआ घाट पर सरकारी नाव से वसूली का आरोप। बता दें कि ढेमुआ घाट पर सरकारी नाव चलाने वाले लोगों पर यात्रियों ने 50 रूपए किराया वसूलने का आरोप लगाया है। अनूप सिंह, बेचन सिंह और अन्य यात्रियों ने आरोप लगाया कि रोजाना नदी पार करने पर उनसे पैसे लिए जाते हैं। वहीं नाव संचालकों ने आरोपों को गलत बताया है। पीडब्ल्यूडी के जेई आर एन यादव के मुताबिक घाट पर 3 सरकारी नावें संचालित हैं और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर समस्त थानों में की गई जनसुनवाई। जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक द्वारा थाना धानेपुर तथा अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा थाना तरबगंज एवं थाना नवाबगंज में जन सुनवाई कर फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना गया है। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मौके पर जाकर प्रत्येक प्रकरण का 100% निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने अपने सर्किल क्षेत्रों में तथा समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष द्वारा अपने अपने थानों पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को शिकायतों के समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। गोंडा पुलिस ने एक युवक की बचाई जान। बता दें कि डायल 112 की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पीआरवी टीम गहरे पानी में डूब रहे व्यक्ति को बचाई। बता दें कि जनपद गोंडा में आमजन की सुरक्षा एवं सहायता के लिए संचालित डायल 112 सेवा द्वारा एक बार फिर तत्परता एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए गहरे पानी में डूब रहे एक व्यक्ति की जान बचाई गई है। समय करीब 8 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना धानेपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब रहा था जिसको तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। सूचना प्राप्त होते ही डायल 112 कंट्रोल रूम द्वारा संबंधित पीआरबी घटना की सूचना देते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। सूचना मिलते ही थाना धानेपुर क्षेत्र में संचालित पीआरबी 5643 पर नियुक्त कमांडर आरक्षी हृदय सिंह यादव एवं होमगार्ड चालक राकेश तिवारी द्वारा बिना किसी विलम्ब के तत्काल घटना स्थल की तरफ रवाना होकर अत्यंत कम समय में मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। मौके पर पहुंचने पर पुलिस टीम ने देखा कि खिलावन कोरी पुत्र श्री राम तीरथ निवासी बढ़ईपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोंडा गहरे पानी में डूब रहे हैं। परिस्थिति को गंभीरता से देखते हुए पीआरबी कर्मियों द्वारा असाधारण तत्परता, साहस एवं सूझबूझ कर परिचय देते हुए तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया गया। पीआरबी कर्मचारियों द्वारा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आवश्यक सावधानी बरतते हुए डूब रहे व्यक्ति को गहरे पानी से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। खिलावन कोरी को साकुशल पानी से बाहर निकाला गया। समय रहते पुलिस टीम द्वारा की गई इस तत्परता से ग्रामीणों ने हृदय से दिया धन्यवाद। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 92-60-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
7: नमस्कार, सांची विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी RJ मोनिका। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सांचे विरासत के इस अंक में, यानी इस एपिसोड में, हम आपसे बहुत ही खूबसूरत लघु चित्रकला के बारे में बात करने वाले हैं। यूं तो लघु चित्रकला यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत फेमस है, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ की मिनिएचर पेंटिंग्स खासा फेमस है। तो वो कौन सी है जगह? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, इट्स राजस्थान। लघु चित्रकला चर्म पत्र, तैयार कार्ड, तांबे या हाथी दांत पर बनाया गया छोटा बारीक गढ़ा हुआ चित्र है, जिसे हम हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ये नाम मध्यकालीन प्रकाशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिनियम या लाल शीशे से किया गया है। अलग अलग परंपराओं के मिश्रण से उत्पन्न हुआ प्रबुद्ध पांडुलिपि और पदक लघु चित्रकला 16वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक फली फूली ये मिनिएचर आर्ट। पोर्ट्रेट लघु चित्र लॉकेट या ढके हुए पोर्ट्रेट बॉक्स में संलग्न एक अलग चित्र के रूप में हॉरन बाउट परिवार जैसे फ्लेमिश प्रकाशकों से सबसे अधिक प्रशंसनीय रूप से पता लगाया जाता है। हालांकि सबसे प्रारंभिक डेटा योग्य चित्र लघु चित्र फ्लेमिश नहीं बल्कि फ्रेंच है, और माना जाता है कि ये सभी चित्रित किए गए हैं थिम फ्रांसिस प्रथम के दरबार में जीन क्लॉड द्वारा। राजा हेनरी अष्टम के संरक्षण में लुकास हॉरन बाउट ने इंग्लैंड में रिकॉर्ड किए गए पहले चित्र लघु चित्रों को चित्रित किया। उन्होंने तकनीक सिखाई हंस होलबिन द यंगर, जो अपने चित्र फलक चित्रों और रेखा चित्र में स्पष्ट दृष्टि से तीव्रता और स्पर्श की सुंदरता को इस छोटे पैमाने के काम में डालने में सक्षम थे, जिसे तत्कालीन नए कला रूप की उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण हुआ जो नायाब है। होलबिन ने इंग्लैंड में लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग्स की एक लंबी परंपरा को प्रेरित किया। उनके एक शिष्य निकोलस हिलियार्ड उस देश में लघु चित्रकला के पहले मूल निवासी मास्टर बने। उन्होंने गोलाकार रूप को प्राथमिकता देते हुए अंडाकार आकार को अपनाया, जो हाल ही में यूरोप महाद्वीप में फैशनेबल बन गया और जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक सबसे लोकप्रिय आकार बना रहा। हिलियार्ड ने 30 से अधिक वर्षों तक महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के लघु चित्रकार के रूप में कार्य किया। उनके प्रमुख शिष्य आइजैक ओलिवर तकनीकी रूप से अधिक परिष्कृत कलाकार थे, जो किंग जेम्स प्रथम के शासनकाल के दौरान मुख्य लघु कलाकार बन गए। ओलिवर के शिष्य सैमुअल कूपर ने अपने चरित्र और चुस्त प्रभावी ब्रश वर्क की प्रस्तुति से यूरोप में एक प्रमुख प्रतिष्ठा अर्जित की। आरंभिक लघु चित्रकारों ने चर्म पत्र या तैयार कागज पर जल रंग और गौचे यानी अपारदर्शी जल रंग में चित्रकारी की थी। धातु की सतह पर एनमल में लघु चित्र बनाने की तकनीक 17वीं शताब्दी में फ्रांस से शुरू की गई थी। इसमें सुधार किया गया। लगभग 1700 ईस्वी में इटालियन चित्रकार रोसाल्बा कैरेरा ने जमीन के रूप में हाथी दांत का उपयोग किया, जो पारदर्शी रंगों के लिए एक चमकदार सतह प्रदान कर सकता है, उनके प्रभाव को बढ़ा सकता है। इस तकनीकी नवाचार ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लघु चित्रकला के महान पुनरुद्धार को प्रेरित किया। इस अवधि के प्रमुख यूरोपीय लघु चित्रकार फ्रांस में पीटर एडोल्फ हॉल और निकोलस लैम्फ्रेसन और इंग्लैंड में जेरेमिया मेयर, रिचर्ड कॉसवे, ओजियास हम्फ्री और जॉन स्मार्ट थे। 19वीं सदी की शुरुआत में जेबी इसाबे जैसे फ्रांसीसी लघु चित्रकार जैक्स लुई डेविड के चित्रपलक चित्रों से प्रभावित थे। अगले दशक में लघु चित्र बनाए जाते रहे, लेकिन वे महंगी विलासिता बने रहे। फोटोग्राफी के नए माध्यम में सस्ते काले और सफेद चित्रों ने सदी के उत्तरार्ध में चित्रित लघु चित्रों को अप्रचलित बना दिया। आपने लघु चित्रकला के भारतीय विद्यालय के बारे में तो काफी सुना होगा। प्रत्येक स्कूल का एक चरम और पतन का दौर था। एक ही स्कूल के विभिन्न युगों के चित्रों की गुणवत्ता थोड़ी सी भी एक जैसी नहीं थी। अपने चरम पर स्कूलों ने सुंदर कृतियों का निर्माण किया और उनके पतन के दौरान चित्रों की गुणवत्ता और मौलिकता में कमी देखी गई। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग इज अ ब्यूटिफुली यूनिक आर्ट फॉर्म स्पैनिंग अक्रॉस सेंचुरीज। मिनिएचर पेंटिंग्स यानी लघु चित्रकला रंग बिरंगी हस्त निर्मित पेंटिंग होती है जिनका आकार बहुत छोटा होता है। मिनिएचर शब्द न्यूनतम से लिया गया है जिसका अर्थ है कि चित्र छोटे या बहुत छोटे हैं और इसमें कागज, ताड़ के पत्ते और लकड़ी से लेकर संगमरमर तक की सामग्री शामिल है। भारत में लघु चित्रकला को इसके प्रवर्तक के रूप में बंगाल के पलाश को श्रेय दिया जाता है, लेकिन ये मुगलों के अधीन था कि इसने अपने चरम को प्राप्त किया। किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ जैसे कई राजस्थानी चित्रकला विद्यालयों के कलाकारों ने लघु चित्रों की विरासत को आगे बढ़ाया। राजस्थान, जिसका अर्थ है राजाओं का निवास, पहले इसे कहा जाता था राजपुताना यानी राजपूतों का देश। 1947 से पहले जब भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की तो इसमें लगभग 2 दर्जन रियासतें और सरदारियां, अजमेर मेरवाड़ा का छोटा ब्रिटिश प्रशासित प्रांत और मुख्य सीमाओं के बाहर के कुछ क्षेत्र शामिल थे। 1947 के बाद रियासतों और सरदारों को चरणों में भारत में एकीकृत किया गया और राज्य का नाम राजस्थान रखा गया। इसने अपना वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को ग्रहण किया जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग इज एन एस्टोनिशिंग एंड डिटेल्ड आर्टिस्ट्री दैट कैन बी लिंक्ड टू द स्प्लेंडेड एरा ऑफ 6th एंड 7th सेंचुरीज। राजस्थान भारत में लघु चित्रकला के अग्रदूतों में से एक है। ये भारतीय लोक कला रूप यहाँ मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र में 15वीं शताब्दी की शुरुआत में जैन पाठ कल्प सूत्र के पाठ्य चित्र के रूप में विकसित हुई। इन राजस्थानी लघु चित्रकला में अजंता और गुजरात की महान कला से गहरा संबंध है। ये पहली भारतीय लोक कला शैली पालम की भगव पेंटिंग जो कि 1555 के आसपास बनाई गई थी उसमें आकार लेना शुरू हुई और राजस्थान की कला शैलियों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। राजस्थानी लघु चित्रकला शैली में स्वदेशी कला रूपों के साथ साथ पश्चिमी प्रभाव भी शामिल है। राजस्थानी चित्रकला शैली पहली बार 16वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ में देखी गई है। समय के साथ राजस्थान में कई अलग अलग चित्रकला शैलियां विकसित हुई। हालांकि सबसे प्रसिद्ध कोटा, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़ और मेवाड़ है। वर्तमान समय में जयपुर सबसे ज्यादा फेमस है पेंटिंग्स के लिए भी और अपने गुलाबी अंदाज के लिए भी। राजस्थान लघु चित्रकला एक अद्भुत एवं विस्तृत कलात्मकता है, जिसे छठी व सातवीं शताब्दी के गौरवशाली युग से जोड़ा जा सकता है। इसका स्रोत राजपुताना के भव्य शाही कक्षों में स्थित है, जो निडर राजपूत योद्धाओं के प्रभुत्व वाला क्षेत्र है, जिसे वर्तमान में राजस्थान के रूप में पहचाना जाता है। राजस्थान लघु चित्रकला में राजघरानों के बीच भावुक संबंधों को दर्शाया गया है। चित्रों में राजसी जुलूस, शानदार दरबारी मामले और राजाओं और रानियों द्वारा संचालित शानदार जीवन शैली को दर्शाया गया है। विलासिता और परिष्कार को दर्शाने में कलाकारों की महारत बेजोड़ है, जैसा कि इन दृश्यों की भव्यता से स्पष्ट है। एक राजसी क्षेत्र की झलक प्रदान करता है ये। मुगलों द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू की गई पीढ़ियों से राजस्थान हस्तनिर्मित लघु चित्रों का केंद्र बना रहा है। सांस्कृतिक केंद्र होने के नाते राजस्थान ने उस उत्कृष्ट कला रूप के लिए सही मायने में मान्यता प्राप्त की है। ये चित्रकला की एक अनूठी और विशिष्ट राजस्थानी या राजपुताना शैली का दावा करता है। राजस्थानी लघु चित्रकला को गढ़ने के लिए बहुत अधिक प्रयास, सावधानी और दक्षता की आवश्यकता होती है। कैनवस के लिए तैयार होने से लेकर अंतिम तत्वों को जोड़कर समाप्त करने तक कलाकार कई तरह के काम करता है, जिसके लिए बहुत धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। रचनाओं की योजना बनाने में बहुत सावधानी बरती जाती है। प्रत्येक टुकड़े को सोच समझ कर रखने से कहानी का संचार या विशिष्ट भावनाओं का आभास होता है। राजस्थानी लघु कला में खोजे गए विविध विषय मानवीय अनुभव के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हैं। पौराणिक कथाएं, धार्मिक कहानियां, शाही दरबार के दृश्य, रोमांटिक मुलाकातें और प्रकृति की सुंदरता का चित्रण, ये कलाकृतियां इन सभी तत्वों का सुंदर प्रतिनिधित्व करती हैं। चित्रों में रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों का आकर्षक पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। भारतीय समाज ने इन गहरे रूप से जड़े महाकाव्यों द्वारा छोड़े गए अमिट निशानों को झेला है। राजस्थानी लघु कला मुगल शैली से प्रभावित थी, लेकिन इसका अपना व्यक्तित्व और दृष्टिकोण था। अंतर का यह हिस्सा राजस्थानी कलाकारों के अधिक गीतात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ शुद्ध रेखाओं और रंगों से उनकी खुशी के कारण आया। अंतर का दूसरा हिस्सा पवित्रता की भावना को हासिल करने की व्यस्तता में निहित है। राजस्थानी लघु चित्रकला में मुख्य रूप से हरे, भूरे और सफेद रंग के साथ साथ प्राथमिक रंग जैसे लाल, नीला, पीला का उपयोग किया जाता है। कुछ चित्रों में सोने और चांदी का भी उपयोग किया गया था। राजस्थानी चित्रकला के विकास में दो मुख्य कारकों ने योगदान दिया। पहला, समृद्ध राजपुताना समुदाय का संरक्षण और दूसरा, वैष्णववाद का पुनरुद्धार और भक्ति पंथ का विकास। राजस्थानी लघु चित्रों में विभिन्न प्रकार के विषय थे, जिनमें ऋतुएं, रागमाला, संगीत, शिकार, रामायण, महाभारत के धार्मिक विषय और राधा और कृष्ण के प्रेम दृश्य शामिल थे। राजस्थान के प्रारंभिक कला शैली को उसके सर्वाधिक अविरल रूप में दर्शाने वाले अधिकांश लघु चित्र मेवाड़ से प्राप्त होते हैं। बोल्ड रेखाएं, भावनात्मक रूप से भरे चेहरे, तीखे फीचर्स, मजबूत आकृतियां और बुनियादी चमकीले रंग इसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं। शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ और नाथद्वारा में मेवाड़ कला के उपकेंद्र विकसित हुए। शाहपुरा और प्रतापगढ़ ने शाही चित्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। देवगढ़ ने विभिन्न विषयों में और नाथद्वारा ने श्रीनाथ जी के चित्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नाथद्वारा ने कई प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया, लेकिन ये अपने बड़े आकार के कपड़े की दीवार लटकनों में सभी से आगे निकल गया, जिन्हें पिछवाई के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी लघु चित्रकला के विद्यालय, लघु चित्रकला के राजस्थानी विद्यालयों में अगर हम बात करें तो मेवाड़, मालवा, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर विद्यालय शामिल हैं। अगर हम बात करें मिनिएचर पेंटिंग्स की हिस्ट्री की तो इट हैज सच अ हिस्टोरिकल रूट। लघु चित्रकला की कला का इतिहास बहुत ही रोचक है और भारत में इसकी यात्रा मुगल आक्रमणकारियों के साथ शुरू हुई, जिन्होंने फारस से इस अत्यंत प्रतिष्ठित कला रूप को यहाँ लाया। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक हुमायूं ने फारस से कुशल कलाकारों को आमंत्रित किया, जो लघु चित्रकला की कला में निपुण थे। ये कलाकार जटिल और विस्तृत कलाकृति की एक समृद्ध परंपरा लेकर आए, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कौशल से मुगल दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स की हिस्ट्री और इसकी डेवलपमेंट 750 ईस्वी पूर्व की मानी जा सकती है। जब पलाश ने भारतीय पूर्वी क्षेत्र पर शासन किया था। लोकप्रियता का कारण बुद्ध की धार्मिक शिक्षाएं थीं, जिनमें उनके चित्र शामिल थे जो ताड़ के पत्तों पर अंकित थे। ताड़ के पत्तों पर फिट होने के लिए इन चित्रों को छोटा होना था जिस पर वे बनाए गए थे। लगभग 960 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा द्वारा इसी तरह के चित्रों को पश्चिमी भारत में आयात किया गया था और इसी से विस्तार हुआ और विस्तार के साथ साथ लघु चित्रों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। मुगल साम्राज्य क्योंकि अकबर की चित्रकला में बहुत रुचि थी तो हुआ यूं कि ये चित्रकला धीरे धीरे फलने फूलने लगी। चित्रकला की मुगल शैली की उत्पत्ति भारतीय लघु चित्रों में हुई जो फारसी चित्रकला के पहलुओं को जोड़ती है। मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रों के प्रभाव से इन लघु चित्रों का और विकास हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी राजस्थान के राजपूत राजाओं ने लघु चित्र और कलाकार का समर्थन करना शुरू किया। मुगल कला चित्रकला से प्रभावित होने के बावजूद राजस्थान के लघु चित्रों की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं और अक्सर शाही जीवन शैली और कृष्ण राधा की पौराणिक कथाओं को चित्रित करती थी। इन छोटे चित्रों में से अधिकांश ने शाही जीवन को चित्रित किया और उनके साहस की कहानियां सुनाई। इनमें से कुछ पेंटिंग विभिन्न राजा और रानी द्वारा अपने लोगों और साम्राज्य के लिए किए गए योगदान को उजागर करने के लिए भी बनाई गई थी। कला और संस्कृति के पारखी सम्राट अकबर के सहयोग से भारत में मिनिएचर पेंटिंग्स का विकास हुआ। कला को बढ़ावा देने के लिए अकबर के जुनून ने उन्हें इन फारसी कलाकारों के लिए कार्यस्थल स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें अपनी विशेषज्ञता दिखाने और भारतीय कलाकारों को इस कला रूप से परिचित कराने का एक मंच मिला। बदले में फारसी कलाकारों ने अपने ज्ञान और तकनीकों को भारतीय कलाकारों के साथ साझा किया, जिन्होंने उत्सुकता से इस नई कला को अपना लिया। भारतीय कलाकारों ने फारसी शैली सीखी, लेकिन इसमें अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं को भी शामिल कर दिया। फारसी और भारतीय कलात्मक प्रभावों के इस मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक नई विशिष्ट शैली का निर्माण हुआ, जिसे आज हम राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स या राजपूत पेंटिंग्स के नाम से जानने लगे हैं। राजस्थानी पेंटिंग्स ने भावनाओं और अभिव्यक्तियों को कैद किया, जिससे प्रत्येक पेंटिंग एक आकर्षक इतिहास बन गई, जिसने दर्शकों को सुंदरता की दुनिया में पहुंचा दिया। समय के साथ राजस्थानी लघु चित्रकला की कला राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई। उदयपुर शहर अपनी खूबसूरती के साथ ही अपनी कला और संस्कृति के लिए भी दुनिया में पहचाना जाता है। इस खास कला में यहाँ की मिनिएचर पेंटिंग्स कला खास तौर पर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। छोटी छोटी कलाकृतियां और आकर्षक चित्र हर किसी को मोहित कर देती है और मेवाड़ की चित्रकारी खास रूप से अपनी मिनिएचर कला के लिए पहचानी जाती है। उदयपुर में मिनिएचर आर्टिस्ट कैलाश जिंगर ने बताया कि यहाँ कई विदेशी पर्यटक आते हैं, जिन्हें यहाँ की मिनिएचर कला खास तौर पर आकर्षित करती है। मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह और महाराणा सज्जन सिंह ने इस कला को विशेष बढ़ावा दिया। इस कला में मुख्य रूप से हाथी, घोड़े, चीते और मोर के चित्र किए जाते हैं। इसके साथ ही मिनिएचर पेंटिंग्स में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लाल, पीला और नीला। पहले इनका प्रयोग प्राथमिक चित्रों के लिए होता था, लेकिन वर्तमान में इन मिनिएचर पेंटिंग्स को सिल्क के कपड़े या कैनवस पर बनाया जाता है और विदेशी पर्यटकों को इन्हें खास रूप से पसंद करते हैं। मिनिएचर पेंटिंग का अगर सही मतलब जाने तो उसका मतलब होता है छोटे आकार का चित्र, जिसका इतिहास भारत में लगभग 1000 से 1200 साल पुराना है। इस खास चित्रकारी में हाथों से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें धार्मिक, पौराणिक कथाएं और आदि काव्य के वर्णन की विशेष तरीके से रंगों को सजाया जाता है। राजस्थानी चित्रकला से भिन्न है दिल्ली के शाही कारीगरों और प्रांतीय अदालतों की मुगल पेंटिंग में रंग का अधिक साहसिक उपयोग। मानव आकृति की एक अमूर्त और पारंपरिक अवधारणा और परिदृश्य का एक सजावटी उपचार शामिल है। 18वीं शताब्दी में दरबारी चित्र, दरबारी दृश्य और शिकार के दृश्य तेजी से आम होने लगे। मुगल कला की तरह राजस्थानी पेंटिंग को बक्सों या एल्बमों में रखा जाता था और एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाकर देखा जाता था। तकनीक मुगल चित्रकला के समान है, हालांकि सामग्री उतनी परिष्कृत और शानदार नहीं। अगर हम बात करें मिनिएचर पेंटिंग्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये नाजुक ब्रश वर्क है जो उनकी विशिष्ट पहचान में योगदान देता है। चित्रों का आकार छोटा होना चाहिए, जो 25 वर्ग इंच से अधिक ना हो। चित्रों में उपयोग किए जाने वाले रंग, फल, नील, कीमती पत्थर, सोना और चांदी सहित विभिन्न कार्बनिक पदार्थ से आते हैं। लघु चित्र में महिलाओं की मूर्तियों में अक्सर लंबे बाल होते हैं और उनकी आंखें और बाल हमेशा काले रंग के होते हैं। जबकि दुनिया भर के चित्रकार अपने कामों में अपने स्वयं के विषय को प्रसारित करते हैं, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स में राग, संगीत के नोटों का पैटर्न और धार्मिक और पौराणिक कहानियां सबसे ज्यादा प्रचलित विषय हैं। लघु स्तरीय लघु चित्र आमतौर पर पुस्तकों या एल्बम के लिए बनाए जाते हैं। ये कपड़े और कागज आधारित सामग्री पर किए जाते हैं। मुगल लघु चित्रों के पतन के परिणाम स्वरूप लघु चित्रकला की राजस्थानी शैली ने लोकप्रियता हासिल की। राजपूत सम्राटों में कला के प्रति वही जुनून था जो मुगल सम्राटों में था और उन्होंने लघु चित्रों को काफी ज्यादा समर्थन दिया। किशन सिंह के बाद राजा सावंत सिंह के बेटे राजा राज सिंह के शासन काल में राजपूत चित्रकला अपने चरम पर पहुँच गयी। राजपूत लघु चित्रों में अक्सर रामायण की कहानियों और राजाओं और रानियों की शाही जीवन शैली के अलावा वर्तमान और पिछले शासक की विरासत को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त राजपूत चित्रों ने सामाजिक मानदंड और शासक द्वारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए किए गए संशोधन को चित्रित किया। राजस्थानी चित्रों के विषय ऋतुओं, संगीत, शिकार के दृश्य आदि रहे हैं। राजस्थानी स्कूल की एक विशिष्ट पहलू चित्र की पृष्ठभूमि थी। नियोजित रंग आमतौर पर बोल्ड और विषम थे। अब बात आती है कि इतने सारे स्कूल ऑफ आर्ट का हमने जिक्र किया, तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है मेवाड़ स्टाइल। 17th और 18th शताब्दी की भारतीय लघु चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण शैलियों में से एक है मेवाड़ स्टाइल। ये राजस्थानी शैली की एक ऐसी स्कूल स्टाइल है और इसे मेवाड़ की हिंदू रियासत में विकसित किया गया। राजस्थान राज्य की ये बेहद फेमस स्टाइल है। तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या में चित्रों की तारीखें और उत्पत्ति के स्थान बताए जा सकते हैं, जो किसी भी अन्य राजस्थानी स्कूल की तुलना में मेवाड़ में चित्रकला के विकास की अधिक व्यापक तस्वीर को संभव बनाते हैं। सबसे पुराने उदाहरण 1605 में राज्य की प्रारंभिक राजधानी चावंड में चित्रित ये अभिव्यंजक और सशक्त शैली कुछ बदलाव के साथ 1680 तक जारी रही, जिसके बाद मुगल प्रभाव अधिक स्पष्ट हो गया। प्रारंभिक चरण के उत्कृष्ट चित्रकारों में से एक कलाकार साहबदीन थे। राणा अमर सिंह ने निसारुद्दीन को चावंड रागमाला बनाने का काम सौंपा। ये सबसे प्रसिद्ध मेवाड़ लघु चित्रों में से एक है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रागमाला श्रृंखला है और राजपूत शैली के अंत और मेवाड़ शैली के कलात्मक विकास की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। मेवाड़ स्कूल 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी तक जारी रहा। उत्पादन काफी प्रचुर मात्रा में हुआ। चित्रकारी और शासक के जीवन से संबंधित चित्रों की बढ़ती संख्या हालांकि धार्मिक विषय लोकप्रिय बने रहे। यह पेंटिंग निसारुद्दीन की विशिष्ट शैली को दर्शाती है। रंग पैलेट अच्छी तरह से संतुलित है। एक गहरे प्रूशियन ब्लू रंग के साथ विपरीत जो पात्रों को ढकता है। रंगों का उपयोग नियंत्रित है और लाल नीले कंट्रास्ट पर बहुत अधिक निर्भर है। हम पीले और ठंडे रंग वाले हरे वनस्पति के कुछ टुकड़े देख पाएंगे अगर हम इन पेंटिंग्स पर गौर करें। सभी रचनाओं में किसी न किसी प्रकार का पशु जीवन भी शामिल है, चाहे वो मोर हो, हिरण का बच्चा हो या बंगाली लघु चित्र में पेड़ों से झांकते दो बगुले हो। उदयपुर से निकली मेवाड़ शैली अपनी गहन आध्यात्मिक और अलौकिक कला के लिए प्रसिद्ध है। ये शैली अक्सर हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कलाकार अपने जटिल ब्रश वर्क और नाजुक विवरण के माध्यम से आध्यात्मिकता और भक्ति की भावना को कुशलता से व्यक्त करते हैं। मेवाड़ की पेंटिंग रंगों के अपने समृद्ध उपयोग देवी देवताओं के भावपूर्ण चित्रण के लिए जानी जाती है। अब बात आती है मारवाड़ स्टाइल की। जोधपुर से शुरू हुई मारवाड़ चित्रकला शैली साहस और कुलीनता की एक अलग भावना को दर्शाती है। ये शैली वीरतापूर्ण कहानियों, शाही दरबार जीवन और शिकार के दृश्यों को चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ की पेंटिंग्स में राजपूत दरबारों की शान और विलासिता को दर्शाया गया है और ये काफी ज्यादा साहस को भी दर्शाती है। इसके बाद आती है हदौती स्टाइल। बूंदी और कोटा के क्षेत्रों में अपनी जड़ों के साथ हदौती स्टाइल, जिसे लोग हाड़ौती शैली की विशेषज्ञता को मानते हैं, इसकी बारीक विवरण और जटिल रचना है। ये शैली अक्सर धार्मिक विषयों की खोज करती है, हिंदू महाकाव्य और पौराणिक कहानियों के दृश्यों को चित्रित करती है। हाड़ौती पेंटिंग्स में राजपूत रईस और उनके दरबारी के लघु चित्र दिखाई देते हैं। कलाकारों का विवरण और जटिल ब्रश वर्क पर सावधानी पूर्वक ध्यान हाड़ौती पेंटिंग्स को देखने लायक बनाता है। एंड नाउ नेक्स्ट कम्स किशनगढ़ स्टाइल। किशनगढ़ शैली रोमांटिक विषय, विशेष रूप से भगवान कृष्ण और राधा के बीच प्रेम के अपने अनूठे चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्रकला शैली का जन्म 18वीं शताब्दी में कृष्णगढ़ में हुआ था, जिसे बाद में कृष्णगढ़ या किशनगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। अक्सर बनी ठनी शैली के रूप में संदर्भित इन चित्रों में अभिव्यंजक आँखें और पतली विशेषताएं दिखाई जाती हैं। बनी ठनी के बारे में बात किए बिना किशनगढ़ चित्रकला का उल्लेख कभी नहीं कर सकते। वो महाराजा सावन सिंह की रखेल की रानी से बनी थी। उनका असली नाम विष्णुप्रिया था, लेकिन खुद को उत्तम श्रृंगार और आभूषणों से सजाने के कारण उन्हें बनी ठनी कहा जाता था। और ये यहाँ से शुरू होती है किशनगढ़ पेंटिंग्स की एक नई कहानी। 17वीं शताब्दी के अंत में किशनगढ़ में मुगल कला की शैली के समान सक्षम चित्र बनाए जा रहे थे, लेकिन राधा कृष्ण विषय पर चित्रों की शानदार श्रृंखला काफी हद तक राजा की प्रेरणा के कारण ही थी। सावन सिंह एक कवि भी थे, जिन्होंने नगरी दास के नाम से लिखा था। साथ ही वे वल्लभाचार्य संप्रदाय के एक समर्पित सदस्य थे, जो पृथ्वी पर भगवान के दिव्य प्रेमी कृष्ण के रूप में उनकी पूजा करता है। और सावंत सिंह की सौतेली माँ की कहानी पर काफी ज्यादा चर्चाएं होती हैं, और यहीं से निकल कर आती है एक अद्भुत नैन नक्श वाली ये किशनगढ़ पेंटिंग्स। इसके बाद आती है बूंदी स्टाइल। बूंदी शहर से शुरू हुई बूंदी शैली अपने जटिल पेंटिंग और भीगती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान की हवेलियों की दीवारों को सजाती है। ये पेंटिंग आमतौर पर पौराणिक कथा, ऐतिहासिक घटना और क्षेत्र में रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाती है। कलाकार आकर्षक रचनाएं बनाने के लिए बोल्ड और जीवंत रंगों का उपयोग करते हैं, जो उनके चित्र दृश्यों में जीवन और चरित्र को जोड़ते हैं। चलिए जयपुर स्कूल की ओर चलते हैं। ये अपने आदमकद चित्रों और बड़े कैनवस के लिए प्रसिद्ध था। विद्वानों का मानना है कि साहिब राम जयपुर एटेलियर के प्रमुख थे। वह बेहद लोकप्रिय थे और उन्होंने अपनी कार्यशाला में बड़ी संख्या में कलाकारों और अधीनस्थों को नियुक्त किया था। उनका करियर 1750 से 1820 तक चला और उन्होंने उस अवधि के दौरान 6 अलग अलग राजाओं की सेवा की। महाराजा सवाई प्रताप सिंह का या बड़ा पैमाने का चित्र संभवतः उनके शासनकाल के प्रारंभिक काल का है। जब वह 14 वर्ष के थे तब उन्हें राज्याभिषेक किया गया था, और इस पेंटिंग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उनकी आंखों का वो कमल आकार की है। और साहिब राम संभवतः किशनगढ़ शैली से प्रेरित थे। उनकी युवा उपस्थिति, उनके छोटे कद, हल्के चेहरे और बाल, उन पर मुकुट कितना बड़ा दिखता है उससे स्पष्ट है अगर आप इस पर गौर करें तो। अगले आती है बीकानेर स्कूल की कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग्स, जिसमें अली रजा, रकनुद्दीन और उस्ता नुथु की कृतियां शामिल हैं। अली रजा मूल रूप से दिल्ली के कलाकार थे, लेकिन उन्होंने बीकानेर स्कूल में काम किया। राजा करण सिंह को एक सपना आया और उन्होंने अली रजा को इस विषय पर एक पेंटिंग बनाने का निर्देश दिया। इससे वैकुंठ दर्शन या विष्णु का निवास विषय का विकास हुआ। हालांकि 1660 के बाद अली के काम में अधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये व्यापक रूप से माना जाता है कि उन्होंने मास्टर कलाकार रुकनुद्दीन को प्रशिक्षित किया था। अली रजा द्वारा प्रवर्तित तो वैकुंठ दर्शन द्वारा उनके समकालीनों के बीच लोकप्रिय हो गए और उन्होंने इसकी कई पुनर्व्याख्याएं लिखी। इसके बाद कुछ और स्टाइल्स आती हैं, जिसे मुगल स्टाइल और मालवा चित्रकला कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स की, तो इसे राजपूत चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैज बीन डीपली इम्पैक्टेड बाय राजस्थानी पेंटिंग्स, और कलाकृति में बोल्ड रंग का उपयोग किया जाता रहा है। उनमें से कुछ ऐसी रही है जो बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट आर्टवर्क रही है। India's artistic heritage still includes Rajasthani miniature paintings as an integral component. Renowned for their elaborate patterns, realistic colors, and masterful storytelling abilities, they have gained significant importance in art history. इसी के साथ आपके आरजे मोनिका आपसे इजाजत चाहती है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों।

देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: महादेव को याद करने के बाद मुझे लगता है कि सावन की फुहार महसूस तो हो गई है गोंडा वालों को, और वैसे गोंडा के आसपास वाले लोग जो भी जहां से सुन रहे हैं, ज़रा बताएं कि आज आपके यहाँ बारिश हुई है या नहीं। फिलहाल हमारे शहर में कुछ बूंदों ने ये बताया है कि बरसात भी होती है। फिलहाल हमारे यहाँ की बारिश तो हमें डिसअपॉइंट ही कर रही है। सो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, क्या कर रहे हैं? और आज जैसा कि आपको पता है कि आज हम सभी बात करेंगे आपके लिए कुछ ऐसी फिल्मों की जिनके बारे में जान के आपकी भी जान कहेगी, जान जान के मेरी जान ले गए, हमसे हमारी पहचान ले गए। हाँ हाँ हाँ, आप यही कहेंगे। तो बिल्कुल आपसे आपकी पहचान ना ले जाके हम आपको आपकी वाली मूवी के बारे में ज़रूर बताएंगे। और फिलहाल के लिए मेरे दिमाग में भाई बहुत बड़ा सा खजाना है। खजाना जैसे मतलब कहते हैं ना कि आज आप सभी को पता है कि आज पूरा देश जो है झंडा यात्रा मना रहा है, घर घर झंडा फहराया जा रहा है। तो एक छोटा सा फ्लैग, लेकिन वो फ्लैग ऐसा हो जिसे आप संभाल के रख सकते हैं, वो ज़रूर खरीदिएगा। अपने देश के लिए कुछ शब्द ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, जिससे पता चले कि आपके मन में आपके लिए, आपके देश के लिए कितना प्यार है। तो भाई देश से जुड़ी फिल्मों के बारे में पिछले वीक भी बता दिया था मैंने आप लोग को, लेकिन आज जो बताना है वो ज़्यादा खास है। तो जल्दी से जान लीजिए कि कौन कौन सी फिल्में हैं जो इस वीक आपको करने वाली हैं एंटरटेन। जी हाँ, आज रिलीज़ हो चुकी है मोस्ट मोस्ट मोस्ट इंतज़ार की हुई फिल्म, यानी कि बंटवारा 1947। ये बंटवारा आज़ादी के साथ साथ जो खुशी थी उसको एक आंसू भरी दास्तान में बताने वाला है। ये फिल्म अभी जैसे रिलीज़ हुई है लोगों ने अभी धीरे धीरे देखना शुरू किया है, पर मैंने जहाँ तक स्टडी किया मैंने अभी ये फिल्म नहीं देखी है। कल देखूँगी मैं, कल नहीं तो संडे को ज़रूर देखूँगी। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी आप देख सकते हैं। इसमें शबाना और प्रीति जिंटा के साथ आपके भाई सनी भाजी, इनका जो अटैक है वो अलग लेवल का है। आगे मैं बता दूँ कि आवारापन 2 यानी कि वो भी रिलीज़ हो चुकी है, ड्रामा रोमांस, और इमरान हाशमी की फिल्म आप कैसे छोड़ने वाले हैं। और दो फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई हैं, दोनों ही फिल्में ऐसे हीरो की हैं जो कम ही फिल्में रिलीज़ कराते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे की जो कहते हैं ना कि तरक्की पे थोड़ी सी बाधा बन के आई हैं। एनीवे कोई बात नहीं, हम दोनों ही फिल्मों को देखेंगे, एक दिन दोनों तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, एक और फिल्म है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, वो है आर्यभट्ट का 0। ये फिल्म आपके लिए कॉमेडी है, ड्रामा है, लेकिन मजेदार है, देख सकते हैं। तो आज इन तीनों फिल्मों का रिव्यू करके मैं आपको बताऊंगी कि इस वीक कौन कौन सी फिल्म देखनी है। वैसे वीकेंड में आपको टाइम काफी मिलने वाला है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी मिल रही है भाई। जी हाँ, शनिवार और एतवार, यानी कि संडे एंड सैटरडे, ये दो एक साथ जैसे लगता है भाई बहन बन के आए हैं और हमें खुशियां देने के लिए आए हैं। यस, तो इन खुशियों को हम जाने नहीं देंगे और फुल भाई चिल करेंगे, चिल करने के साथ इन मूवीज को एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं ये ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद वापस से मैं आपको बताऊंगी बंटवारा 1947 के बारे में स्टोरी क्या है, और इसी के साथ आवारापन 2, और हाँ आर्यभट्ट का 0 भी तो है, ये भी बताना है। वैसे आर्यभट्ट का 0 तो हमें ये पता है कि 0 भी दिया मेरे भारत ने, भारत ने। हाँ भाई, दुनिया वाले कुछ भी बोलते रहे यार, हमारे देश ने 0 ना बनाया होता ना, पैसे की वल्लू ना पता चलती, 9 रुपया लेके घूमते रहते। 0 बना तब पता चला कि हाँ, 1 के आगे 0 लगेगा तो 10 रुपया बनेगा, 1 0 0 0 बढ़ेगा तब जाके दुनिया, मतलब 9 तक नंबर वेस्ट थे, क्या कर लेते आप बिना 0 के, 0 जरूरी था। तो चलिए हम चलते हैं, एक गाना बजाते हैं आप लोग के लिए और फिर आगे बात करते हैं। लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिकल ब्रेक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन।

विकास, ऑफ़ कोर्स आपका गान तो जो आपने कहा है बिल्कुल अच्छा है, पर आपको पता है आज थोड़े सवालों के जवाब देने होते हैं और फिर अपनी पसंद का गाना इवनिंग टाइम यानी कि आरजुबीना वाले टाइम में सुनने को मिलेगा। फिलहाल आप सुन रहे हैं गाना बंटवारा 1947 फिल्म, जो आज ही के दिन रिलीज़ हुई है, और अब आरजुबीना आपको बताने जा रही है कि 1947 का बंटवारा खास तो था क्योंकि उसने हमारे देश में एक ऐसी जंग छेड़ी जिसका कंक्लूजन आज तक नहीं निकला।

जी हाँ, बातें करने के लिए तो बुला रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपकी खास फिल्म जिसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं आप लोग, क्योंकि वीकेंड है और नई फिल्में देखना तो हम सभी का मतलब हम सभी का शौक है और इस शौक को पूरा करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले जैसा कि पता है कि गदर 2 का भी बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, लेकिन गदर 1 ने ज़्यादा धमाके उड़ाए थे, लेकिन गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आई है 1947, यानी कि बंटवारा 1947। नाम में ही भाई बहुत सारे सस्पेंस छुपे हैं। मन में आता है कि क्या ये बंटवारे को दिखाएगा, क्या ये बंटवारे से जुड़े दर्द को दिखाएगा इससे भी बढ़ के। आपको पता है कि हर बार चाहे गदर 1 हो गदर 2 हो, दोनों में सनी देओल जट बने हुए, पंजाबी बने, इस बार इन्होंने बदल लिया है खुद को, एक पाकिस्तानी बनके भारतीय मूल की महिला, जो कि मतलब बंटवारे के पहले तो हम सभी एक ही थे ना, उनके एथिक्स, उनकी अपनत्व को बचाने के लिए, उनकी पहचान को बचाने के लिए दुनिया भर से लड़ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस फिल्म के बारे में कि मूवी में क्या है। इसमें राजकुमार संतोषी का निर्देशन है और आपको बता दूं कि इस मूवी को देश भर में 8,886 शोज मिले हैं, इनमें 65,391 के करीब जो हैं मूवी रिलीज़ होने के पहले टिकटें बिक चुकी हैं। तो यानी कि मूवी लोगों को मतलब कहते हैं ना उम्मीद की मूवी है ये। तो पहले दिन से ही बताऊं तो मूवी ने लोगों को बहुत पसंद मतलब अपनी पसंद बना लिया है, लोगों की मतलब भावुक करने वाली फिल्म रही है, लोगों ने क्रिटिसाइज़ कम किया। तो सबसे पहले तो आपको मूवी के बारे में बता दूं कि मूवी में क्या है, स्टोरी क्या है, कैसे है, जानने की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है कि आखिर फिल्म में ऐसा क्या है। तो आपको बता दूं कि फिल्म इसलिए भावुक कर देगी क्योंकि जब बंटवारा होता है तो भाई ये होता है ना कि मतलब जो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं वो हिंदुस्तान जाएं और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान, और धर्म के अकॉर्डिंग लोग अपना मतलब इधर उधर शिफ्टिंग कर रहे थे, ट्रेनें ऐसी चल रही थी जो लोगों को एक देश से दूसरे देश ट्रांसफ़र कर रही थी। तो ये था, तो उस समय पता चला कि हाँ भाई इनको वहाँ से मतलब ये हिंदुस्तान में थे सनी देओल, तो यहाँ पे इनके ऊपर पत्थरबाजी ये सब होने लगा। मतलब मुझे नहीं पता चला कि ये बंटवारे का लॉजिक क्या था, क्यों किया गया, पर उसके पहले हमारा देश सही था, कोई ज़रूरत नहीं थी बंटवारे की, सब मिलजुल के रह रहे थे, लेकिन इस बंटवारे ने लोगों के अंदर एक कहते ना सच में बांट बना दी और जो बांट आज तक ख़त्म ही नहीं हुई कभी। तो उस दौरान मतलब अब सनी देओल को प्रीति जिंटा यानी कि इनकी पत्नी बनी हुई है, अपने बच्चों के साथ इनको भागना पड़ता है और सनी देओल मार धाड़ करते हुए जानते ही एक्सपर्ट हैं अपने परिवार को लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, और पाकिस्तान में जिस घर में इनको रहने के लिए दिया जाता है उस घर में ये शबाना आज़मी बींग अ हिंदू वहाँ रह रही होती हैं और वो कहती मैं अपने घर में किसी को नहीं आने दूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है, लाइक ऐसा कुछ। बहुत मुश्किल होता है यार कोई आपसे ऐसे आके कह दे कि भाई नहीं नहीं ये देश बढ़ गया आपको यहाँ नहीं रहना, आप जाओ दूसरे देश चले जाओ, इतना आसान है क्या? शब्दों में कहना आसान लग रहा है, उस समय का दौर क्या रहा होगा सोचिए, मतलब जख्म अभी भरे भी नहीं, मतलब अंग्रेजों की यातनाओं से जख्म भरे भी नहीं तब तक बंटवारे की यातना बहुत बहुत खतरनाक रही होगी, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो विकास जी कह रहे कुछ 7 बजे से क्वेश्चंस शुरू होंगे, फिलहाल मैं आपका गाना प्ले कर दूंगी क्योंकि ये गाना हमारी शाम से जुड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स प्ले होगा। तो उसी टाइम मतलब इनको घर मिलता है, तो ये क्या करते हैं सनी देओल, इनके उनके जो धर्म है उसको बचाते हैं, उनके साथ उनके रिलीजन को सेलिब्रेट करते हैं, खुद भी अपने रिलीजन को उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन जो है कहते हैं ना कि वहाँ उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि एक हिंदू महिला का तुम साथ दे रहे हो ऐसा करके ऐसा करके, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और मतलब ठीक ठाक ड्रामा है और इमोशंस हैं, वन टाइम मूवी, एक बार देखेंगे आपको अच्छा लगेगा और हो सकता है ऐसी चीज़ें हुई भी रही हों, फिल्म बनी है तो डेफिनेटली चीज़ों को सोच समझ के बनाई गई होगी और आपको बहुत इमोशनल फील करा देगी और आपको लगेगा कि यार 1947 का बंटवारा अगर ना हुआ होता तो बड़ा अच्छा था। ठीक है,
ये इंडिपेंडेंस स्पेशल मूवी अगर बनी है तो बिल्कुल सही बनी है। मज़ा आएगा आपको देखने के बाद, आपको वो भावनाएं फील होंगी, आपको कॉमन मैन की भावना फील होगी, कॉमन मैन ने क्या क्या सफ़र किया था। तो ये तो बात हो गई भाई बंटवारा 1947 की, अब चलते हैं दूसरी मूवी की ओर। सबसे पहले उसके गाने सुनते हैं, फिर उसके बाद कुछ और। तो आवारापन 2 का इंतज़ार बहुत दिनों से रहा होगा लोगों को, क्योंकि ऑफकोर्स इमरान हाशमी को देखना स्क्रीन पे एक मतलब सपने जैसा होता है, क्योंकि इमरान हमेशा से हम लोग के दिलों पे राज करते रहे हैं। मूवी इनकी हिट जाए ना जाए, लेकिन हाँ इनकी जो कहते हैं ना कि स्पेशली क्या बताऊँ मैं आपको, इनकी जो गाने हैं फिल्मों के वो सबके दिलों पे राज करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आवारापन 2 से गाने आप लोग के साथ। फिल्म में आपको दिखेंगी दिशा पटानी, और अगेन दिशा पटानी के साथ शबाना आज़मी इस फिल्म में भी हैं भाई। अपना राज बना के रखा है शबाना आज़मी ने, और बाकी सारे लिसनर्स कहाँ कहाँ गए हैं, जल्दी से उठ जाएं भाई। स्वतंत्रता के एक दिन पहले की शाम खास होती है, क्योंकि तैयारियां हम लोग कर रहे हैं कल के त्यौहार की। और आप लोग बताइए आपने क्या क्या तैयारियाँ कर ली। भाई मैंने बहुत सारी तैयारियाँ कर ली हैं, और मतलब स्पेशली बताऊँगी कल, बताऊँगी आज क्यों बताऊँ। चलिए सुनते हैं।

यस। तो भाई वाइब आ गई, मज़ा आ गया भाई, मैंने गा भी लिया दिल लगा के। और कुछ गाने गाने के बाद दिल खुश हो जाता है ना, वैसे ही ये गाना गा के खुशी हुई मुझे। तो भाई सोते हुओं को जगाने, आज बिना लाइव आ चुकी है और अगली फिल्म यानी कि अवारापन 2 के बारे में जानने के लिए अगर आप हैं तैयार तो अपने कानों को और अलर्ट कर लीजिए कि कैसी है फिल्म। अगर आपके देखने लायक है तो देख सकते हैं, नहीं देखने लायक है तो भी देखना, क्योंकि इमरान हाशमी की मूवी है, मैं तो नहीं छोड़ने वाली, अच्छी हो या ख़राब हो मैं तो देखूँगी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ, इसमें इमरान के साथ दिशा पठानी है और फिल्म आपको मतलब बहुत खुश ना तो बहुत डिसअपॉइंट करेगी। वन टाइम वाली मूवी है, यू विल एंजॉय, ठीक है। तो कहते हैं कि जिसको अपने पुराने ज़माने को याद करना हो उसके लिए ये फिल्म है। 2007 में आई थी क्लासिक फिल्म जिसका नाम था वारापन, इसी का सीक्वल है 19 साल बाद आखिरकार सिनेमा घरों में पहुंच गया। तो ये फिल्म देखना तो भाई बनता है बनता है बनता है, इस मूवी को तो हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि 19 साल बाद इसका सीक्वल आ रहा है। फिलहाल के लिए मैं ये बताऊं कि दो अच्छी मूवी एक साथ रिलीज़ हुई हैं, तो भाई दोनों की जो कहते हैं ना पब्लिसिटी पे थोड़ा असर पड़ रहा है, दोनों ही अच्छे हीरोज़ की फिल्में हैं तो हम छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों देखें, संडे को एक देख लें, सैटरडे को एक देख लें, एक आज देखनी है देख लें टाइम है तो, नहीं तो कल तो ज़रूर देख लें। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि फिल्म की कहानी जो है, सीन्स जो इतने तगड़े हैं जिनको देख के आपको मज़ा आ जाएगा, और जिन्होंने देखा वो लोग भी बता रहे हैं कि शुरू से लेके अंत तक मूवी आपको बांध के रखेगी। और स्टार्टिंग के 20 मिनट्स जो हैं वो आपको इतना अट्रैक्ट करेंगे, इतना अट्रैक्ट करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू लीव योर सीट, उठ के मतलब आपको वॉशरूम में जाना है तो हम नहीं जाने वाले हैं, इतनी ख़तरनाक आपको स्टार्टिंग से लग जाएगी। और भाई कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो ना तो अंत बढ़िया हो जाता है अपने आप, तो वही चीज़ आपको बता दें कि इमरान हाशमी की इसमें फिल्म में जैसे वापसी हुई है, तो लीड रोल में दिशा पटानी और शबाना आज़मी भी हैं इनके साथ ही, और शिवम पंडित के रूप में इसमें इमरान आपको दिखेंगे। इन्हीं के कंधों पे पूरी फिल्म टिकी हुई है क्योंकि इनकी वापसी हुई है। दिशा फिल्म में एकदम सुंदर सी लग रही हैं, जैसे वो वाली मूवी आई नहीं थी कौन तुझे यूं प्यार करे, हाँ महेंद्र सिंह धोनी, मुझे पता है, मुझे गाना गाने का मन था क्योंकि इस गाने में यही लड़की थी। तो लोग बता रहे हैं कि मतलब मूवी में जो शिवम पंडित के जो जो फैन सर्विसेज है वो बहुत बढ़िया है, एक मतलब कह सकते हैं नॉस्टैल्जिया जनरेट हो जाता है इस फिल्म के शुरू होते ही, और फिल्म जो है वो आम लोगों से जुड़ी हुई है। और कहानी की अगर बात करें तो गाने कहानी को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, पहला तेरा मेरा रिश्ता तो फिर ये पुराना वाला गाना है, और ये पूरी मतलब फिल्म को जैसे लगता है कि पुराने दौर में ले जाके खड़े कर दिए, हम लोग वापस चले गए हैं, ये वाली वाइब आएगी आपको। और रोमांस इस बार थोड़ा कम है, नहीं तो पिछली वाली में तो भाई ठीक ठाक था। और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा इसकी मतलब पब्लिसिटी नहीं हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बड़े बड़े हीरो की जो मूवीज़ एक साथ रिलीज़ हुई हैं तो मुश्किल है थोड़ा सा। बाकी मूवी जो है वो आपको एकदम परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल दिल खुश कर देगी, क्योंकि फिल्म के जो अंत में है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, जैसा लगेगा कि अभी इमरान हाशमी की मौत हो जाएगी, लेकिन इमरान हाशमी जब मौत को मात देते हैं एज अ शिवम पंडित, मज़ा आ जाता है। भारतीय इंटरपोल अधिकारी समर्थ उसे बेबाक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट से मासूम बच्चों को और इन सबको बचाने का काम करते हैं। शिवम इस खूंखार गैंगवार और गैंगस्टर नफीजा के खिलाफ उतरते हैं और पूरा रैकेट जो है उसको क्रैश कर देते हैं। मतलब बेसिकली जो कहानी है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इर्द गिर्द घूमेगी और उसमें भी बच्चों के, तो जो नफीसा है वो विलन है, और मतलब ऑफिशियली बता दूँ तो शबाना आज़मी है। और
तस्कर जो गिरोह है जो तस्करी करता है बच्चों की, उसमें जो जोरावर है उसकी बहन है दिशा पटानी, मतलब कि विलन्स के ही साथ इनको टकराना है, ठीक है, जिसके करीब आ जाते हैं शिवम और शिवम की मदद करती है दिशा पटानी, जो कि हर मूवी की कहानी है। तो मेरी तरफ से भाई ये मूवी मुझे पसंद आई है। और यस, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, 19 साल पुराना है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ये सब कोर्स ही गाना दिल को छू गया मेरे। और चलिए सुनते हैं।

फिल्म रिव्यू करूंगी, आप लोग क्यों घबराने लगते हैं, आरजे बीना है, देन डर की कोई बात ही नहीं है। गुड इवनिंग सबलू जी, कैसे हैं सबलू जी, आप बताइए, आपने देखी है फिल्म आवारा पनबन? मज़ेदार थी ना, म्यूजिक गाने कितने अच्छे अच्छे थे। तो चलिए अगली फिल्म की तरफ चलते हैं, रुख करते हैं, जानते हैं किस फिल्म ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। फिलहाल इन दोनों फिल्मों ने तो अच्छा खासा मतलब अपना ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगली फिल्म है आर्यभट्ट का जीरो। एवरेज ही टाइप मूवी है, लेकिन हाँ कॉमेडी है, देख सकते हैं, वन टाइम है, मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं फिल्म। तो ये फिल्म तो 7 अगस्त को ही रिलीज़ हुई है, पर बता मैं आज रही हूँ क्योंकि मैंने देख ली, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। और इसको जो डायरेक्टर, इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं कमल चंद्र, और फिल्म में आपको हिमांश कोहली दिखेंगे, रवि किशन और सोनाली सहगल इसमें लीड रोल में हैं, जो कि आत्मस्नेह से लड़ने वाले एक युवक की प्रेरणादायक कहानी है। मतलब आत्मस्नेह यानी कि बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी टाइप का बच्चा, लड़का, जो बहुत कुछ करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। वहीं जो उसका जो इसका गणितीय इतिहास है, महान भारतीय खगोल शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी की संख्या प्रणाली और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू की अवधारणा में शून्य के महत्व को आगे बढ़ाया था, जबकि 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में जोड़ घटाव के नियमों के साथ औपचारिक रूप दिया था। अब फिल्म की बात करूँ तो फिल्म इन सब चीज़ों से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि एक इंसान अगर महत्वाकांक्षी हो तो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए फिल्म का जो कहते हैं ना जो रूप है वो आपको एंटरटेन करेगा लास्ट तक। बहुत सारे लड़कों की लाइफ में ऐसा होता है कि वो प्यार भी करते हैं और अपने तरक्की के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन तरक्की के वो मौके नहीं मिल पाते जो वो करना चाहते हैं, और परिवार वाले अलग ताने मार मार के मतलब क्या कहते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, फलनवा का लड़कवा ये कर लिया, हम लोग क्या, तो ये बहुत होता है कि उनका लड़के ने ये कर लिया, उनकी लड़की ने वो कर लिया, वो ये हो गए, वो हो गए, अपना बच्चा क्या कर रहा है, उससे सेटिस्फाई तो कभी नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ, तो इनके पेरेंट्स इनको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, हिमांश के पेरेंट्स, और आत्मविश्वास वो कई बार खोते हैं लेकिन खुद पे भरोसा रखते हैं। और इन्होंने एक फिल्म बग्गू जो होती है उसमें असफलता मिलती है, पिता के ताने मिलते हैं, फिर उसके बाद ये आईएएस बनने के लिए एक बेमेल सफ़र पे निकल पड़ते हैं, ठीक है। और आईएएस बनने का सफ़र इतना आसान नहीं कि आप ऐसे सब्जी पूड़ी की तरह यहाँ चलो यार सब्जी पूड़ी बना खा लेते हैं, तो इतना आसान नहीं, सब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, अरे तुम भी ना चले हो आईएएस बनने, आईएएस बनेंगे तो ऐसे करके मतलब इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और फिल्म कई जगह आपको ऐसा रियलाइज़ कराएगी कि यार ये तो मेरी लाइफ में भी हुआ है, और लगेगा कि यार ये जो ताने हैं ये मुझे भी कहीं ना कहीं मिले। इंसान का संघर्ष, दिल टूटने की कहानी, इमोशनल पिता और बेटे का रिलेशनशिप, रिश्तों की खूबसूरती भी मिलेगी देखने को, और मतलब सारी चीज़ें दिखेंगी, और नाकामियों के बीच वो खुद को ज़ीरो मानने लगते हैं। और एक युवक जब ज़ीरो बनता है फिर ये 100% चांसेस होते हैं कि वो हीरो भी बनेगा। यस मतलब अगर आप ज़ीरो बन गए हैं तो ये आप तय जानिए कि आपको हीरो अपनी लाइफ में ज़रूर बनना है। हाँ एवरेज वाले हैं तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने ज़ीरो पे खुद को लाया है तो ये समझ लीजिए इनिशियल से हाई जाना बहुत अच्छा होता है, मतलब आप जितना पीछे आ सकते हैं उतना ही आगे भी जा सकते हैं। तो इसी पे इर्द गिर्द घूमती रहेगी फिल्म, आपको एंटरटेन करेगी, वन टाइम है, मस्त है, देख लो एक बार, मुझे अच्छी लगी, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मतलब मतलब सिंपल सी बात ये है कि इसमें जो इंसान का संघर्ष है स्पेशली लड़कों का, जिसको हम लोग बहुत कम गिनते हैं, और कम कहने का मतलब कि हमें लगता है कि अरे लड़का इसको तो ये करना ही है, कौन सा घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर, कौन सा इसको रोटी सब्जी बनानी है, तो ये वाला चीज़ आ जाती है। लेकिन हम लड़कों के दर्द को नहीं समझते, उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना, तो वो वाला सीन है इसमें, तो मुझे लगता है कि

फिल्म अच्छी है, लड़के तो ज़रूर देखें, लड़कियाँ भी देखें। लड़कियाँ इसलिए देखें कि आप अगर किसी से इश्क कर रहे हैं तो ये समझिए कि सामने वाले के जीवन में वो इश्क उसके फ्यूचर को बदल सकता है अगर आप सपोर्ट करें तो। गुड इवनिंग आशु जी, गुड इवनिंग सबलू जी। कल झंडा फहराने का मौका मिला है मुझे निमंत्रण उसी स्कूल में जहां मेरा पढ़ाई बचपन में किया था। बड़ी खुशी है, आनंद मिलता है। मेरा क्लास फ्रेंड उसी स्कूल में टीचर है। क्या बात है, क्या बात है, मज़ेदार है। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूँगी कि आप वहाँ पर कविता भी ज़रूर सुनाइएगा देश से जुड़ी, मज़ा आ जाएगा सबको। तो अभी आप लोग सुन रहे हैं गाने आर्यभट्ट का जीरो से, इसके बाद कुछ सवाल आपके नाम।

क्या बात है, दिल फर्जी है तो दिल की अपनी मर्जी भी है, दिल खुदगर्जी भी है, लेकिन दिल के साथ आपके साथ आरजेबीना भी खड़ी है। तो चलिए सबसे पहला सवाल ये बताइए कि बंटवारा 1947 में फीमेल एक्ट्रेस कौन है? जल्दी से आंसर जो देगा वो अपनी पसंद का गाना अपने नाम कर लेगा। भाई एक गाना है कि शाम को फरमाइश हुई थी, चलिए प्ले कर देते हैं। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, बड़ा अच्छा सा गाना है, चलिए एंजॉय कर लेते हैं और देखते हैं कौन है वो जो दिल में आने वाला है। तो आंसर कीजिए, फिल्म है बंटवारा 1947 जो कि आज ही रिलीज़ हुई, आपको बताना है इस फिल्म में फीमेल लीड एक्ट्रेस कौन है।

सो वेरी करेक्ट. सबसे पहले अनिल जी ने आंसर दिया है और अनिल जी के साथ तीनों का आंसर बिल्कुल 7:15 पे आया है. प्रीति एंड उस्मान, अनिल जी, प्रीति जी, उस्मान जी, तीनों का आंसर बिल्कुल सही है. तो तीनों अपने फरमाइश जल्दी से भेज सकते हैं. उस्मान जी, प्रीति जी, अनिल जी, चलिए फटाक से अपनी फरमाइश भेजिए. अभी तो हम लोग एक फरमाइश सुन रहे हैं जो कि हमारे लिसनर की है. कौन है भाई, नाम क्या होगा? विकास, विकास की फरमाइश का गाना है और फटाफट से फरमाइश करें, गाने सुन लें, फिर अगला सवाल आप लोग के लिए तैयार है. लेकिन पहले फरमाइश.

चलिए आपसे करते हैं अगला सवाल, जिसको करने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग आंसर देंगे या नहीं देंगे। चलिए ये बताइए कि जूही चावला की पहली फिल्म कौन सी है? विच इज द फर्स्ट मूवी ऑफ जूही चावला। और महेंद्र जी लिखते हैं राजस्थान से कि आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, जब देश की शान की बात आती है तो जो भी आप लिखते हैं वो सर्वोपर होता है। तो आन देश की शान देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी हर पहचान है। आप सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। क्या बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए शुक्रिया, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखते हैं कौन आंसर देने वाला है सबसे पहले, सबसे फास्ट। और मुझे लगता है कि सबसे पहले कौन आंसर देगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कि मुझे गाना मतलब लड़कों को डेडिकेटेड, मतलब जो फिल्म थी हमारी जीरो, आर्यभट्ट का जीरो, उससे मतलब मिलता जुलता गाना है, तो मैं सोच रही हूँ आप लोग को सुनाऊँ। ध्यान से सुनिएगा, लड़कों के लिए स्पेशल है, वैसे लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि सभी लोग अपनी तरक्की की जद्दोजहद में कितना संघर्ष करते हैं, तो उनके लिए।

और महेंद्र जी ने, क्योंकि समय का अभाव है तो मैं गाना प्ले करूंगी महेंद्र का, क्योंकि प्रीति जी और अनिल जी का गाना प्ले हो चुका और थोड़ी देर में आप लोग फरमाइशी भी सुनेंगे। तो महेंद्र जी आप फरमाइश कर सकते हैं और अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं और इसी के साथ आरजू बीना को इजाजत भी दे सकते हैं। तो इस गाने को फील करके मुझे लग रहा है कि सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे अपने संघर्ष की कहानी। तो ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ मजेदार मूवीज को जानने के लिए कि आपके लिए कौन सी बनी है कौन सी नहीं बनी है, तो बिल्कुल फ्राइडे को लाइव हो जाएगा।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

आप सुन रहे हैं, आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। वैसे सबकी जिंदगी एक दंगल ही है, हाँ, सर्वाइवल इज नॉट इजी। हाँ,

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शपरमाइशी में। और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपके आर्ज सिंपल, नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपके है ही ना दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, राजू सीतापुर से, उषा कश्यप गोंडा से, अनिल वर्मा सैदापुर से, प्रीति शुक्ला जी बहराई से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, मालवे नगर से, राजेश सिंह जी मुस्तफा साउदी से, सुरेश कुमार जी चौक से, बजरानी बाजार सोनारगली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश बिना किसी देरी की। पहली फरमाइश है महेंद्र की, उनको सुनना है गाना सनम मेरा हिंदुस्तान। सो एंजॉय करते हैं ये पैट्रियोटिक सॉन्ग। ओहो मैं तो भूल ही गई थी दोस्तों, कल है इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। अगर इंडिपेंडेंस डे आ गया है, स्वतंत्रता दिवस आ गया है, तो हम सब जब तक नहीं दिखाएंगे दोस्तों कि हम स्वतंत्र हैं, और जब तक हम पैट्रियोटिक गाने नहीं सुनेंगे तब तक हमें कहाँ लगेगा कि हम स्वतंत्र हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? वैसे भी हम स्वतंत्र हो के दोस्तों स्वतंत्र नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है और गलत फहमी का पूरी की पूरी दुनिया शिकार है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो एंजॉय कर लेते हैं ये पैट्रियोटिक सॉन्ग और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

देशभक्ति वाला गाना उदित नारायण सोनू निगम की आवाज में सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की फरमाइश पे, जो कि है राजस्थान से, बढ़ेंगे हमारे आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले महेंद्र का कहना है कि जिंदगी की हर सुबह कुछ अलग पैगाम लाती है, जिंदगी की हर सुबह कुछ अलग पैगाम लाती है, कभी थोड़ी धूप तो कभी हंसी छाव लाती है। सो एंजॉय करते हैं अब अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से आपका स्वागत है। और अब एंजॉय कर लेते हैं आशु मिश्रा जी की फरमाइश। उनको सुनना है गाना ताल से ताल मिला, अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में। ये हाउ रोमांटिक सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, सावन स्पेशल वाला नगमा, हर दिल के तार को छेड़ देने वाला नगमा। आशु जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत थी आज की आपकी फरमाइश। थैंक यू सो मच। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले नमस्ते प्रीति शुक्ला जी फ्रॉम बहराइच और उत्कर्ष कश्यप गोंडा से आपका भी स्वागत है। एंजॉय कर लेते हैं राजू की फरमाइश, उनको सुनना है सीतापुर से गाना दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। सो एंजॉय करते हैं अनुराधा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा राजू की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गाने करोला दिलदार के लिए। कैसे कैसे गाने बन जाते हैं, दिल दीवाने का डोल रहा है दिलदार के लिए। दिल डोलता भी है यार, अपनी जगह पे वो स्टिक रहता है, मुझे ऐसा लगता है हाँ धक धक करता है, लेकिन डोलता ओलता नहीं है कुछ भी। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है गाना सोचो ना जरा। सो एंजॉय करते हैं छोटे सरकार का ये गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में। 90s का सदाबहार नगमा है ये, जिसकी फरमाइश आई है उषा कश्यप की तरफ से। स्टे ट्यून्ड।

वैसे हमने बहुत सोच लिया, बहुत देख लिया और बहुत समझ लिया। फिलहाल ये गाना तो भाई इस दुनिया के परे है, पता नहीं किस गोले से बन के आया, लेकिन आवाज बहुत खूबसूरत है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुरेश कुमार जी की चौक से, और उनको सुनना है गाना दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। ऑब्वियसली पूछेगा पहले नाम पता ही पूछेगा। वो कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। फिलहाल स्टेडी उड़ा एवरीवन।

गाना पूछ लेगा तेरा नाम बता। चांद के पार चलो पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया उदित नारायण की आवाज में। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा की सैदापुर से, उनको सुनना है गाना तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो की है सैदापुर से आवाज है मोहम्मद अजीज की और अनुराधा जी की। स्टे ट्यून्ड।

तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना। हमने एंजॉय किया है ये नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है सैदापुर से। अगली फरमाइशी गीत हमारे पास में है दोस्तों प्रीति शुक्ला जी की तरफ से जो की है बहराइच से, और उनको सुनना है गाना मेरे देश प्रेमियों। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ प्रीति जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, निधि गोंडा से और रौनक तिवारी गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

0: आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मोहम्मद रफी की आवाज में हमने एंजॉय किया है देश प्रेमी का ये नगमा, हमारी प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पे जो की है बहराइश से। अगली फरमाइश हमारे पास में है शिवम दुबे की गोंडा से, और उनको सुनना है सतिंदर सरताज का गाना आखिरी अपील। सो एंजॉय करते हैं ये वाला पंजाबी सुपर डुपर डुपर हिट नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: ओ पाली जीन पर रखता पजामा नहीं हो तो सुखी पड़ दी अब दिखे।

आखिरी अपील सारी रद्द हो गई। हमने एंजॉय किया सरिंदर सरताज की आवाज में ये पंजाबी हिट नगमा। शिवम दुबे की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइश गीत की तरफ, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। गणेश गौरा चौकी से आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड इन योर शो। और अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की, उनको सुनना है वंदे मातरम। सो एंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। Stay tuned, everyone.

फरमाइश थी दोस्तों कार्तिक कश्यप की गोंडा से, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना टूटी हुई गल वाली गाली नहीं बनना, गानी नहीं बनना वे तौबा तौबा मैं तेरी मस्तानी नहीं बनना। सो एंजॉय करते हैं बी प्राक और जानी का ये नगमा मस्तानी, पंजाबी गाना लेकिन बहुत दर्द भरा नगमा निशा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: वाह बे तौबा तौबा, तेरी मस्तानी नहीं बनना और टूटी हुई गल वाली गानी नहीं बनना। हमने एंजॉय किया बी प्राक और जानी का ये सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश पर, जो कि है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में मुस्तफा जी की सऊदी से। मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है गाना, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, दिखता ना दिखता ना दिखता ना। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा मैं हूं ना का सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जी की फरमाइश पर। और स्वागत है आपका विशाल वेदर्दी और अजय गिरी। बहुत दिनों बाद आप दिखाई दिए, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।
1: वो तो बंकर अंकल,

हमने एंजॉय किया मुस्तफा जी की फरमाइश पर, ये वाला नंबर बनाओ। लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है किशोर कुमार जी की आवाज में और आशा जी की आवाज में नया कदम का ये नगमा, जिंदगी का हम इतिहास लिखेंगे।

रहे हैं आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश गीत दोस्तों हमारे पास में अनिल शास्त्री जी की गोरखपुर से, इस गजल को एंजॉय करेंगे और इस गजल के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने अभी तक पेट पूजा नहीं किया, फटाफट से जाके पेट पूजा कर लो। पेट पूजा करने के बाद में फिर से जज्बातों के और सुकून की महफिल में एकत्रित होंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं अनिल शास्त्री की फरमाइश।

0: 416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
2: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
2: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
2: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
3: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
5: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
6: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है।

0: सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
1: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कि कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। देखा जो तेरे नाज को दिल में तड़प के हम, देखा जो तेरे नाज को दिल में तड़प के हम, समझा कि आज कोई मकां से मकां गया। जाते ही उनके चेहरे पे आई नई बहार, जाते ही उनके चेहरे पे आई नई बहार। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। सो एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, हम एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। धर्मेंद्र मोहन जी आवाज विकास गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, अजय गिरी गोंडा से। अजय गिरी का कहना है बहुत दिनों बाद आज उनसे बात हुई, बहुत दिनों बाद आज उनसे बात हुई, जैसे सूखे हुए दरिया को नई सौगात हुई। खामोशियां खुद ब खुद अल्फाज बन गई, और इस तरह दिल से दिल की मुलाकात हुई। तो ये मेरे लिए था, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच अजय गिरी। और इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है उत्कर्ष कश्यप की, उनको सुनना है गाना। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, और दुश्मन के तोते उड़ा दे और उंगली पे सबको नचाते हम इंडिया वाले। सो एंजॉय करते हैं हैप्पी न्यू ईयर का ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा उत्कर्ष कश्यप की फरमाइश पर, ये डिवोशनल पैट्रियोटिक सॉन्ग। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल की बकबक को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। समझे?

सा हमने एंजॉय किया है ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है रौनक तिवारी की गोंडा से, और रौनक तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना तुम ही हो। सो एंजॉय करते हैं आशिकी 2 का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। हाउ रोमांटिक सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आशिकी अब तुम्ही हो। हमने एंजॉय की बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अरिजीत सिंह की आवाज में। अगली फरमाइश हमारे पास में मुमताज अंसारी जी की। मुमताज अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। अभिजीत जी की और साधना सरगम की आवाज में कयामत का ये गाना एंजॉय करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुमताज अंसारी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो।

करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है सुनीता जी की, गोड़वा घाट गोंडा से। उनको सुनना है गाना कौन तुझे। सो एंजॉय करते हैं MS धोनी का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा पलक की आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

तरफ अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्त। संतोष कुमार जी की गिलौली से एंजॉय करते हैं संतोष कुमार जी की फरमाइश, और इसी के साथ में हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर है, उनका कहना है कि संभाल कर रखिए उन लोगों को जो पैसे और तोहफे नहीं बल्कि खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों पर नहीं बल्कि नसीब से मिलते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो विक।

जिस पे हम मरते हैं। हम एंजॉय कर रहा है इसका ये गाना और चलते हैं बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की। एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता शायद, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आज सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो कमल एंड स्टे ट्यून्ड। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेर व शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: फ्राइडे स्पेशल बहारे गजल में आपका इस्तकबाल करते हैं आपके अपने आरजे अदनान। छह दिन बाद सातवां दिन एक ऐसा आता है जब हमारा और आपका वापस से मिलना जुलना होता है, और हर बार हर हफ्ते एक खास मौजू पर हमारी आपकी बातचीत होती है। हालांकि महफिल की शमा किसी के नाम से जरूर जलती है, और आज इस फ्राइडे जो महफिल की शमा जल रही है वो दरअसल आपको हम बता दें, जिसका न कोई उस्ताद है न कोई शागिर्द, फिर भी उसकी गजलें आज तक हर उस दिल की जुबां बनी हुई है जो मोहब्बत में टूटा है या जिसने वफा निभाई और बदले में सिर्फ खामोशी पाई। नाम है सुदर्शन फाकिर। जालंधर की गलियों में पले बढ़े इस शायर का असली नाम था सुदर्शन कामरा, जो कि पढ़ाई लिखाई में राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी पढ़ी, मगर दिल हमेशा शेर व शायरी में अटका रहा। फाकिर साहब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्होंने कभी अपनी शायरी को मुश्किल उर्दू के भारी भरकम लफ्जों में कैद नहीं किया। इन्होंने वो लिखा जो एक आम इंसान भी सुनते ही समझ जाए, महसूस कर ले, और यही वजह है कि बेगम अख्तर जैसी मलिकाए गजल ने अपने आखिरी दौर में उनकी 5 गजलें गाई, और आगे चलकर जगजीत सिंह की आवाज ने इनके लफ्जों को घर घर तक पहुंचा दिया। फाकिर साहब की शायरी का असल सबक यही है, दर्द को चीख में नहीं बल्कि सुकून में बयां करो। वो टूटते हैं मगर तमीज से टूटते हैं, वो शिकायत करते हैं मगर इल्जाम किसी और पर नहीं रखते। आज की इन गजलों का फलसफा बार बार आपको मिलने वाला है, मोहब्बत में हार कर भी अपनी तहजीब ना खोने का सबक। तो चलिए महफिल की जानिब चलते हैं।

फलसफे इश्क में पेश आए सवालों की तरह, फलसफे इश्क में पेश आए सवालों की तरह, हम परेशान ही रहे अपने ख्यालों की तरह। जिंदगी में कभी कभी हमें जवाब नहीं बस सवाल मिलते हैं, और मोहब्बत तो वैसे भी सवालों का ही दूसरा नाम है। कभी हमने पूछा है क्यों हुआ, कभी पूछा अब क्या होगा, और जवाब में हमेशा एक ही सवाल खड़ा हो गया। ये गजल उसी उलझन की कहानी है। फाकिर साहब कहते हैं कि हम इश्क के फलसफे में ऐसे उलझे कि खुद अपने ख्यालों की तरह परेशान रह गए, और जब उम्मीद की शीश सागर से कुछ मांगा तो हम खुद कांच के प्याले की तरह टूट गए। सोचिए जरा, कितनी बार हमने भी किसी रिश्ते में खुद को मिसाल की तरह पेश किया, कुर्बानी दी, और वक्त ने हमें ही इम्तहान में डाल दिया। ये गजल मोहब्बत में हार जाना कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जो दुनिया को हमेशा हवाले की तरह याद रहेगा। आइए आपको पूरी गजल बताते हैं कि सुदर्शन फाकिर साहब आखिर लिखते क्या हैं, कि फलसफे इश्क में पेश आए सवालों की तरह, हम परेशान ही रहे अपने ख्यालों की तरह, शीश सागर में बैठे रहे जिक्र मसीहा लेकर, और हम टूट गए कांच के प्यालों की तरह, जब भी अंजाम मोहब्बत ने पुकारा खुद को, वक्त ने पेश किया हमको मिसालों की तरह, जिक्र जब होगा मोहब्बत में तबाही का कहीं, याद हम आएंगे दुनिया के हवालों की तरह।

जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हर तकलीफ सहकर भी शिकायत नहीं करते। वो कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो सहा खुद सहा। ये गजल उन्हीं खामोश बावकार लोगों के लिए है। फाखिर साहब यहां एक ऐसे किरदार की बात करते हैं जिसने जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिया, जहर भी खुद पिया और फिर भी किसी को मुलजिम नहीं ठहराया। और यही उनका सबसे बड़ा जुर्म रहा कि उन्होंने माफ करना सीख लिया। ये फलसफा आज के दौर में बहुत काम का है, जहां हर कोई अपनी तकलीफ के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने में लगा है। फाखिर साहब कहते हैं कि अपने जख्मों को खुद सीना सीखो, शिकायत मत करो, बस जीना सीखो। क्या कहती है ये गजल जो फाखिर साहब इन्हीं लफ्जों में बयां करते हैं कि जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं, मैंने मुलजिम को भी मुलजिम नहीं कहा दुनिया में, बस यही जुर्म किया है कोई अफसोस नहीं। मेरी किस्मत में लिखे थे ये उन्हीं के आंसू, मेरी किस्मत में लिखे थे ये उन्हीं के आंसू, दिल के जख्मों को सिया है कोई अफसोस नहीं, अब गिरे संग के शीशों को हो बारिश फाखिर, अब कफन ओढ़ लिया है कोई अफसोस नहीं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9216 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: उल्फत का जब किसी ने नाम लिया, रो पड़े अपनी वफा का सोच के अंजाम, रो पड़े हर शाम ये सवाल, मोहब्बत से क्या मिला, हर शाम ये जवाब की हर शाम रो पड़े। राहे वफा में हमको खुशी की तलाश थी, दो गाम ही चले कि हर गाम रो पड़े। रोना नसीब में है तो औरों से क्या गिला, अपने ही सर लिया कोई इल्जाम, रो पड़े अपने ही सर लिया कोई इल्जाम, रो पड़े। कभी आपके साथ शायद ऐसा हुआ हो कि किसी ने बस मोहब्बत का नाम लिया और आपकी आंखें भर आई हो, कोई जिक्र नहीं किया, बस लफ्ज मोहब्बत सुना और पुराना दर्द ताजा हो गया। ये गजल बिल्कुल उसी एहसास की तर्जमानी करती है। फाखिर साहब कहते हैं कि जब भी वफा की बात होती है तो अपने अंजाम का ख्याल आते ही हंसू निकल आते हैं। हर शाम ही एक ऐसा सवाल, मोहब्बत से क्या मिला, और हर शाम एक ही जवाब, रोना। दरअसल ये खूबसूरत सी गजल कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि मोहब्बत में सफर बहुत छोटा भी हो तो भी हर कदम पर इम्तिहान मिलता है। दो कदम चले नहीं कि हर कदम पर आंसू आ गए। मगर फाकिर साहब यहां भी एक बात साफ करते हैं, रोना नसीब में है तो किसी और से गिला क्यों, ये खुद एहतिसाबी है और अपनी ही जिम्मेदारी लेने का जज्बा, जो कि इस गजल को खूबसूरत बनाता है।

चराग व आफ्ताब गुम बड़ी हसीन रात थी, चराग व आफ्ताब गुम बड़ी हसीन रात थी, शबाब की नकाब गुम बड़ी हसीन रात थी। कुछ रातें ऐसी ही होती हैं जो अंधेरे के बावजूद सबसे रोशन याद रहती हैं। ये गजल भी एक ऐसी ही रात की दास्तां है, जहां चराग भी गुम था, चांद सूरज भी गुम था, फिर भी वो रात बेहद हसीन थी। फाखिर साहब का यहाँ इशारा है कि असली रोशनी बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि उस लम्हे में होती है जो हमें किसी अपने के साथ मिलता है। शराब का प्याला हो या मोहब्बत की महफिल, जब साथ अपना का हो तो अंधेरा भी हसीन लगने लगता है। लेकिन इसमें गहरी बात छिपी है। जिस किताब में लिखा था कि इश्क हराम है, वही किताब उस रात चल गई, यानी मोहब्बत के आगे हर पाबंदी, हर उसूल फीका पड़ जाता है। ये गजल जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे, जो कि अक्सर उन घड़ियों में छिपे होते हैं जब हमारे सारे हिसाब किताब भूलकर सिर्फ महसूस करते हैं, कुछ ऐसा ही कहती है ये गजल। और आइए इस गजल को मुकम्मल तौर पर आपको हम सुना ही देते हैं कि चराग व आफ्ताब गुम बड़ी हसीन रात थी, शबाब की नकाब गुम बड़ी हसीन रात थी, मुझे पिला रहे थे वो, खुद ही शम बुझ गई, गिलास गुम शराब गुम बड़ी हसीन रात थी। लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है, हुई वही किताब गुम बड़ी हसीन रात थी, लबों से जो लब मिल गए, लबों से लब ही सिल गए, लबों से लब जो मिल गए, लबों से लब ही सिल गए, सवाल गुम जवाब गुम बड़ी हसीन रात थी।

दुनिया से वफा करके सिला ढूंढ रहे हैं, हम लोग भी नादा हैं ये क्या ढूंढ रहे हैं। कुछ देर ठहर जाइए ऐ बंदे इंसाफ, हम अपने गुनाहों में खता ढूंढ रहे हैं। ये भी तो सजा है कि गिरफ्तार वफा हूं, क्यों लोग मोहब्बत की सजा ढूंढ रहे हैं। दुनिया की तमन्ना थी कभी हमको भी फाकिर, अब जख्म तमन्ना की दवा ढूंढ रहे हैं। आज की महफिल की आखिरी गजल के साथ हम एक बहुत गहरे सवाल पर आ गए हैं, क्या वफा का कोई सिला भी मिलता है या ये भी बस एक तलाशी रह जाती है। हालांकि फाखिर साहब की अगर लफ्जों में कहे तो हमने दुनिया से वफा की और अब उसका इनाम ढूंढ रहे हैं, मगर सच तो ये है कि हम खुद नादा हैं, क्योंकि जो चीज हमने बिना शर्त दी उसका बदला मांगना ही अपने आप में एक भूल है। और ये गजल सच कहे तो वफा निभाना और अगर सजा भी बन जाए तो भी उसे सजा मत समझो, बल्कि ये सोचो कि तुमने अपना फर्ज निभाया, ऐसा कहती है। फाखिर साहब खुद लिखते हैं कि कभी उन्हें भी दुनिया की तमन्ना थी, मगर अब बस अपने जख्मों की दवा ढूंढ रहे हैं। ये कबूलियत, ये खामोश समझौता जिंदगी के सबसे बड़े सबकों में से एक है। तो चलिए आज इसी सबक के साथ हम इस महफिल से आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली बार इसी महफिल में किसी नए शख्स, किसी नए लफ्ज़, किसी नए एहसास के साथ वापस से मुलाकात करेंगे।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
8: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार श्रोतागण, मैं हूं आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो का अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेट नाइट हॉरर शो। रात जितनी गहरी होती है, कहानियां भी उतनी सच्ची लगने लगती है। कुछ कहानियां डराती नहीं, बस धीरे धीरे आपके भीतर उतर जाती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। कश्मीर, जहां लोग कहते हैं कि हर चिनार का पेड़, हर झील, हर पहाड़ अपने भीतर किसी न किसी की याद संभाले बैठा है। लेकिन अगर किसी की याद वहीं रह जाए और इंसान लौट आए तो क्या होता है? आज की कहानी है चिनार गवाह है। आइए सफर शुरू करते हैं। पहाड़ी पर एक टैक्सी चल रही है। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है जो शीशे से टकरा रही है और दूर कहीं कोई नदी बहने की आवाज आ रही है। ड्राइवर लगभग मध्यम आयु का है और अचानक ही बहुत सहज आवाज में कहता है, साहब बस 10 मिनट और आपका गांव आ जाएगा। आरव करीब 38 वर्ष का शांत लेकिन भीतर से थका हुआ इंसान है। वो कुछ नहीं बोलता। ड्राइवर ने फिर पूछा, पहली बार आ रहे हैं इधर? आरव ने कहा, नहीं, बहुत साल पहले आया था। अच्छा, तो साहब आप इस रास्ते को तो पहचानते होंगे? आरव ने कहा, रास्ते शायद बदल जाती है पर यादें नहीं। कुछ क्षण मौन रहता है, फिर ड्राइवर धीरे से कहता है, सही कहा आपने, यहाँ लोग कहते हैं पहाड़ सब याद रखता है। टैक्सी एक छोटे से गांव में रुकती है। इंजन बंद होता है। दूर से बच्चों की आवाजें आती है। कहीं लकड़ी काटने की धीमी ठक ठक आवाज भी आ रही है। हवा में घंटियों की बहुत हल्की हल्की झंकार सुनाई देती है। ड्राइवर ने कहा, लीजिए साहब आपका दरांग आ गया। आरव धीरे धीरे उतरता है, सूटकेस जमीन पे रखता है और कुछ पल वहीं खड़ा रहता है। 15 साल एक इंसान को बदलने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन कुछ जगह समय से समझौता नहीं करती। सामने वही पहाड़, वही नदी और गांव के किनारे खड़ा एक विशाल चिनार का पेड़। आरव की नजर उसी पर ठहर जाती है। उसकी सांस एक पल को जैसे रुक जाती है। हवा अचानक तेज हो जाती है और चिनार के सूखे पत्ते गिरने लगते हैं। आरव धीरे धीरे चिनार से ही बात करने लगता है। नदी के उस पार चिनार के पेड़, तुम अब भी यही हो? तभी पीछे से किसी के कदम की आवाज आती है। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग अत्यंत स्नेहिल आवाज में कहते हैं, आरव। आरव चौंकता है, अरे यूसुफ चाचा। यूसुफ चाचा हंसते हुए कहते हैं, पहचाना तो सही, मुझे लगा था अब शहर में रहते हो तो हम गांव वालों को कहाँ पहचानोगे। आरव ने बोला, यूसुफ चाचा आप तो बिल्कुल नहीं बदले। यूसुफ ने कहा, अरे उम्र बदल देती है बेटा, मगर कुछ इंतजार कभी नहीं बदलते। दोनों धीरे धीरे कच्ची पगडंडी पर चलने लगते हैं। यूसुफ ने पूछा, शहर में कैसे हो? आरव ने कहा, मत पूछिए चाचा, काम बस काम। और दिल? आरव धीरे से कहता है, दिल तो चाचा यहीं कहीं छूट गया था। यूसुफ चाचा उसकी ओर देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। कभी कभी सबसे बड़े सवाल चुप्पी पूछती है। यूसुफ ने कहा, घर खुलवा दिया है, साफ भी करवा दिया, कोई दिक्कत हो तो बता देना। आरव ने बोला, धन्यवाद चाचा। कमरे में हल्की सी नमी थी
पुरानी लकड़ी, पुरानी किताबें और खिड़की से दिखता नदी के उस पार वही चिनार। आरव मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। कमरे में बिल्कुल अकेलापन है। मेज पे रखा एक बैग है जिसको आरव खोलने की कोशिश करता है और तभी उसमें से एक पुरानी डायरी नीचे गिरती है। आरव उसे उठाता है, कुछ पल बस उसे देखता रहता है जैसे उसे खोलने से कोई पुराना दरवाजा भी खुल जाए। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर कभी लौटो तो चिनार के पास नदी के उस पार जरूर जाना। नीचे कोई नाम नहीं था लेकिन आरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत डायरी बंद कर लिया। अचानक बाहर की हवा और तेज हो जाती है और खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो जाती है। आरव चौंक कर खिड़की की ओर देखता है। बाहर चिनार के नीचे उसे एक आकृति खड़ी दिखाई देती है, सफेद फिरन पहने, स्थिर, बिल्कुल बिना हिले। आरव एक कदम आगे बढ़ता है, धीमे से पूछता है, कौन? अगले ही पल हवा फिर से चलती है, पत्तों का एक घना गुबार उठता है और जब साफ होता है वहाँ कोई नहीं था। आरव की सांसें तेज हो जाती है। क्या उसने सचमुच किसी को देखा था या 15 साल पुरानी कोई याद आज पहली बार उसका इंतजार पूरा कर रही थी? श्रोतागण, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो का अपना प्रोग्राम लेट नाइट हॉरर शो। श्रोतागण, कभी कभी डर उस चीज से नहीं लगता जो हमारे सामने खड़ी होती है, डर उस चीज से लगता है जो हमारे भीतर बरसों से चुपचाप खड़ी रहती है। आइए लौटते हैं आरव की उस रात में जिसने अभी अभी उसकी पुरानी यादों का दरवाजा खटखटाया है। रात गहरी हो चुकी है, घड़ी में टिक टिक टिक टिक की आवाज आ रही है, बाहर हवा लगातार बह रही है। आरव कई मिनट तक खिड़की के पास खड़ा रहता है। वो बार बार उसी जगह को देखता है जहाँ कुछ क्षण पहले उसने सफेद फिरन में किसी लड़की को देखा था। अब वहाँ सिर्फ चिनार था और उसके नीचे गिरे हुए पत्तों की मोटी परत दूर से दिखाई दे रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। आरव ने कहा, हेलो। निशा ने उस तरफ से पूछा, पहुंच गए? आरव ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ निशा, अभी कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ। निशा ने कहा, कैसा लग रहा है इतने साल बाद? उसी गांव में वापस आना आसान तो नहीं होगा। आरव कहता है, कुछ जगह बिल्कुल नहीं बदलती और शायद यही सबसे मुश्किल बात है। निशा फिर पूछती है, आरव क्या तुमको यकीन है तुम्हें यहाँ आना चाहिए था? आरव कहता है, निशा अगर इस बार भी नहीं आता तो शायद कभी नहीं आ पाता और जिंदगी भर तड़पता रहता, जिंदगी भर पछताता रहता। कुछ पल दोनों चुप रहे, जैसे दोनों एक ही नाम लेने से बच रहे हों। निशा ने फिर धीरे से कहा, आरव अगर कुछ भी अजीब लगे तो प्लीज वापस लौट आना, सिर्फ एक अधूरी बात के लिए, पूरी जिंदगी के लिए रुक मत जाना। आरव बहुत धीरे से जवाब देता है, कुछ बातें पूरी जिंदगी रोक देती है निशा। कॉल समाप्त होता है, कमरे में फिर वही सन्नाटा। आरव ने फोन बंद कर दिया। उसकी नजर फिर उसी डायरी पर चली गई। इस बार उसने डायरी खोला, पहले कई पन्ने बिल्कुल खाली थे और फिर एक तारीख लिखी थी, 18 अक्टूबर। बस साल नहीं लिखा था, उसके नीचे कुछ पंक्तियां थी, आज फिर हम चिनार के पास बैठे। उसने कहा, अगर कभी मैं तुमसे पहले चली गई तो मुझे ढूंढते मत आना, मैं यहीं रह जाऊंगी। आरव ने पन्ना बंद कर दिया, उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर सूखे पत्ते पर किसी के कदम पड़ने की आवाज आने लगी। आरव ने सांस रोक लिया, कदम धीरे धीरे खिड़की के पास नीचे आकर रुक जाते हैं। फिर बहुत धीमी आवाज, जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा होकर सिर्फ एक शब्द कह रहा है, आरव आरव आरव। आरव झटके से खिड़की खोल देता है। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ चिनार के पत्ते जो हवा में गोल गोल घूम रहे थे। अचानक उसकी नजर नीचे गई, नीचे गीली मिट्टी पर जूते के निशान थे, एक जोड़ी जो सीधे खिड़की तक आए थे लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। आरव कुछ देर उन निशानों को देखता रहा, फिर धीरे धीरे बाहर आया। रात हो चुकी थी, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो चिनार की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो रही थी। नदी के पास पहुँच करके वो रुक गया। वहीं जहाँ वो कभी घंटों बैठा रहता था, वो चिनार का पेड़ आज भी नदी के उस पार उसको बुला रहा था। उसी समय पीछे से किसी ने पुकारा, साहब आरा मुड़ा। एक लगभग 12-13 साल का लड़का हाथ में लांटेन लिए खड़ा था। लड़के ने पूछा, आप पुराने वाले घर में ठहरे हैं ना? आरब ने कहा, हाँ, क्यों? लड़का बोला, दादाजी ने कहा है रात को इस नदी के पास ज्यादा देर मत रुकिएगा। आरब ने मुस्कुरा के पूछा, क्यों, यहाँ क्या है? लड़का कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, यहाँ कुछ नहीं है, मगर जो लोग कुछ देर तक खड़े रहते हैं उन्हें लगता है कि कोई उन्हें याद कर रहा है। ये कह के लड़का मुड़ा और अंधेरे में धीरे धीरे चला गया। आरव वहीं खड़ा उस विशाल चिनार को देखने लगा। हवा अब बिल्कुल थम चुकी थी, इतनी ज्यादा शांति कि अपनी धड़कने भी सुनाई दे। और तभी उसने देखा कि पेड़ के तने पर बहुत पुरानी धुंधली सी नक्काशी थी। शायद वो दो नाम जो उन्होंने उस पे लिखे थे वो अब भी थे, लेकिन दूर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव के होंठ कांपने लगे। उसने उस नाम को छूना चाहा, लेकिन उसी क्षण किसी ने बहुत धीरे से कहा, आरव इतनी देर लगा दी लौटने में, अचानक हवा फिर से तेज हो जाती है, चिनार के सैकड़ों पत्ते एक साथ उड़ते हैं और फिर पूरा अंधेरा। प्यारे दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो पे अपना प्रोग्राम लेट नाइट हॉरर शो, और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। प्यारे दोस्तों, कुछ रास्ते हमें मंजिल तक नहीं ले जाते, वे हमें हमारे अपने सच तक ले जाते हैं। आज आरब भी ऐसे ही एक रास्ते पे है, जहाँ लौटना शायद वापस आना नहीं, बल्कि अपने आप से मिलना है। धीरे धीरे सुबह हो रही है, आकाश अभी पूरी तरह खुला नहीं था, पहाड़ की चोटियों पर धुंध ऐसे ठहरी थी मानो रात अभी जाने को तैयार नहीं है। आरव धीरे धीरे चिनार के उस पार जाने वाले पुराने रास्ते पर चल रहा था। उसके पीछे यूसुफ चाचा बहुत दूर तक आए, फिर वहीं रुक गए। उन्होंने कहा, आरव, अगर वहाँ कुछ मिले तो उससे सवाल मत पूछना, बस सुनना। कभी कभी जवाब बोलने वाले के पास नहीं, सुनने वाले के पास होते हैं। आरव ने हल्के से सर झुकाया और आगे बढ़ गया। हर कदम जैसे 15 साल पीछे लौट रहा था। उसे याद आया, मीरा इसी पुल पर हमेशा रुक जाती थी। उसकी याद करके वो धीरे से हंसा। मीरा कहती थी, आरव, अगर ये पुल टूट गया तो? आरव कहता था, तो मैं पहले गिरूंगा मीरा, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा हंसते हुए कहती थी, झूठे, तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है। आरव पुल के बीचों बीच रुक गया।

लेकिन आज पहली बार आरव को लगा जैसे ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक गवाह है। इतनी खामोशी कि नदी की हर लहर अलग अलग सुनाई दे रही थी। आरव धीरे से पेड़ के पास पहुंचा, उसने अपने हाथ तने पर रखा। लकड़ी बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक के भीतर एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई, बहुत हल्की, मानो पेड़ सांस ले रहा हो। वो घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कर ली। आरव ने टूटती हुई आवाज में कहा, मीरा, अगर तुम कहीं भी हो तो आज पहली बार मैं सच बोलने आया हूँ। आरव ने कहा, सबको लगता है मैं शहर इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई थी और इसीलिए मैं कभी वापस नहीं आया, लेकिन सच और कुछ था। मैं डर गया था, तुम शादी करना चाहती थी और मैं जिम्मेदारी से भाग रहा था। मैंने कहा बस एक साल फिर लौट आऊंगा, पर साल बीतते चले गए और मैं काम में उलझता चला गया। मैंने फिर एक भी खत नहीं लिखा, एक भी फोन नहीं किया, क्योंकि हर दिन मुझे लगता था अगर मैं लौटूंगा तो तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखूंगा। आरव की आवाज भरा गई। और फिर मीरा, एक दिन वो दर्द भरी खबर आई कि तुम नहीं रही। उस दिन से मैंने हर रात अपने आप को यही सजा दी कि अगर मैं वहाँ गया होता तो शायद तुम जिंदा होती। आरव ने सिर झुका लिया, उसके आंसू गीली मिट्टी पर गिर रहे थे। तभी बहुत हल्की सी पायल की आवाज आई। आरव की सांसें रुक गई, उसने सिर उठाया। सामने कुछ नहीं था, लेकिन पेड़ की दूसरी ओर बहुत दूर सफेद फेरन का एक कोना हवा में लहराकर ओझल हो गया। आरव बिना सोचे उस ओर दौड़ा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ घास पे रखी एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया, बिल्कुल पुरानी थी, उसके किनारे घिसे हुए थे। वो झुककर उसको उठाता है, धीरे धीरे खोलता है। अंदर एक सूखा नीला जंगली फूल रखा था। उसके नीचे मुड़ा हुआ एक कागज, इतना पुराना कि छूते ही टूटने लगे। आरव कांपते हाथों से उसे खोलता है। पहचानते ही उसकी सांसें अटक जाती है, वो मीरा की लिखावट थी। लेकिन ये डायरी का पन्ना नहीं था, ये वो खत था जो शायद कभी उसने भेजा ही नहीं। आरव ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मीरा ने लिखा था, आरव, अगर ये खत कभी तुम्हें मिले तो इसका मतलब तुम लौट आए। मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की। शिकायत इंतजार से बहुत छोटी होती है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। लोग कहते हैं तुम मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम खुद से भागे हो। आरव की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। पत्र की आखिरी पंक्ति तक पहुँचते ही पहले उसकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि एक एहसास हो चुका था कि 15 वर्षों से वो जिस सच से डर रहा था वो अब उसके सामने आने वाला है। श्रोतागण, जल्दी मिलेंगे इस कहानी के क्लाइमेक्स में, मगर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक प्यारे श्रोतागण। आरव पत्र की आखिरी पंक्तियां पढ़ने लगा। आरव, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो एक बात अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल देना। मैं उस दिन तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, मैं तो तुम्हें विदा कर चुकी थी। मैं जानती थी तुम चले गए हो। मैं रोज नदी के किनारे इसलिए आती थी क्योंकि मुझे अकेले बैठकर रोना होता था। कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी को मुस्कुरा के विदा करना बहुत मुश्किल होता है। आरव के हाथ कांपे, उसने जल्दी जल्दी अगली पंक्तियां पढ़नी शुरू करी। मेरे साथ जो हुआ आरव, वो हादसा था, न तुम्हारी गलती न मेरी गलती, बस उस दिन पहाड़ ने मुझे रोक लिया। आरव की आंखें बंद हो गई। 15 वर्षों से जिस एक वाक को सुनने के लिए उसका मन तड़प रहा था, वो आज एक पुराने कागज से निकलकर उसके सामने खड़ा था। मीरा आगे लिखती है, आरव, अगर तुम कभी लौटो तो मेरे लिए मत रोना। अपने लिए जीना और एक काम जरूर करना, उस चिनार के नीचे अपने अपराध बोध को छोड़ देना। मैं नहीं, वो पेड़ तुमको सबसे ज्यादा सताता रहेगा। पत्र समाप्त हो गया। आरव बहुत देर तक उसी जगह बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उसने पत्र को मोड़ा, सीने से लगाया और पहली बार फूट फूट के रो पड़ा। वो रोना सिर्फ मीरा के लिए नहीं था, उन 15 वर्षों के लिए भी था जो उसने पल पल अपने को सजा देते हुए बिताए थे। आरव ने कहा, मीरा, मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया था, मैंने तो अपने आप को खोल दिया था। आरव ने धीरे धीरे सर उठाया। पेड़ के सामने कुछ क्षणों के लिए धूप और धुंध के बीच उसे एक आकृति फिर से दिखाई दी। सफेद फिरन, खुले बाल, चेहरे पर वैसे ही शांत मुस्कान जिसे वो 15 साल से भूल नहीं पाया था। उस आकृति ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे किसी ने किसी को आखिरकार माफ कर दिया हो। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण बादलों के पीछे से सूरज की पहली किरण निकली। प्रकाश चिनार की शाखाओं से होकर गुजरा और वो आकृति धीरे धीरे रोशनी में खुल गई। आरव मुस्कुराया। परसों बाद उसकी मुस्कुराहट में दर्द नहीं था। वो लौटने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे से मीरा की वही खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया, लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे से कहा, अलविदा नहीं मीरा, धन्यवाद। जब वो पुल पार करके वापस आया, यूसुफ चाचा वहीं बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आरव की आंखों में देखा। वहाँ बरसों बाद शांति थी। यूसुफ ने मुस्कुरा के पूछा, मिल आए? आरव ने कुछ पल लगाए, फिर कहा, चाचा, मीरा से भी मिलाया और खुद से भी। यूसुफ की आंखें भीग गई और उन्होंने धीरे से कहा, तभी तो आज पहली बार इतने सालों के बाद इस पेड़ की हवा हल्की लग रही है। दोनों के कदम गांव की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद आरव अचानक रुक गया। उसने पूछा, चाचा, वो पत्र आपने वहाँ रखा था? यूसुफ चाचा ने हैरानी से पूछा, कौन सा पत्र? जो लकड़ी की डिब्बिया में था, मीरा का। यूसुफ चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा उसमें उसकी कोई चिट्ठी मुझे कभी मिली ही नहीं। हमने तो बहुत ढूंढा, आरव कुछ नहीं बोल पाया। उसने जेब में हाथ डाला पत्र निकालने के लिए, लेकिन जेब खाली था। वो घबरा कर दूसरी तरफ जेब टटोलने लगा, फिर उसने बैग देखा, कुछ नहीं, पत्र गायब था। दोनों बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुड़े। दूर का वही विशाल पेड़ सुबह की धूप में एकदम शांत खड़ा था। उसकी सबसे निचली शाखा पे एक सूखा हुआ नीला जंगली फूल हवा में झूल रहा था और एक स्त्री की हंसने की आवाज आ रही थी। प्यारे श्रोतागण, कश्मीर में दरांग जैसा कोई गांव है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हर इंसान के भीतर एक चिनार जरूर होता है, एक ऐसी जगह जहां वो अपने अधूरे शब्द, अपनी भूलें, अपने अपराध बोध सालों तक छिपा कर रखता है। कभी अगर हिम्मत हो तो उससे जरूर मिलिएगा, हो सकता वो आपको आपकी आत्मा से मिला दे और तभी शायद आप अपने आप को माफ कर सके। और फिर इस कहानी का एक प्रश्न आज तक अनुत्तरित है। जिस पत्र को आरव ने पढ़ा, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, अगर वो सचमुच था तो वापस कहाँ गया, और अगर वो नहीं था तो आरव ने क्या पढ़ा। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे, आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम पर लेट नाइट हॉरर शो। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर कभी किसी पुराने चिनार, बरगद या पीपल के पेड़ के पास हवा अचानक थम जाए तो एक पल के लिए चुप रहिएगा। कभी कभी खामोशी भी बहुत सारी कहानियाँ सुना देती है। शुभ रात्रि।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: तेरा नाम लूं तो सुकून आ जाता है, जैसे भीड़ में कोई अपना मिल जाता है। सोचूं जब भी तेरे साथ की बातें, दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। तू साथ हो तो मुश्किल भी आसान लगे, तेरे बिना हर खुशी भी सुनसान लगे। ये दिल सिर्फ तुझसे जुड़ना चाहता है, बाकी दुनिया तो सब मेहमान लगे।
3: तेरी यादों का मौसम दिल पे छाया है, हर ख्वाब में बस तेरा ही साया है। कोई पूछे प्यार क्या होता है मुझसे, मैं कहूँ जो तूने मुझ में जगाया है। न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, बात ना हो तो दिल नहीं लगता जरा। तू सामने हो तो वक्त रुक जाता है, और दूर हो तो हर पल लगे जैसे सजा।
2: जी हाँ दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत में आज हम लेकर के आए हैं वैलेंटाइन स्पेशल, यानी प्यार के नगमों को एक साथ लेकर के। आपकी आज गुमसुम एंड आपकी आज ख्वाहिश। तो आज जो सफर शुरू करने जा रहे हैं उसमें कई मुसीबतें, जी हाँ, इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्यार एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी कड़ी है जिसमें मुसीबतें ना हो तो प्यार को पाना आसान कहाँ लगता है। सबसे पहले हम उस सिंगर की बात करेंगे जो कि अपने आप में एक कहते हैं ना कि पूर्ण विराम हम नहीं कह सकते हैं, पूर्ण है। क्यों आरजे गुमसुम?
3: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, वो जो अपने में पूरी हैं, वो जिनकी आवाज जो भी सुनता है वो उनकी आवाज का मुरीद हो जाता है,
2: और आवाज के मुरीद होने के साथ साथ में उनके व्यक्तित्व, उनके चलन, उनकी बोली, उनका व्यवहार, शायद ये प्यार में कम नहीं होता है, ये प्यार को और पूर्ण बनाता है। बहुत सारे नगमों के साथ में जब उन्होंने गीतों को सुना, गाया और उनको जिया, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्यार की बेमिसाल मूरत हमारी लता जी। उनके नगमों में से एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ।
3: इकरार से याद आया, बहुत ही बेहतरीन गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ। कहते हैं ना कि प्यार तो यूं ही हो जाता है, लेकिन जब इकरार करना होता है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है। हम सोचते हैं ना, अच्छा चलो कह देते हैं, फिर रुक जाते हैं। सामने वाले को बुरा लग गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, फिर रुक जाते हैं। लेकिन ये ऐसा एहसास है कि कहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता।
2: तो भाई ये तो मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अगर हमने कुछ मुंह में खाया हुआ है तो ना निगला जाए ना उगला जाए, कुछ ऐसा ही हो गया। पर मैं बताऊं कि वैलेंटाइन वीक जो ऐसा होता है जिसमें प्यार का इजहार करने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तो आइए इस प्यार के इजहार को हम करते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: अगले सिंगर जिनकी आवाज में जादू तो था ही, शायद हम उनको ये भी कह सकते हैं कि उनकी आवाज इतनी वर्सटाइल थी कि हर कोई आवाज पहचान जाता था और हर एक हीरो की आवाज में फिट होने वाले हमारे मोहम्मद रफी जी। दिलीप कुमार का दर्द हो या फिर शम्मी कपूर की मस्ती, देवानंद का रोमांस हो, सब पर उनकी आवाज फिट हो जाती थी। लेकिन कहा जाता है मोहम्मद रफी की आवाज नगमे और उनके गीतों की जो एक प्यारी सी एक मिसाल हुआ करती थी वो लव सॉन्ग्स पर ज्यादा फिट हुआ करती थी।
1: बिल्कुल, मोहम्मद रफी जिनकी आवाज को कहा ही जाता है कि उनकी आवाज में एक रूहानियत थी। रूहानियत ऐसी कि जो भी उनके नगमे सुनता था वो खो जाया करता था। कोई भी गाना हो, कोई भी शैली हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दर्द हो, खुशी हो या फिर बहारों की खुशबू, हर किसी को, हर किसी एहसास को अपनी आवाज में बहुत ही बेहतरी से कैसे निखारा जाता है ये मोहम्मद रफी जी बहुत ही अच्छे से जानते थे।
0: बिल्कुल, और मोहम्मद रफी जी ने तो बहुत सारे ऐसे गानों को अपनी एक मिसाल दे दी, जैसे रोमांटिक हो, फिर दर्द भरे हो, कव्वाली हो, भजन हो, देशभक्ति, कॉमेडी सॉन्ग्स, ऐसा कोई भी अंदाज हो, जिन्होंने इन सारे सॉन्ग्स को छोड़ा ही नहीं था। बेहद विनम्र इंसान उनकी शोहरत के बावजूद बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इंडस्ट्री में जो लोग उन्हें सबसे अच्छे और प्यारे व्यवहार के लिए जानते थे, इंडस्ट्री में लोग उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए भी याद करते थे और वो जाने जाते थे। दिल ढल गया, ये दुनिया, ये महफिल, तूने ये क्या कर दिया, सीधे दिल पर उतर जाने वाले सॉन्ग्स थे। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी आज गुमसुम से कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत, क्या आपने ये गाना सुना है?
1: जी आरजे ख्वाहिश, बिल्कुल सुना है। और इतना प्यारा गाना, इतना प्यारा गीत, जिसकी कहे है ना कि कोई सार ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं।
0: ओके, तो चलिए अब हम लिसनर्स को सुना देते हैं इस प्यारे से नगमे को, जो कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी

0: अगले जिस सिंगर की हम बात करने वाले हैं, उनकी आवाज में मस्ती है, कुछ नयापन है, पर इस नएपन के साथ साथ अपनी आवाज में सभी गीतों को बड़ी ही खूबसूरती से संवारते हैं वो। और उनका गाना आते जाते खूबसूरत, इन आवारा सड़कों पर, और ऐसे ही बहुत सारे गीत जो कि आपको याद दिलाते हैं मस्ती, याद दिलाते हैं खुशी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी। अपनी गानों के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, पर साथ ही साथ में जाने जाते हैं अपने व्यक्तित्व के लिए। उनका व्यक्तित्व जो बहुत ही सादा और सौम्य है। कहते हैं कि हम जितने बड़े पद पर होते हैं उतना ही हमारा व्यक्तित्व सौम्य होता है। इसकी बहुत ही बेहतरीन मिसाल है किशोर कुमार जी।
1: मल्टी टैलेंटेड जीनियस, ये भी नाम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मिला। किशोर कुमार गायक ही नहीं बल्कि एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। इतनी सारी प्रतिभाएं एक ही इंसान में कब मिलती हैं, जब उनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा होता है। दूसरों के प्रति सम्मान, एक प्यार भरा होने के कारण ये सारी खूबियाँ होती हैं। आवाज जो दिल से निकली थी, उनकी आवाज में एक नेचुरल खुशी और शरारत हुआ करती थी। रोमांटिक गाने हो या फिर मस्ती भरे, वो उन गानों को गाते नहीं थे, वो उन गानों को जीते थे। मस्ती के बादशाह, एक चतुर नार, पान खाए सैया हमार जैसे ये मस्ती वाले गाने जब उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, जब उन्होंने गाए थे, तो सारे लोगों ने उनके लिए बस एक ही कहा था, अरे वाह, अब तो बात किशोर कुमार की है। तो आइए उनकी ही आवाज में एक प्यार भरे नगमों के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, जो कि है हमें तुमसे प्यार।

0: अरे ये कौन सा गीत है और किसके लिए गाया जा रहा है?
1: मैं गा तो नहीं रही थी, मैं गुनगुना रही थी और सिर्फ मैं सोच रही थी आंखें बंद करके कि काश ये गाना भी मैं किसी के लिए गाऊं। और इतना प्यारा गीत है ना, जो कि उनकी आवाज, और आप सभी को पता है कि जिसने इस गीत को गाया है वो हम सबकी प्यारी आशा भोसले जी। बिल्कुल, आशा भोसले के जो गीत होते हैं वो हमेशा से एक ना रोमांटिक सॉन्ग्स को लेकर के क्लासिकल, पॉप, गजल, और वो हर तरह के गानों को जीती हैं, हर गानों को गाती हैं। उनकी आवाज में वो हर मूड भी ढल सा जाता है, चाहे वो ओपी नैयर साहब जी हो, चाहे आजी बर्मन साहब जी के साथ हो। वो हर एक जादू को अपने साथ में इस तरीके से पिरो लेती हैं कि हर युग में उनके गानों को एक यादगार के रूप में ले ही लिया जाता है। मस्ती और अदा की पहचान, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी कहने जा रही हूँ, पिया अब तो तू आजा। इतने बेहतरीन सारे सॉन्ग, और जो कि रोमांटिक सॉन्ग्स को दिया है वो ही हमारी आशा भोसले जी हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने गीत सुना दीवाना हुआ बादल, तो देखा प्यार में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कल्पना देखिए प्यार के लिए कि बादल भी दीवाना हो सकता है, यानी वो भी दीवानगी कर सकता है, प्यार में पड़ सकता है। और दूसरा बहुत ही बेहतरीन गाना जो कि है पिया तू अब तो आजा, तो बिल्कुल इन दोनों ही गीतों में प्यार है बेशुमार। तो आज जैसा कि हम प्यार को ही बता रहे हैं, उसी को आपके सामने रख रहे हैं, तो आइए सुनते हैं प्यार भरे ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

जिनकी आवाज में एक सच्चाई और टूटन थी। अब आप सोचेंगे टूटन का क्या मतलब होता है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जब दिल टूटते हैं तो उस टूटन की कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन प्यार भरों को जोड़ना, प्यार भरे दिल को जोड़ना जो सीधे दिल तक पहुंचती थी, उनके गाने सुनकर लगता है जैसे कोई अपना पुराना दर्द सुना रहा हो। उन्हें अक्सर राज कपूर की आवाज कहा जाता था, आवारा हूं और मेरा जूता है जापानी, जीना यहां मरना हुआ। ऐसे गानों की कई जोड़ियों को अपनी आवाज दिया और उन गानों को अमर बना दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जिनकी आवाज के लिए हम बात कर रहे हैं वो है हमारे मुकेश दाजी, जिनकी आवाज में दर्द तो था ही, इसी कारण उन्हें आवाज के बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और उनके गाने आज भी हम सभी बड़े ही शौक से और बड़े ही दिल से सुनते हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उनकी ही प्यार भरे गीतों को हम कैसे भुला सकते हैं? चाहे वो आज के जुगल जोड़ी क्यों ना हो, चाहे वो पुरानी ही जोड़ी क्यों ना हो, सभी के दिलों में आज के ये जो गीत हैं, ये पुराने मिक्स करके भी आज हम सभी लोगों को सुनने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं।

जो कि मुकेश जी की आवाज में गाया गया। आप देखिए इस गीत में कि कितनी बेहतरी से बताया है कि महबूब मेरे, यानी ये गीत ये बताता है कि तुम हो तो पूरी दुनिया है, सब कुछ है, और तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। प्यार कुछ ऐसा ही होता है, अगर आपके पास आपका हमदर्द, कोई आपका हमराज है तो दुनिया बेहद खूबसूरत लगती है, और वो नहीं है तो मन करता है कि कुछ भी नहीं। ऐसा ही होता है प्यार, फिर चाहे वो आप उसे किसी भी रिश्ते में ले लीजिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपका माता पिता से आपका रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, जब कोई हमारे दिल के बहुत करीब होता है तो हमें यही लगता है कि तुम हमेशा हमारे पास रहो, बस कहीं दूर मत जाओ। इसी एहसास को, इन्हीं बातों को, इन्हीं भावनाओं को बहुत बेहतरी से अपनी आवाज के साथ उन्होंने निखारा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में उन्हीं का ये बेहतरीन गीत महबूब।

0: ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत की थी तो उनके गानों की सुरों की गहराई में परफेक्शन साफ झलकती थी। बिल्कुल, जिनकी ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत में की गई है तो उनकी नींव भी उतनी ही मजबूत होती है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। जो कि हमारे अगले सिंगर हैं मन्ना डे, जिनकी आवाज को आज भी हम बड़े ही अच्छे वाले मूड में सुनते हैं। मुश्किल धुनों के बादशाह, ऐसे गाने जो दूसरे गायक मुश्किल समझते थे, वो मन्ना डे साहब ने बड़ी ही आसानी से गा लेते थे। जैसे लागा चुनरी में दाग, पूछो न कैसे मैंने, हर मूड में फिट और हर अदा में फिट, उनकी आवाज को बड़े ही शौक से और बड़े ही चाह से हम सुनते हैं। क्लासिकल ही नहीं, उन्होंने मस्ती भरे रोमांटिक और दार्शनिक गाने भी गाए। तो क्या आरजे गुमसुम, आप उनके गानों के बारे में कुछ जानती हैं?
1: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, तो चलिए बताते हैं आपको उनके बहुत ही बेहतरीन गाने, जो कि है मस्ती भरा है समा। जब आप थोड़े दुखी हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया हो और मन हो कि थोड़ा मस्ती करनी है, तो सुनिए मन्ना डे का ये गाना। क्योंकि मस्ती भरा है समा जब आप सुनेंगे ना, तो आपका मूड यूं बदल जाएगा। और साथ ही साथ इनका दूसरा गीत है तू प्यार का सागर है। बिल्कुल, तू प्यार का सागर है ये गीत आप जानते हैं कि मन्ना डे ने किसे संबोधित किया है? उनका कहना है कि तू प्यार का सागर है ये उन्होंने डेडिकेट किया है अपनी माँ, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके लिए उनकी माँ ही प्यार का सागर है, जिन्होंने बचपन से लेकर उन्हें हमेशा इतना प्यार दिया, इतना सराहा कि जो वो नहीं सोच रहे थे कि उन्हें नहीं मिल सकता है वो भी उन्हें मिला। तो इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं प्यार की, तो भाई कैसे भूल सकते हैं हम अपनी माँ को, जो हमेशा हमेशा हमें इतना प्यार करती है कि लगता है कि बस अब तो और किसी की जरूरत ही नहीं है, माँ ही अपने आप में संपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं उनके यही मस्ती भरे प्यारे से गीत, और खो जाते हैं और करते हैं।

0: मखमली आवाज और आवाज में जादू, जिसमें हल्का सा कंपन, जिसको कहते हैं वाइब्रेटो। वाइब्रेटो उनकी खास पहचान थी। कहते हैं ना कि किसी की आवाज में वाइब्रेशन होता है, जिसमें माइक में बोलने पर एक कंपन सी आती है। तो आप खुद सोचिए कि जब उनकी आवाज में कंपन हुआ करती थी और उनके गानों में वो कंपन साफ साफ झलकता था, तो यानी ऐसे सिंगर्स की आवाज जो होती है ना, वो बड़ी ही मखमली मानी जाती है। उनके गानों में उदासी और नजाकत इतनी खूबसूरती से मिली हुई थी, मानो उसी में वो फिट की गई हो, जो सुनने वाले हमेशा उनकी आवाज को सुनकर खो जाया करते थे। जैसे जाए तो जाए कहां, इतना सा मुझ में तू प्यार बढ़ा। गजल के मामले में अगर बात की जाए तो सिर्फ फिल्मी गायक ही नहीं, बल्कि बेहतरीन गायक और गजल गायकी के रूप में भी उनको सभी ने सुना। उनकी गायकी में उर्दू अदब की मिठास झलकती थी। एक्टर भी रह चुके हैं। कम लोग जानते हैं कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया और आज उनकी अभिनेता को भी हम सराहते हैं। सादगी भरा स्वभाव तो हर किसी का होता है, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि आवाज की तरह नर्म और प्यारी सी आवाज। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वैलेंटाइन डे वीक में कई ऐसे सिंगर्स की आवाज में चुन चुन के गानों को लेकर के आए हैं, तो आज ये गुमसुम, क्या तलत महमूद जी के लिए कोई ऐसा गीत है आपके पास?
1: बिल्कुल है मेरे पास, जो कि है मेरी दुनिया में बस तुम ही तुम हो। बिल्कुल जैसा कि आपने गीत सुना, मेरी दुनिया में तुम ही तुम हो। तलत महमूद कहते हैं कि हमारे अंदर जब कोई खास चीज होती है, वही खासियत हमारी पहचान बन जाती है। उनकी पहचान बनी उनकी खास आवाज, जिसमें कि जो भी उनकी आवाज सुनता था ना, उनकी आवाज में वो जो एक खास चीज थी, वो थी उनकी आवाज में वो कंपन। जो भी सुनता था वो यही कहता था कि बहुत ही खूबसूरत है। उनकी इस बात को लेकर बहुत लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ये भी कहा कि अरे इस आवाज के साथ कहाँ आप बड़े बन पाओगे, लेकिन फिर भी सबको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपनी आत्मविश्वास के साथ, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गाने गाए और जब वो गाने रिलीज हुए तो इतने हिट हुए कि वो सफलता के शिखर पहुंचते ही चले गए। इसीलिए कहते हैं कि हमारी हर एक कमी कभी कभी हमारी खासियत भी बन सकती है।
0: तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।